एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शुक्रवार

बार है। शक संबत 1948 के श्रावण माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:54 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए आपको लेकर चलते हैं समाचार, हिंदी में समाचार के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक के पंथी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष

0: क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा गांधी ने कहा है, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। प्रस्तुत है वंदनवार, आइए सुने भक्ति संगीत।

विविध भारती से झरोखा में लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर में यानी ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 259। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिएगा श्रृंखला घुंघरू की तरह। कलाकार हैं गायक और संगीतकार रविंद्र जैन। आप सुनेंगे आज इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण हम करेंगे संध्या 6:45 पर। 7:00 आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम हैं राही प्यार के ये कार्यक्रम होगा। 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 38वीं कड़ी। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार मनोज कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

दिन में 10 बजे पिटारा लाएगा आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग। 12 बजे होगा कार्यक्रम, 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। 1 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफर। 2 बजे सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। 3 बजे सुनिएगा फोन इन प्रोग्राम हेलो सहेली। 4 बजे पिटारा में आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी, कहानी जिंदगी की यही रीत है। आपको सुनवाएंगे लेखिका रिद्धि चोरड़िया, वाचन और संपादन नेहा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 5 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:05 से इसी कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन सकेंगे। 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम आप सुनेंगे।

शाम 6:45 पर होगा कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला घुंघरू की तरह आप सुनेंगे। 7 बजे सुनिएगा फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनेंगे अनमोल यादें। फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रेकर की बातचीत का 4th भाग आपको सुनवाएंगे प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 8 बजे होगा कार्यक्रम हवा महल। सुनिएगा हास्य नाटिका बहादुरी, लेखक राधे श्याम अग्रवाल और निर्देशक बीजेंद्र मोहन। 9:00 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 पर फिल्मकार मनोज कुमार पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। रात 10 सुनिएगा छाया गीत। रात 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

कबंध नामक गंधर्व को दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्त करके अनुज सहित श्रीराम शबरी के आश्रम में पधारे। स्वयं प्रभु को अपनी कुटी में पाकर शबरी को मतंग ऋषि के वचन का स्मरण हो आया। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। प्रेम और भक्ति के अतिरेक से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, वाणी जैसे अवरुद्ध हो गई। दोनों भाइयों के चरण पखार कर शबरी ने उन्हें कंद मूल और फल अर्पित किए। अपने को नीच और मंदबुद्धि जानकर शबरी प्रभु की स्तुति करने में स्वयं को असमर्थ पाती है, किंतु उसके लिए तो मात्र भक्ति का ही संबल पर्याप्त है। जाति पाति, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य तथा अन्य गुण होने पर भी भक्ति के बिना मनुष्य वैसा ही होता है जैसे बिना जल वाला बादल। शबरी का असमंजस देख श्री राम उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी प्रभु कथा में प्रेम, तीसरी अभिमान छोड़कर गुरु चरणों की सेवा और चौथी भक्ति है प्रभु का गुणगान। प्रभु में दृढ़ विश्वास और राम नाम का मंत्र जाप पांचवीं भक्ति है। छठी है इंद्रियों का निग्रह। सातवीं संपूर्ण जगत को राममय जानना। भक्ति का आठवां रूप है जो मिल जाए उसमें संतोष करना। और नवीं भक्ति है कपट रहित व्यवहार, सरलता, इष्ट में भरोसा, निष्ठा तथा प्रत्येक अवस्था में हर्ष विषाद से ऊपर उठ जाने की।

0: घुंघरू की तरह कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: प्यारे दोस्तों, तो आज हम फिर हाजिर हैं। दादा का एक बार सत्कार करता हूँ। नमस्कार दादा। हमने कई रागों के बारे में बातचीत की, आपने रागों के बारे में बहुत कुछ बताया और ऐसे रागों के बारे में बताया जिसमें आपने फिल्मी गाने निबद्ध किए और वो बहुत मकबूल हुए। आज उसी शास्त्रीयता को बरकरार रखते हुए, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए, हम फिर शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय गीतों के बारे में, शास्त्रीयता के बारे में और फिल्मी गीतों के बारे में आपसे सुनेंगे।
2: एक प्राइमरी राग जिसको हम यमन के नाम से जानते हैं, उसमें बड़ा अच्छा अच्छा काम किया है हमारे सारे कंपोजर्स ने। खास तौर से रोशन साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए और मदन जी ने बड़ा अच्छा गाना बनाया, जिया ले गए रे मेरा सांवरिया, है ना
1: जी? जी,
2: रोशन साहब के तो
1: बहुत गाने हैं, उन्होंने
2: बहुत गाने
1: यमन में बहुत काम किया है।
2: मेरा भी ये गीत लोगों ने बहुत पसंद किया है।

0: दादा, जैसे कि हर संगीतकार के अपने कुछ पसंदीदा राग होते हैं, आपकी शास्त्रीय संगीत की जो चादर है बहुत बड़ी है और उसमें न जाने कितने गीत समा गए बड़ी सुंदरता से, बड़े अच्छे ढंग से, तो आपके भी कुछ राग ऐसे होंगे मखसूस खास राग जो आपको बहुत पसंद होंगे और मौका मिलते ही आपने उन रागों पर या उसी एक राग पर गाने बनाए होंगे, उसके बारे में कोई विवरण दें।
1: यूँ तो हर राग बहुत अच्छा सजाया है हमारे बुजुर्गों ने
0: जी,
1: उनकी उन पर बलिहारी है जिन्होंने ये राग कंपोज किए, जिनको जिनको सोचा है।
0: क्या कहने,
1: हम लोग तो उसका इस्तेमाल भर करते हैं, वो भी मैंने आपसे जैसे अर्ज किया
0: जी
1: कि अपनी आत्मा अगर उसमें डाल दें तो कोई बात बन जाती है
0: जी।
1: वैसे राग वो जिसमें अनुराग हो, बस अनुराग सबसे अच्छा राग है।
0: क्या कहने, वाह।
1: तो और हमारे शास्त्रों में कहा है कि रंजको जन चित्ता नाम सराग कथितो बुधा, जो चित्त का रंजन करे, उसकी परिभाषा ये है।
0: बहुत सुंदर।
1: ऐसे मुझे माइनर कॉर्ड्स के राग जो है ना दूर्स के पसंद है ज्यादा।
0: जैसे
1: बहुत सारे उसमें है, कई कई राग जो इस तरह के हैं ना जो माइनर नोट्स में है, भैरवी थाट के बहुत सारे राग हैं, भैरव थाट के अपने राग जो है ना
0: जी
1: बड़े अच्छे अच्छे हैं, उधर पूर्वी थाट के राग हैं, वो सब बड़े सुंदर सुंदर राग, उनकी उनमें एक अजीब उसमें एक आकर्षण है और एक ठहराव है
0: जी।
1: लेकिन अब फिल्मों में चूंकि हमें न्याय करना पड़ता है चरित्रों के साथ,
0: हाँ सिचुएशंस की भी हाँ, अपनी दरकार होती है। लेकिन आप कोई ऐसा गीत सुनाइए जो आपने शास्त्रीय संगीत पर आधारित किया हो और आपको पसंद हो।
1: आशा जी ने मेरे गीत गाया, वो आजकल बहुत लोग उसको सारे तमाम कलाकार गाना चाहते हैं।
0: वाह, जरूर।

0: अच्छा, शास्त्रीय संगीत का जिक्र चला है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे फिल्म उद्योग में बहुत से कलाकार गा रहे हैं या अन्य स्थानों पर भी लोग गा रहे हैं, तो शास्त्रीय संगीत की जानकारी उनके लिए कितनी जरूरी है, इसकी सार्थकता पर थोड़ा सा आप बताएंगे?
1: यूं तो संगीत मनुष्य का स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है उसका, लेकिन अगर संगीत का मर्म जानना है, रहस्य जानना है, तो शास्त्रीय संगीत के बिना कोई शॉर्टकट नहीं, दूसरा रास्ता नहीं है उसके लिए, क्योंकि ये गंधर्वों की विद्या है, देवों की विद्या है
0: जी,
1: मनुष्यों को कहाँ उपलब्ध हो सकती है, तभी होगी जब समर्पण भाव से उसको सीखें।
0: सही बात है। आजकल शास्त्रीय संगीत के बारे में लोगों का, गायकों का, कलाकारों का ये कहना है कि कोई जरूरत नहीं है शास्त्रीय संगीत सीखने की, और जैसा गाना मिला है सिनेमा के सिचुएशन पर गा दिया जाए, तो उन गानों की उत्पत्ति को आप कितना महत्व देते हैं जो बिना शास्त्रीय संगीत की जानकारी के बने

0: बनाए और गाए जाते हैं।
1: मैं भी उसी
0: क्षेत्र में है।
1: हाँ, उसी मतलब इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। और लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उम्र जो है ना वो हर एक की अलग अलग है।
0: जी
1: है ना
0: जी।
1: किसी की 100 वर्ष है, किसी की 50 है, किसी की 20 है।
0: जी जी
1: है ना।
0: जी जी।
1: तो इसी तरह गानों की भी आयु जो है ना वो इतनी सीमित हो जाती है कि वो आए गए कब, आए कब चले गए
0: पता ही नहीं चलता।
1: हाँ, बाद में ये लगता ही नहीं कि ये गाने भी हैं।
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात।
1: गाना नहीं लगता, वो कुछ और ही लगता है।
0: कुछ देर के लिए लगता है कोई तराना सा उठा, फिर कहीं जाके दब गया।
1: हाँ ठीक है, बस मगर मगर ये है कि जब प्रसिद्धि जिसको मिल जाती है, जो चीज़ पसंद लोगों ने कर ली है, लाखों लोग करोड़ों लोग जिसको गाते हैं
0: जी,
1: उसको खराब कहना भी मुश्किल है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये कि शास्त्रीय संगीत की जानकारी नितांत आवश्यक है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसके सिवा
0: कोई रास्ता है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं।
1: जी।
0: चलते चलते आज की इस कड़ी में कोई एक और गीत आपका ही निर्मित किया हुआ किसी शास्त्रीय राग पर।
1: मैं एक ऐसी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिस रचना पर फिल्म बनाई गई। श्री राज कपूर जी ने ये गीत सुना और इस पे कहानी सोची, इसके आधार पे कहानी का ताना बना हुआ। ये गीत राग किरवानी में निबद्ध है। मैंने कोशिश की है कि राधा और मीरा दो चरित्र हैं इस गीत में, दोनों के साथ न्याय करूं। साहित्यिक पक्ष भी इसका अच्छा बन पड़ा है।

0: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: फिल्म अमानुष का गीत था, किशोर कुमार का गया, इंदिवर के बोल थे श्यामल मित्रा की तर्ज थी। फिल्म छोटी सी मुलाकात, लता मंगेशकर की आवाज।
1: जीवन

शैलेंद्र का लिखा गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, फिल्म थी छोटी सी मुलाकात। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने

0: उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
1: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार

0: समाप्त करें। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से जारी छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि युवाओं के सपनों और भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने भरोसा दिलाया कि पेपर लीक जैसे मामलों के दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने विधि व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की सभी प्रकार की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था ने आदेश जारी किया है। नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान उपद्रव के मामले में पटना पुलिस ने अब तक पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु कुमार सहित 57 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में विभिन्न थानों में कुल 21 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें 268 नामजद और लगभग 3000 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया है। पुलिस ने उपद्रव में शामिल संदिग्धों की पहचान के लिए 177 तस्वीरें जारी की हैं। पटना के सदाकत आश्रम के पास भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के मामले में कांग्रेस की ओर से पाटलिपुत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कांग्रेस कार्यालय प्रभारी नलीन कुमार के आवेदन पर भाजपा के 15 नामजद तथा 100 से अधिक अज्ञात नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले भाजपा ने भी इस घटना को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सहित 12 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने कहा है कि जांच के दौरान ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि संजीव मुखिया प्रश्न पत्र की चोरी या उसके वितरण में शामिल था। विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। आज दोनों सदनों में कई विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। विधानसभा में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प लिए जाएंगे। वहीं विधान परिषद में चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट पर सामान्य वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानांतरण 3 चरणों में किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि सबसे पहले विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन, उसके बाद पारस्परिक स्थानांतरण और अंत में सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। 7 से 9 सितंबर के बीच समायोजन सूची जारी की जाएगी और आपत्तियों का निपटारा होगा। दूसरे चरण में 10 से 14 सितंबर तक पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद विद्यालयवार रिक्तियों की संशोधित सूची जारी होगी। सामान्य तबादले के लिए 17 से 23 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच स्थानांतरण सूची प्रकाशित कर आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल लॉ नौकरी पाओ योजना के तहत 19 नियुक्ति पत्र तथा खेल छात्रवृत्ति के लिए 637 खिलाड़ियों को चयन पत्र प्रदान करेंगे। इनमें भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार को पुलिस उपाधीक्षक तथा एथलीट पीयूष राज को पुलिस अवर निरीक्षक के पद के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा 5 पैरा खिलाड़ियों सहित विभिन्न खेल विधाओं के अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। यह कार्यक्रम पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। पटना उच्च न्यायालय ने भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ मामले में राज्य सरकार से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की पीठ ने मृतक की मां की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। पीठ ने मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों और अभिलेखों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस।

0: क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध निर्माण पर चिंता व्यक्त करते हुए बिहार सरकार को पटना में नौजर घाट और नूरपुर घाट के बीच सभी अतिक्रमण 6 सप्ताह के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि पूर्व के आदेशों के बावजूद अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। न्यायालय ने निर्देश दिया कि कार्रवाई पूरी होने के बाद सक्षम अधिकारी अगली सुनवाई तक अनुपालन रिपोर्ट हलफनामे के साथ पेश करेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने बोधगया में विभिन्न देशों द्वारा स्थापित मठों और धर्मशालाओं के कथित व्यावसायिक उपयोग से संबंधित मामले में राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह भी जानकारी मांगी है कि इस संबंध में गठित समिति की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम कार्यालय में पदस्थापित कार्मिक विभाग के सहायक कार्मिक पदाधिकारी अरुण कुमार मंडल को 50,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार यह कार्रवाई ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर रिश्वत मांगने की शिकायत के आधार पर की गई। पूछताछ के बाद उसके सरकारी आवास की तलाशी में 1 अवैध पिस्तौल, 2 मैगजीन और 9 कारतूस बरामद किए गए। इस संबंध में नगर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। निगरानी जांच ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में भोजपुर के करहनी अंचल स्थित पशु चिकित्सालय में कार्यरत परिचारी शिवानंद कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी के अनुसार 3 ठिकानों पर हुई तलाशी में 34 अचल संपत्तियों के कागजात, 1 लग्जरी कार और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। जब्त संपत्तियों के दस्तावेजों का अनुमानित मूल्य 1,11,00,000 रूपये से अधिक बताया गया है। बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान एक कार और एक लॉज से प्रश्न पत्रों की प्रतियां, विभिन्न संस्थानों की मुहरें, स्टाम्प, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक और अन्य संदिग्ध कागजात बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार मामले में एक संदिग्ध से पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया है। 2 अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। जांच में एक शिक्षक और एक अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आई है, जिनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के नावा गांव में औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी कर प्रतिबंधित दवा ऑक्सीटॉक्सिन की फैक्ट्री का उद्भेदन कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह पटना और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अन्य जिलों में भी तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दानापुर की एक अदालत ने गैस सिलेंडर कालाबाजारी मामले में दोषी बबलू कुमार गुप्ता को 2 माह के कारावास और 3,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पटना की एक अदालत ने एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या के मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास और 25,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मधुबनी जिले की हरलाखी थाना पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 260 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सासाराम में बालू लदे ट्रैक्टर चालक से अवैध वसूली का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने गश्ती अधिकारी, 1 सहायक अवर निरीक्षक सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पेपर लीक के मुद्दे पर छात्र प्रदर्शन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान

0: ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देर रात दिए वीडियो संदेश को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पेपर लीक पर सरकार सख्त कानून लाएगी। दैनिक जागरण लिखता है, सोनम वांगचुक ने देर रात तोड़ा अनशन। प्रभात खबर की सुर्खी है, संजीव मुखिया को क्लीन चिट, सीबीआई को नहीं मिले सबूत। दैनिक भास्कर ने सम्राट चौधरी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर लिखा है, बुलंद दावों वादों की बहुत तेज रफ्तार, कुछ का असर भी दिखा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, विधानसभा में लाठी चार्ज पर भिड़े विधायक, हाथापाई की नौबत। आज अखबार की सुर्खी है, सीएजी की रिपोर्ट में बिहार की वित्तीय व्यवस्था पर कई टिप्पणियां। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार जल्द नया कानून लाएगी। विधेयक के प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में होगी चर्चा। पटना में पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव मामले में अब तक 57 लोग गिरफ्तार। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द। विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन, दोनों सत्रों में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों का होगा निपटारा। और प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानांतरण 3 चरणों में किया जाएगा, 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी तबादले की प्रक्रिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यार वोट देना तो है, लेकिन मतदान केंद्र कहाँ है?
2: मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं कैसे पता चलेगा?
3: और मुझे मतदान से जुड़ी जानकारी चाहिए।
2: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
1: 1950?
2: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता, हर सवाल का जवाब एक नंबर पर।
1: मतलब जानकारी भी मार्गदर्शन भी?
2: बिल्कुल, 182 बाकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
3: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
2: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, कोई मतदाता ना छूटे।
4: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
5: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे देते हैं।

अब से थोड़ी देर में सुबह 9:10 पर आप सुनिएगा हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। सुबह 9:30 पर हम विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम। सुबह 10:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा और सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, जिसमें संकलन और स्वर होगा रजनीश कुमार श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। सुबह 10:30 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोकगीत आप सुनेंगे और सुबह 10:45 पर रसधार कार्यक्रम के अंतर्गत भोजपुरी एल्बम सॉन्ग प्रसारित किए जाएंगे। दिन में 11:00 विविध भारती से सुनिएगा कार्यक्रम रंग तरंग और दिन में 12:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन और शाम 5:30 पर हम लेकर आएंगे महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन। इसमें बहनों से बातें होंगी परिवार नियोजन का महत्व, इस विषय पर पर्व और पर्यावरण, गीत संगीत भी इस कार्यक्रम में होंगे और पाक कला में व्यंजन भी आपको बताए जाएंगे। कार्यक्रम की सूत्रधार होंगी रिवा और प्रस्तुतकर्ता होंगे इस कार्यक्रम के संतोष कुमार। शाम 6:00 भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे। शाम 6:05 पर भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना केंद्र से होगा। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम गांव घर। इसमें चर्चा सुनिएगा डूबने से बचाव है जरूरी, विश्व डूबने से बचाव दिवस 25 जुलाई पर विशेष। लोकगीत भी आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे। वार्ता सुनिएगा रोहतास की धरोहरों का महत्व, वार्ताकार कृष्ण किसले से एक जानकारी में जीवन में योग का महत्व, इस विषय पर आपको जानकारी मिलेगी। कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम में सूत्रधार होंगे प्रवीण कुमार दुबे और प्रस्तुतकर्ता होंगे इस कार्यक्रम के संतोष कुमार। शाम 6:40 पर सांझ गीत में भोजपुरी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा और शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:25 पर पटना से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का प्रसारण होगा। शाम 7:50 पर पटना से विधानमंडल में कार्रवाई की समीक्षा आप सुनेंगे। रात्रि 8:00 दिल्ली से संसद समीक्षा का प्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से, जो हमारे केंद्र से रिले होगा। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। रात्रि 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या का प्रसारण होगा, जो हमारे केंद्र से रिले होगा। रात्रि 9:00 लोकधारा में भोजपुरी लोकगीत आप सुनेगा। रात्रि 9:15 पर बंदगी कार्यक्रम में कवाली आप सुन पाएंगे। रात्रि 9:30 पर पटना से रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण होगा। रात्रि 10:00 दिल्ली से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा। रात्रि 10:15 पर रसरंग में हिंदी एल्बम सॉन्ग प्रसारित होंगे और रात्रि 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीतों का आप आनंद लीजिएगा। रात्रि 10:55 पर अगले दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की आपको जानकारी मिलेगी। रात्रि 11:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा। रात्रि 11:05 पर दिल्ली से ही अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होगा, जो हमारे केंद्र से रिले होगा और सभा का समापन हम करेंगे रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं हिंदी फिल्मी गीतों से सजा हुआ कार्यक्रम गीत मालिका।

वारिश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में वर्मा मलिक के बोल थे, उत्तम जगदीश का संगीत था। अब आइए सुनते अगला गीत, शिकार फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में चंद्रशेखर के बोल और विजू शाह का संगीत।

आन की कसम फिल्म का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में, समीर के बोल और नदीम श्रवण का संगीत। अगला गीत आइए सुनते हैं।

आन की कसम फिल्म का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में, समीर के बोल और नदीम श्रवण का संगीत। अगला गीत आइए सुनते हैं लम्हे फिल्म से लता मंगेशकर और इला रून की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल और शिव हरी का संगीत।

लम्हे फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही श्रोताओं गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं अब आइए आपको लेकर चलते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बाती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और लेखक मनोज कुमार की।

0: परिवर्तन।
1: मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम है हरी कृष्ण गोस्वामी। जब वो 10 बरस के थे तो देश का बंटवारा हो गया और पूरा परिवार दिल्ली में आ गया और रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के एक कैंप में पुराने राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने लगा। मनोज कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी की। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वो दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ छोटे मोटे

काम किए। यहां तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी कुछ दिन काम किया। बाद में अभिनेता बनने का सपना लेकर मनोज कुमार मुंबई आ गए और यहां उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की अपनी शुरुआत, जैसे सन 1957 में आई थी फिल्म फैशन।

तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा।

सन 1965 में ही विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि ये फिल्म तो बनकर रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए।

मनोज कुमार के करियर के दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो पहलू है जहां वो रूमानी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए, और दूसरा पहलू है भारत कुमार वाला पहलू, जहां उन्होंने देशभक्ति और सरोकार वाला सिनेमा बनाया। तो चलिए पहले बतौर चॉकलेटी हीरो मनोज कुमार की फिल्मों की कुछ झलक यानी कुछ गाने सुन लिए जाएं। फिल्म पत्थर के सनम।

जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया, तब ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, क्या मेरी नारी जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती? मनोज कुमार ने दिल्ली से लौटते हुए कुछ रजिस्टर खरीदे और कुछ नए पेन। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में फिल्म उपकार की कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह सन 1967 में आई रुपहले पर्दे की एक नायाब बेमिसाल फिल्म उपकार।

उपकार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थीं गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौन थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बन गया।

0: सुनाता हूँ।
1: सन 1972 में मनोज कुमार नजर आए फिल्म बेईमान में। इसी साल मनोज कुमार ने अपने प्रोडक्शन से अगली फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शोर।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई, आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। ये फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ नजर आईं जीनत अमान।

इसके बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबरी में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए। क्रांति

क्रांति के बाद मनोज कुमार की फिल्में ज्यादा नहीं चलीं। धीरे धीरे मनोज कुमार नेपथ्य में चले जाते रहे, लेकिन मनोज कुमार के चाहने वाले कायम रहे। आज भी उनके मैनरिज्म को, उनकी अदाओं को, रुपहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी को लोग बहुत याद करते हैं। आइए सन 1970 में आई फिल्म पहचान का ये गाना सुने, जिसे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार नीरज ने लिखा।

0: सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदाने जंग। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं आपका दोस्त यूनुस खान आप सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। मुंबई में बारिश की झड़ी लगी है और जिस तरह की बारिश हो रही है उसके बीच विविध भारती के स्टूडियो से हम अपने श्रोताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की खासियत ये है कि पूरे देश के बल्कि विदेश के श्रोता भी हमसे जुड़ते हैं और कई ऐसे श्रोता हैं जो लंबे समय से कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से उनका कॉल लगता है। ऐसा है विविध भारती के इस फोन इन कार्यक्रम से आपका प्यार। तो चलिए देखते हैं कि आज पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर मैं अब्दुल हमीद छेपा बोल रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान से।
0: बताइए जी क्या करते हैं हमीद भाई?
1: सर मैं बैंगल्स का काम करता हूँ सर, चूड़ी पे प्रिंट का काम है मेरा सर।
0: तो ये खानदानी काम है?
1: सर ये खानदानी काम है सर, खानदानी काम सर हमारा

0: कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग का है।
1: ये तो मुझे पता है कि जो चीपा समुदाय के लोग होते हैं ये ब्लॉक प्रिंटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तान में, है ना?
0: जी सर।
1: कितने सालों से ये काम चला आ रहा है और देश के किन किन राज्यों में आप लोग मौजूद हैं?
0: कई पीढ़ियों से हमारा ये काम चला आ रहा है सर, ये हमारा खानदानी काम है ब्लॉक प्रिंटिंग का।
1: जी,
0: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कई राज्यों में ये चीपा समाज निवास करता है सर, ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य करता है।
1: आपने क्यों छोड़ दिया ये काम?
0: सर मैंने सर काम छोड़ा नहीं सर, मेरा शुरू से रुझान दूसरे काम में था और मैं चूड़ी के काम में मेरा रुझान लग गया और मैं चूड़ी पे प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर। जो राजस्थानी चूड़े बनते हैं हमारे, बड़ी से छोटी, छोटी छोटी चूड़े बनते हैं, उन पे प्रिंटिंग का काम होता है सर।
1: ये लाख की चूड़ियां हैं या कांच की हैं?
2: ये सर कांच की फर्जी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री एली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया की संसद जाएंगी और सीनेट के अध्यक्ष मिर्चा अब्द्रुयान और चैम्बर ऑफ डिप्टीज के अध्यक्ष सोनिन गिंदेनु से मुलाकात करेंगी। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। ईरान पर अमरीकी हमलों के तेज होने और यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में तेल टैंकरों पर हमले के बाद एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग खतरे में पड़ गया है। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतों में कल 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन में नेक और सदाचारी विचारों तथा कार्यों के महत्व पर बल दिया। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि व्यक्ति अपने कार्यों, विचारों और वाणी के माध्यम से जिस बात का निरंतर अनुसरण करता है वही उसके कल्याण को निर्धारित करता है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहन के नेतृत्व में भारतीय दल ने लघु तिरंगे लहराते हुए स्पॉट से अरेना में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past...
4: FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:05 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
5: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रजनीश श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम सबसे पहले सुनेंगे खेल गतिविधियों से जुड़ी साप्ताहिक खबरें और उसके बाद आज हम लिए चलेंगे आपको क्रिकेट के कोच वैभव के पास और उनसे हम बातें करेंगे क्रिकेट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं सप्ताह भर की खेल गतिविधियों की सुर्खियों से। नीरज मीरा लॉलिना पर दारोमदार, 23 तारीख से राष्ट्रमंडल खेल शुरू। भारत पहला T20 जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत गया है। गिल शीर्ष बल्लेबाज बनने के करीब। प्रशिक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे बिहार के 2 गेंदबाज। चाइना ओपन, आयुष ने फरहान को बाहर किया। सिंधु ने तोड़ी हुड्डा की चुनौती। विंडीज ने 5वां वनडे और न्यूजीलैंड ने सीरीज जीती। रहमत अफगानिस्तान के वनडे टेस्ट और टेस्ट कप्तान। कुलदीप पहली बार यॉर्कशायर के लिए काउंटी खेलेंगे। कोचिंग में कदम रखना चाहते हैं मुक्केबाज विजेंद्र सिंह। आइए अब सुनते

0: कर रहे विस्तार से। रात 10:30 बजे गुरुवार को उद्घाटन समारोह होगा। भारतीय खिलाड़ी ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगा फहराने को तैयार हैं। स्पर्धाओं में कटौती के चलते भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती शीर्ष 5 में रहने की है। पिछले 24 साल से भारत लगातार शीर्ष 5 में रहा है। भारत का दमदार भाला फेंक में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, ओलंपिक की पूर्व रजत पदक विजेता वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन के कंधों पर होगा। खास है पदक। पदक मेजबान शहर ग्लासगो से प्रेरित है। इनमें समावेशी डिजाइन के तहत ब्रेल लिपि का भी इस्तेमाल किया गया है। पुरस्कार विजेता कलाकार और डिजाइनर मिलित्सा मिलनकोवा ने इन पदकों को तैयार किया है। इनमें फिनिस्ट्रेशन क्रेन और ग्लासगो की औद्योगिक विरासत के साथ साथ शहर के राज्य चिन्ह को भी शामिल किया गया है। 74 देशों के खिलाड़ी पेश करेंगे चुनौती। 3000 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। 11 दिनों तक चलेगा खेलों का महाकुंभ। 10 खेलों की 215 स्पर्धाएं 4 स्टेडियमों में होंगी। पैरा खेल को पहला पदक। पहली बार ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का पहला पदक पैरा पावर लिफ्टिंग में दिया जाएगा। यह पहली बार होगा जब किसी पैरा खेल को राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका की शुरुआत करने का गौरव मिलेगा। गैगवान और टोगो का पर्दापण। 2 नए देश गैगवान और टोगो इन खेलों में पर्दापण करेंगे। गैगवान के 2 जूडो खिलाड़ी, 1 पुरुष 1 महिला चुनौती पेश करेंगे, तो टोगो के 10 खिलाड़ी एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और जूडो में दमखम दिखाएंगे। इसमें 2 महिला और 8 पुरुष खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा खिलाड़ी एथलेटिक्स में हैं। पहली बार दोनों ध्वजवाहक महिला होंगी। भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह में दोनों ध्वजवाहक महिला खिलाड़ी होंगी। मीराबाई और लवलीना जिम्मेवारी संभालेंगी। चानू तिरंगा थामेगी जबकि लवलीना प्रतीकात्मक किंग्स बैटन लेकर चलेंगी। सभी 74 देशों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाले विशेष रूप से डिजाइन किए गए अलग अलग बैटन दिए गए हैं। और आज जो शुरुआत होगी वो पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स। 32 साल के सबसे छोटे खेल ग्लासगो में होने वाले यह खेल पिछले 3 दशक 32 साल में सबसे छोटे राष्ट्रमंडल खेल होंगे। इनमें लागत में कटौती के कारण 4 स्थानों पर सिर्फ 10 खेलों की स्पर्धाएं होंगी। इससे पहले 1994 में कनाडा में भी 10 स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। प्रशिक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे बिहार के 2 गेंदबाज। बिहार के 2 उभरते तेज गेंदबाज वासुदेव प्रसाद और विंकल तिवारी का प्रतिष्ठित MRF पेस फाउंडेशन के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में होने वाले उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। खास बात यह है कि इस वर्ष पूरे देश से इस अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए केवल 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया और दोनों ही बिहार के हैं। मुजफ्फरपुर के वासुदेव प्रसाद बिहार की ओर से अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 20 स्तर पर खेल चुके हैं। उन्होंने BCCI की घरेलू प्रतियोगिता में भी अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। वहीं गोपालगंज के विंकल तिवारी बिहार के अंडर 19 टीम का हिस्सा रह चुके हैं। विंकल का पूर्व चयन BCCI अध्यक्ष राकेश तिवारी के कार्यकाल में शुरू की गई खेलेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार अभियान के तहत गेंदबाजों की खोज कार्यक्रम में भी हुआ था। बाद में उन्हें BCCI के NCA और जोनल मीका मुकाबले के लिए भी चुना गया। दोस्तों, भारत ने अपना पहला T20 मैच जिम्बाब्वे से जीत लिया है। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 125 रन बनाए 7 विकेट पर। भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुना। भारत 13.2 ओवर में 126 रन बनाकर 3 विकेट पर यह प्रतिस्पर्धा जीत ली। अभिषेक शर्मा ने 1 रन, वैभव सूर्यवंशी 50 रन, ईशान किशन 35, श्रेयस अय्यर 28 और तिलक वर्मा ने 6 रन बनाए। वहीं बॉलिंग में मयंक यादव 2 विकेट, प्रिंस यादव 2 विकेट, शिवन दुबे 1 विकेट, रवि विश्नोई 1 विकेट। तो दोस्तों, यह थी खेल गतिविधियों से जुड़ी साप्ताहिक खबरें। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं वैभव कुमार के पास और उनसे जानेंगे क्रिकेट के बारे में। वैभव जी, आकाशवाणी सासाराम आपका हार्दिक स्वागत करता है।
1: धन्यवाद सर।
0: क्रिकेट का इतिहास, भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई थी?
1: सर, सबसे पहले तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि क्रिकेट का शुरुआत जो है वो इंग्लैंड से हुआ था।

0: जी बहुत बहुत बढ़िया। मैं भी आपसे पूछने ही वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले भारत से शुरू करो। ठीक है, आप बताएं।
1: 16वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में हुई थी ये खेल। धीरे धीरे इंग्लैंड में लोकप्रिय होते गया और 18वीं शताब्दी में ये राष्ट्रीय खेल बन गया। और इंडिया में ये 1721 में आया था क्रिकेट, और 1792 में जाके ये पहला क्रिकेट क्लब स्थापित हुआ था। माने क्रिकेट का जो क्रिकेट क्लब होता है वो 1792 में जाके क्रिकेट क्लब जो है इंडिया में स्थापित हुआ था।
0: पहला जो मैच था वो किसके किसके बीच खेला गया था?
1: 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाविकों और व्यापारियों ने भारत में क्रिकेट खेलना शुरू किया गया था।
0: ये तो सही बात है कि इसकी शुरुआत वहां से हुई थी, और भारत में इसका सिक्का इसलिए जमा क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश पर लंबे समय तक शासन किया। आप हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताएं कि जो हमारा पिच होता है क्रिकेट का, उसका डायमेंशन क्या है, और बाकी जो मैदान होता है उसका क्या होता है?
1: 66 फीट होता है, और ऐसे हम लोग नॉर्मल अगर टेनिस क्रिकेट मैच या कहीं हम लोग खेलते हैं तो वहाँ मीटर और हमारे पास नहीं होता है, तो हम अपने अपने भाषा में गज से हम लोग 22 फुट नाप के और वहाँ विकेट गाड़ के खेलने लगते हैं। और जो ग्राउंड का एरिया होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है, वो जैसा कहीं आप देखेंगे कि किसी इंटरनेशनल ग्राउंड पे 55 मीटर का बाउंड्री होता है, कहीं 75 मीटर का भी होता है, कहीं 72 मीटर का भी होता है, तो वो ग्राउंड के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना बड़ा ग्राउंड है, कैसे है, क्या है। बाकी जो पिच होता है वो फिक्स होता है, ग्राउंड का जो लंबाई चौड़ाई होता है वो फिक्स नहीं होता है। पावर प्ले जो होता है वो 30 गज का एरिया होता है, बाकी जो बाउंड्री होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो हमारा जैसा एरिया होता है वैसे हम लोग फिक्स कर लेते हैं।
0: यानी कहने का कि इसके मैदान की लंबाई चौड़ाई क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत जगहों पे छोटे मैदान हैं, बहुत जगहों पे काफ़ी, जैसे लॉर्ड्स के मैदान को माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है।
0: हमारे यहाँ जो मैच होते हैं या पूरी दुनिया में जो मैच होते हैं, तो खिलाड़ियों का नियम कुछ बदला हुआ है। हम लोग यहाँ तक जानते थे कि 11 प्लेयर इसमें खेलते हैं, ठीक है, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो या T20 हो। तो इसमें आजकल देखा जा रहा है कि कुछ नियम बदले हुए हैं। कभी कभी देखते हैं कि एक प्लेयर बैटिंग किया और दूसरा प्लेयर बॉलिंग कर दिया, ये क्या है मामला?
1: सर हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये एक, जैसे कि अभी BCCI जैसे IPL में ये नियम लगाए हुए हैं, एक प्लेयर कोई जैसे कि अब टॉस जीते तो 15 प्लेयर का आपको नाम लिख के देना पड़ता है। तो अगर सपोज दैट बैटिंग आता है तो आप बैट्समैन को यूज करके, और फिर जब आपका बॉलिंग आएगा तो एक प्लेयर को किसी को ड्रॉप करके उस वही चारों में से आप किसी एक प्लेयर को एज ए बॉलर आप खिलाना चाहते हैं तो आप खिला सकते हैं। लेकिन कोई ये फिक्स नहीं है कि आप उसमें से खिलाना ही है। अगर आप चाहते हैं कि हम 11 से ही खेलें तो आप खेल सकते हैं, लेकिन जो अभी इंटरनेशनल मैच होता है उसमें ये नियम अभी नहीं आया हुआ है।
0: यानी ये नियम सिर्फ IPL के लिए। इसमें एक चीज और मैं देखता हूँ कि 4 प्लेयर को आपने रखा है, उसमें से किसी एक को चुना।
1: जी जी,
0: ठीक है ना, इसकी गारंटी नहीं कि किसको चुनेंगे।
1: नहीं, उसी चारों में से आपको क्या होता है कि IPL में जैसे 20 प्लेयर का स्क्वाड बनता है, तो जब एज ए जो कैप्टन होते हैं वो जब जाते हैं टॉस के लिए, तो आप देखे होंगे कि एक पेपर पे नाम लिख के लेके जाते हैं, तो फर्स्ट जो 11 होता है वो, और वो जो 4 प्लेयर होते हैं उसी चारों में से आप एक प्लेयर को खिला सकते हैं, जो 16 से 20 वाले हैं उसमें से नहीं खिला सकते हैं। जी
0: भैरव जी, एक और प्रश्न है। अभी अभी जो हम लोग मैच देख रहे थे IPL में या इसके पहले भी शायद जो मैचे हुए हैं, उसमें क्या मैंने देखा है कि जो अंपायर है अगर उसने अपील पे आउट नहीं दिया, खास करके ये LBW में ऐसा मामला है क्योंकि बाकी में तो स्निक हुआ, कैच हुआ, वो तो क्लियर हो जाता है, तो इसमें मैं देखता हूं कि जब पिच के बीच में एक लाइनिंग खींची जाती है, कंप्यूटर से दिखाया जाता है, बॉल वहां से कर्व करता है और विकेट की ओर जाता है, तो अगर अंपायर कॉल वो नहीं है, ठीक है, जिसे अंपायर ने कह दिया कि आउट नहीं है, तब तो उसको आउट नहीं मिलता है, एकदम ऑन द लाइन एक पिच होना चाहिए। अगर अंपायर ने आउट दे दिया है तब वो पिच पे पड़े या नहीं पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैसा नियम है?
1: कुछ नियम ऐसे हैं कि जो कि ICC और BCCI के, उनकी जब बैठक होती है तो बनाया जाता है। वो जैसे कि आप जो बोल रहे हैं कि जैसे बेल्स पे बॉल लगता है
0: जी।
1: तो उस टाइम इंपायर्स कॉल के, जैसे कि जो इंपायर अगर आउट दे दिए, अगर ओपोनेंट जो प्लेयर है, बल्लेबाज है, अगर वो रिव्यू लिया तो अगर लगा हुआ है बॉल उस पे, तो अगर वो एम्पायर कॉल पे ही जाता है, अगर वो नॉट आउट देंगे तो नॉट आउट दिलाएगा, अगर आउट देंगे तो आउट दिलाएगा, वो उनके ऊपर ही डिपेंड है। तो वो कभी कभी किस्मत के ऊपर पे, वो सिक्के की तरह है कि वो एक क्रिकेट भी एक तरह की, जैसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि बहुत अच्छे खेलते हैं लेकिन उनका किस्मत साथ नहीं देता है तो उतने ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो क्रिकेट के साथ साथ किस्मत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।

0: से, ये मेरा जानना है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं लेकिन जिस दिन बैट से रन आना चाहिए रन नहीं आ पाता है,
1: बिल्कुल
0: जिस दिन उनको विकेट मिलना चाहिए विकेट नहीं मिल पाता है तो वो नहीं ऊपर जा पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी होते हैं कि जिस दिन विकेट मिलना चाहिए वो मिल गया तो ऊपर खेल गए, नहीं मिला तो नहीं खेल पाते। तो क्रिकेट में एक खेल के साथ साथ किस्मत भी चाहिए और आपका माइंड कितना चल रहा है क्रिकेट में ये बहुत ज़्यादा डिपेंड रखा, मैनेज करना क्रिकेट में सबसे बड़ा चीज़ है। अब एज ए बैट्समैन है तो कैसे, आपके पास तो बहुत माने कि शॉट्स तो बहुत सारा है, कवर ड्राइव है, फ्रंट फुट है, बैक फुट है, बहुत सारा शॉट है, स्ट्रेट ड्राइव है, लेकिन ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है कि सारे प्लेयर के पास सारे शॉट्स हों।
1: हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल सही,
0: ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है कि सारे प्लेयर के पास सारे शॉट्स हों, लेकिन जो मैनेज करके खेलता है, जो अपने माइंड से खेलता है वही आगे खेलता है, और फिर एक किस्मत होता है जो इनकी जिसके साथ किस्मत साथ दे दिया वो ऊपर खेल गया।
1: आपसे बात ही करने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि क्रिकेट के बहुत सारे जो रूल है वो बदले हुए हैं वो भी आप हमें बता रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपका भी मनोरंजन हो जाए और श्रोताओं का भी हो जाए, तो गाना वाना सुनना पसंद करते हैं?
0: हाँ एक गाना है वो मेरे को बहुत पसंद है,
1: तो कृपया करके बताएं ताकि मैं आपको भी सुनाऊं और आपके श्रोताओं को भी सुनाऊं।
0: उस गाने का बोल है पैसा बोलता है,
1: पैसा बोलता है। लीजिए आपकी पसंद का गाना मैं आपको सुना रहा हूं, फिल्म काला बाजार से यह गाना है, आइए सुनते हैं।

0: बाबा जी, मैंने आपकी पसंद का गाना आपको भी सुना दिया और अपने श्रोताओं को भी सुना दिया। अब हम लोग बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब हम आते हैं सबसे फेवरेट गेम क्रिकेट में, वो है T20। T20 के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये इतना रोचक हो चुका है कि इसको लेकर T10 भी मैच हो रहे हैं।
1: T20 इसलिए फेमस होते जा रहा है कि कम समय में ये गेम हो जाता है। पहले हम लोग जैसे इंग्लैंड में जो क्रिकेट स्टार्ट हुआ था वो रेड बॉल से हुआ था, तो 5 डेज मैच है, तो लोगों के पास उतना टाइम नहीं रहता था कि जाके ग्राउंड में समय देंगे। तो इस वजह से फिर वनडे आया, वनडे के बाद अब T20 आ गया, अब तो बहुत जगह एक T10 भी आ गया है, T10 भी चल रहा है। लेकिन अभी हमारे BCCI के रूल में अभी T10 नहीं आया है। तो T20 क्रिकेट शुरुआत हुआ था 2003 में, जो इंग्लैंड में हुआ था। पहला मैच जो हुआ था 2003 में हैम्पशायर और सनसेस के बीच खेला गया था।
0: भारत में इसकी शुरुआत कब हुई उसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: 1 दिसंबर 2006 को भारत ने मैच खेला था। 1 दिसंबर 2006 को टीम इंडिया ने पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था, साउथ अफ्रीका से खेला था।
0: और पहला जो मैच हुआ था T20 का वो किसके किसके बीच हुआ था?
1: तो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था ये 17 फरवरी 2005 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था।
0: T20 अभी सबसे फेवरेट गेम है, जैसा कि समय के कारण भी आपने बोला, नहीं तो फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल हो चुका था। और लेकिन अभी मैंने एक चीज और देखा है वैभव जी, कि बहुत सारे देश जो क्रिकेट को अहमियत नहीं देते थे उन लोगों ने भी अपनी टीमें बना रखी है, क्या कारण है इसका?
1: बहुत दिन पे दिन जैसा कि लोकप्रियता बढ़ते जा रहा है, और जैसा कि आपने बोला कि फुटबॉल पहले गेम था, तो फुटबॉल इसलिए था कि 90 मिनट का गेम था, लोग समय देते थे, इसीलिए इस गेम को भी शॉर्टकट में बदल के लाया गया क्रिकेट को T20 में।
0: अभी बहुत सारे देश मैंने देखा है कि जो अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश पैसे में भी और सामरिक दृष्टिकोण से भी, उसके भी अपनी टीम है, और बाकी तो जो छोटे छोटे देश हैं उनके तो टीम है ही। तो अमेरिका जैसे देश भी खेलने लगे, अभी पता चल रहा है कि जापान भी अपनी टीम बना रहा है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं।
1: सबसे पहले कि जो BCCI जो IPL लेके आया ना, इस वजह से क्या होता था कि पहले स्कोप बहुत कम था क्रिकेट में, इंडिया खेलने के लिए बस 11 से 15 लोग ही खेल पाते थे। अब पहले का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिसमें कि 7 से 8 प्लेयर फिक्स ही रहते थे, जो टॉप 7-8 प्लेयर थे जी। तो 7 से 8 प्लेयर में ही प्लेयर चेंज होते थे। अब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया है कि 10 स्टेट का टीम है, 10 IPL का टीम है, और एक टीम में 20 प्लेयर होते हैं जी। तो कम से कम अगर कोई देश के लिए ना खेल पाया तो IPL तो खेल रहा है, 200-250 प्लेयर हर एक साल खेल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सबको लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है। तो वो BCCI बहुत एक अच्छा पेमेंट करता है, माने कि करोड़ों में जी। तो एक अच्छा पैकेज है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो BCCI ने ये जो IPL लाया फ्रेंचाइजी गेम, इसको देखते हुए पूरे वर्ल्ड में ये धीरे धीरे

0: फेमस होते गया। और ये प्रीमियर लीग आप देखेंगे तो हर एक जगह प्रीमियर लीग हो रहा है, वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग हो या श्रीलंका प्रीमियर लीग हो या कोई भी इंग्लैंड में भी प्रीमियर लीग हो। और यही देखते हुए अब आप देखिएगा कि हमारे स्टेट में जितने भी स्टेट हैं अब स्टेट प्रीमियर लीग भी हो रहा है, इसको इतने अच्छे स्तर पर ला दिया गया है कि जो बच्चे को अगर आईपीएल में मौका नहीं मिल रहा है वो अपने स्टेट के लिए खेलें। तो इस चीज़ को देखते हुए लोकप्रियता जो है क्रिकेट का बढ़ते जा रहा है और पैसा भी इसमें बहुत मिल रहा है, तो इस वजह से सबको इसके पीछे भाग रहे हैं।
1: एक और चीज़ मैंने देखा है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने भी यह सोचा कि आईपीएल कराया जाए। इसमें इतने गरीब तबके के भी बच्चे आ गए हैं जिनको शायद ही कभी सोचा जा सकता था कि ये उस लेवल तक जाएंगे।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं अभी हमारे ही शहर से आप देख सकते हैं जो कि छोटे से एक बड्डी गांव से आकाशदीप नाम के जो खेल रहे हैं, कभी वो भी नहीं सोचे थे कि हम इंटरनेशनल खेल जाएंगे। तो एक प्लेटफॉर्म मिला, वो करते गए, अच्छा करते गए और रास्ता मिलते गया और उस चीज़ को वो कभी पीछे नहीं मुड़े, सीरियस होकर देखते गए। यशस्वी जायसवाल आप सुने होंगे आज़ाद मैदान में।

0: जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं अभी हमारे ही शहर से आप देख सकते हैं, जो कि छोटे से एक बड्डी गांव से आकाशदीप नाम के जो खेल रहे हैं, कभी वो भी नहीं सोचे थे कि हम इंटरनेशनल खेल जाएंगे। तो एक प्लेटफॉर्म मिला, वो करते गए, अच्छा करते गए और रास्ता मिलते गया और उस चीज़ को वो कभी पीछे नहीं मुड़े, सीरियस होकर देखते गए। यशस्वी जायसवाल आप सुने होंगे, आज़ाद मैदान में एक टेंट हाउस में वो रहते थे और आज वो एक इंडिया के टॉप 10 के प्लेयर हैं। उसी तरह बहुत सारे प्लेयर हैं, अभी यश दयाल एक प्लेयर हैं यूपी के, तो जितना नाम लें उतना कम है, बहुत सारे प्लेयर। हाँ, रिंकू सिंह भी। तो पहले जो था कि ऐसा था कि जो रिच घर से बिलोंग करता था वही क्रिकेट खेलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, अब बिल्कुल कहीं ना कहीं तो आप जरूर सकते।
1: बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और अपना कीमती समय हमें दिया।
0: थैंक यू सर, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ संपन्न होता है हमारे यह कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा आप अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं। तो फिर देर किस बात की, उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 8211115। संकलन एवं सर रजनीश श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी।

खून बहल नस नस में देख के गुलामी।

भर शर्मा व्यास की आवाज में अभी हम सुन रहे थे राजा पियाजानी एल्बम से ये गीत, माधव पांडे निर्मल का लिखा हुआ और संगीत भी भर शर्मा व्यास का था। अगला आइए सुनते हैं निर्गुण गीत मदन राय की आवाज में। गीत के बोल पारंपरिक है और संगीत भर शर्मा व्यास का है।

अभी आप सुन रहे थे निर्गुण गिन मदन राय की आवाज में। और श्रोताओं, इसी के साथ लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है, भोजपुरी एल्बम लोकगीत का। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसधार।

सिरवा पे होई के सवार, ये गीत आप सुन रहे थे विकास पांडे और साथियों की आवाजों में। विनय दीक्षित का लिखा ये गीत था, विराम पांडे का संगीत था। आइए सुने अगला गीत।

अरविंद अकेल और शिल्पी राज की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। रसधार फिल्म के अंतर्गत आशुतोष तिवारी का लिखा हुआ था और प्रियांशु सिंह का संगीत था। श्रोताओं, इसी के साथ हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने वाले हैं और अब आइए आपको लेकर चलते हैं अगले कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग।

0: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आजा तेरी याद आई
2: कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
0: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
0: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
0: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो
4: भारती।
0: रंग तरंग रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज गूंज रही है इस कार्यक्रम की शुरुआत में। डॉक्टर राही मासूम रजा का कलाम है। दिन की इस भागदौड़ में सुबह के 11 बज चुके हैं और इस भीगे मौसम में विविध भारती कुछ गजलों की फुहारें छोड़ रही है आपके नाम।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल

0: कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
1: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनिए
2: विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम चल रहा है और अब गुलजार के बोल आशा भोसले की आवाज एल्बम का नाम दिल पड़ोसी है।

0: निधा फाजली की रचना थी, चंदन दास की आवाज थी।
1: देर तक बैठे हुए दोनों ने बारिश देखी। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पे लटकती हुई बूंदें, जो ताकुब में थी एक दूसरे के और एक दूसरे को छूते ही तारों से टपक जाती थी। मुझको ये फिक्र कि बिजली का करंट छू गया नंगी किसी तार से तो आग के लग जाने का बायस होगा। उसने कागज की कई कश्तियां पानी में उतारी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे। मुझको ये फिक्र कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा कोहसार से, जब तोड़ के ले जाएगा ये कच्चे किनारे। ओक में भर के वो बरसात का पानी अध भरी झीलों को तरसाती रही। वो बहुत छोटी थी, कमसन थी, वो मासूम बहुत थी। आबिशारों के तरन्नुम पे कदम रखती थी और गूंजती थी, और मैं उम्र के इफकार में गुम तजुर्बे हमराह लिए साथ ही साथ में बहता हुआ चलता हुआ बहता गया।

0: अदान समी बारिश की बूंदों का गाना गा रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं रंग तरंग, एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनिए
0: छाया कांगुली की सोंधी आवाज, जमीर काजमी के बोल।

11:47 और 42 सेकंड हो चुके हैं। विविध भारती से गजलें बज रही हैं और साथ में कुछ मॉडर्न गाने भी। केके की आवाज कौन सी है?

सुरेश वाडकर की आवाज में ये सनी फिल्म की रचना थी और रंग तरंग प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश थी। रंग तरंग कार्यक्रम तो यहां खत्म हो रहा है, लेकिन विविध भारती पर कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। सुनते रहिए विविध भारती।

0: आंखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
4: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रश्नपत्र लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्टर कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
5: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
3: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी।

0: दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
1: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
0: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75,672 जबकि निफ्टी 196 अंक गिरकर 23,673 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में यादों

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्ताने।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

अनीता फिल्म का गीत राजा मेहंदी अली खान के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। शोर फिल्म का गाना संतोष आनंद के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। विविध भारती पर यादों की महफिल, आज मनोज कुमार की याद।

पहचान फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम सन्यासी, विश्वेश्वर शर्मा है गीतकार।

0: अंदर में, पाप है तेरे अंदर में, धर्म छोड़कर ध्यान छोड़कर पाप नहीं अपना है।
1: इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। आज के इस कार्यक्रम में थे मनोज कुमार की कहानी।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक ही भारत एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती का फेसबुक पेज ढूंढने के लिए लिखना है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और आप विविध भारती के टेक्स्ट पर पहुंच जाएंगे। आज का जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से है, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? नीला। और तुम्हारा? लाल। तुम्हें समंदर पसंद है या वादियां? समंदर में वादियां। ऐसा होता तो नहीं, सोचो कभी ऐसा हो तो। अच्छा, तुम्हें भोर पसंद है या शाम? दोनों। तुम्हें आसमां पसंद है या जमीन? दोनों। अरे घोड़ा चतुर मत करो, किसी एक पर रहो। अच्छा तो मैं एक चुनौती देता हूं, देखते हैं तुम कितनी देर चुप रह सकती हो। ये बात है तो लो, अब मैं तुमसे रूठ गई, जाओ। छोटी सी बातचीत की एक इबारत आज के इस कार्यक्रम का मसौदा, और इसमें वो शब्द शामिल हैं जिन पर केंद्रित होगा आज का कार्यक्रम, यानी उन शब्दों से गाने चुनकर आज हम आपको सुनवाएंगे। छोटी सी क्यूट सी बातचीत, और इस क्यूट सी बातचीत में कुछ बड़े प्यारे से शब्द छिपे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस गाने के साथ, और उसके बाद आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़ेंगे जो दिल को छू लेने वाले भी हैं और गुदगुदाने वाले भी। तो आप जिस आवाज की परिकल्पना कर रहे थे उसकी बजाय दूसरी आवाज के साथ नीले रंग का गाना।

सिलसिला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कि इस गाने को इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने भी गाया है। आराम से हम अमिताभ बच्चन वाला वर्जन सुनवा सकते थे, लेकिन हमने चुना लता मंगेशकर वाला संस्करण। एक क्यूट सी बातचीत वाला टेक्स्ट हमने आपको आज के इस कार्यक्रम के लिए दिया है, जिसमें से आपको शब्द चुनने हैं और ये अंदाजा लगाना है कि भाई आज के इस कार्यक्रम में किन किन शब्दों के साथ गाने लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस टेक्स्ट में शामिल हर शब्द के साथ गाने लिए जाएं, और दिलचस्प ये है कि कुछ गुगली भी हो सकती है, यानी जो गाना आप चुने हो सकता है कि वो शामिल ही ना हो। तो मजा आएगा इस अंदाजे के

मेल में भी, लेकिन बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बात कही है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो लाल रंग पसंद है, ये रंग माता रानी चुनरी के रूप में चढ़ाया जाता है और ट्रेन को आपात स्थिति में रोकना हो तो लाल कपड़ा लहरा कर रोका जाता है। जब इन्होंने रंग की बात कर ही दी है तो हम भी क्यों ना करें। चलिए आप सभी बताइए कि अगर कोई एक रंग चुनने को कहा जाए और फेवरेट रंग बताने को कहा जाए तो आप कौन से रंग को अपना फेवरेट रंग कहेंगे। यहां की जो बातचीत थी उसमें लड़का कहता है कि उसे नीला रंग पसंद है और लड़की कहती है कि उसे लाल रंग पसंद है। लड़का लड़की की बातचीत तो हो गई, लेकिन आप क्या कहेंगे, कौन सा रंग पसंद है आपको। और इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है, अनुमान अनुरूप अकल्पनीय आरंभ सुरीला सफर के पहले शुरुआती गाने में बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता लिखती है कि नीले से याद आया राजेश खन्ना, फिल्म सफर में कहते हैं, जानती हो नीला प्रेम की परिभाषा है, क्या प्रेम रोक लेने में नहीं समझ लेने में होता है, ये तुम तब समझोगी जब मैं एक दिन तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। ये बहुत ही प्यारी बात लिखी एक श्रोता ने। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखती हैं कि यश चोपड़ा ने रात के बैकड्रॉप में दोनों किरदारों के बीच की केमिस्ट्री को बड़ी खूबसूरती से फिल्माया था। और इसके अलावा रेखा और अमिताभ हमारी फेवरेट हैं, ये बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है, बल्कि कई श्रोता हैं, मुझे एक के बाद एक कमेंट्स नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं घोड़ा चतुर वाला गाना जरूर बजाइएगा, देखते हैं कार्यक्रम के सफर में क्या हो पाता है। और एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल पूरी फेहरिस्त लिखी है कि इन शब्दों से ये गाने बजाए जाएंगे। 11 गानों और शब्दों की फेहरिस्त है, आपकी मेहनत को सलाम। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे तो हरा रंग पसंद है, सप्तरंगी, इंद्रधनुष, तितलियां, पता नहीं, इन्होंने बहुत सारी अलग अलग शब्दों के साथ अपनी बात कही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो आज के इस कार्यक्रम में कमेंट कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं, ईजाद इबारत कर गए जो आज पुनः पधारे हैं, सुरीला सफर में नई ऊर्जा फूंकने स्वयं पधारे हैं, शुक्रिया आपका। मेरे स्कूल के दिनों में सीनियर लड़के लड़कियां सन्यासी फिल्म के गाने पर डांस किया करते थे, पिछले कार्यक्रम में जो गाना बजा उसकी बात हमारे एक श्रोता ने की है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता अपनी बातें कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे कुछ दिलचस्प सवाल भी पूछूंगा और इन दिलचस्प सवालों के जवाब जब आप देंगे तो हम आपको थोड़ा ज्यादा पहचान पाएंगे, आपस में बात होगी, बात से बात चलेगी और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमने आपसे पूछा है कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, आप में से सभी श्रोता अपनी अपनी बात कहें और सिर्फ रंग का नाम नहीं लिखें बल्कि अपनी बात भी कहें कि ये रंग क्यों पसंद है। तब तक इन साहब की बात सुनते हैं जो किसी एक रंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि ये गाना किस फिल्म का है और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

भाई ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि प्रेम नगर फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। एक श्रोता लिखते हैं कि आसमानी रंग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसी से समंदर में पानी का रंग बनता है और दूर पर्वत भी इसी रंग में दिखाई पड़ते हैं। एक और श्रोता है जो लिखती है कि हरे रंग की जहां बात है तो बचपन हरियाली भरे गांव में गुजरा, दूसरे नगर चलकर स्कूल जाते वक्त हरे भरे खेतों के बीच गुजरते रास्तों से जाना होता था, छुट्टी के दिन खेत में जाना होता था, प्रकृति के बीच जो पले बढ़े हैं उन्हें हरा रंग बहुत पसंद आता है। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है, सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने बगीचे के हरे पौधों को देखती हूं, आंखें खुश हो जाती हैं। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है, उनका कहना है कि हरे रंग की अपनी एक कहानी होती है, हर रंग की अपनी एक कहानी होती है, कोई खुशी का एहसास बन जाता है, कोई यादों का और कोई किसी अपने की मुस्कान का। शायद इसीलिए रंग कभी सिर्फ रंग नहीं होते, रंग तो सभी प्यारे होते हैं, बस देखना यह है कि हमारी आंखें किस रंग को अपना मानती हैं। बहुत ही प्यारी बात। एक श्रोता फिरोजी रंग को पसंद करती हैं, कहती हैं कि ये ईश्वर का रंग है। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये कि आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता है जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट पसंद हैं और उनका कहना है कि ब्लैक एंड व्हाइट रंग जल्दी मिल जाते हैं इसलिए इन्हें पसंद है। एक और श्रोता है काला रंग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है। एक और श्रोता है जिन्हें लाल रंग पसंद है। एक श्रोता है जिन्हें आसमानी रंग पसंद है। कितने श्रोताओं ने अपनी बातें लिख दी हैं और इन बातों में उनके जीवन की कुछ कुछ कहानियां भी छिपी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ईश्वर द्वारा नवाज आपके मीठे स्वर और आपकी आवाज में शब्दों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है, आपका शुक्रिया। जरा नवाजी हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि मुझे लेवेंडर कलर बहुत पसंद है, प्रकृति भी ये रंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाती है। मुझे लेवेंडर के फूल, ऑर्किड, जामुन और बैंगनी ये सारी छटाएं पसंद हैं इस रंग की। और एक श्रोता है जिन्हें काला रंग पसंद है, इसके साथ कुछ भी मैच कर लो मैच हो जाता है। पीले रंग को पसंद करने वाले भी बहुत सारे श्रोता हैं और अब हम समंदर की तरफ जाने वाले हैं। रंगों की इस महफिल से आगे बढ़कर समंदर की तरफ चलते हैं और इस सवाल के साथ चलते हैं कि जब आपके शहर में बारिश होती है और बहुत अच्छी बारिश, पिकनिक का मौसम हो जाता है, तो अपने शहर के आसपास कौन सी ऐसी जगह आप

जाते हैं जहां बहुत सारा पानी है। जैसे भोपाल के लोग बदबदा डैम की तरफ चले जाते हैं, जबलपुर के लोग सीधे जाते हैं भेड़ाघाट की तरफ, और इलाहाबाद और बनारस के लोग घाटों की तरफ जाते हैं। आप बारिश के दिनों में पिकनिक बनाने कहां चलते हैं? इस प्यारी बात के साथ समंदर की ओर रुख किया जाए। अनंत लहरें किनारों से टकराती चली जाती हैं, लेकिन थकती नहीं, सदियों से टकरा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, हमें प्रेरणा देते हुए कि जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। कहां कहां का समंदर आपने देखा और समंदर के किनारे खड़े होकर बैठकर आपके दिल में किस तरह के ख्याल, किस तरह के एहसास आए, ये भी बताइएगा।

प्रतीत हो जाता है, बहुत खुशनुमा माहौल होता है। एक और श्रोता कहती हैं कि पुरी में समंदर के सामने बैठी रही, लहरों को आते जाते देखती रही। एक और श्रोता का कहना है कि नीले समुद्र की अथाह गहराई को देखकर लगता है मानो धरती ने अपने सारे सपने नीले आकाश की गोद में सजा दिए हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है। एक और श्रोता है जिनका कहना यह है कि मैंने मुंबई, थाईलैंड, कन्याकुमारी, दुबई, न्यूजर्सी के अंतिम छोर का समुद्र देखा। एक और श्रोता है, समुद्र केवल पानी का विस्तार नहीं बल्कि इंसानी भावना और अनंत गहराइयों का एक जीता जागता दर्पण है। इसकी हर लहर में एक कहानी, एक खामोशी, एक गहरा सुकून छिपा होता है। एक और श्रोता का कहना है कि बारिश के दिनों में हम अपने गांव चले जाते हैं जहां घर के आंगन से ही पर्वत और हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है। एक और श्रोता है जिन्होंने गुहागर, रामेश्वर, कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण और महाबलेश्वर में समुद्र का है, गोकर्ण वगैरह का समुद्र देखा। एक और श्रोता जिन्होंने ये लिखा है कि हमारे शहर के आसपास जब अच्छी बारिश होती है तो खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने डैम का पानी लबालब भर जाता है। मां नर्मदा अपने पूरे उफान पर होती हैं, डैम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये दृश्य बड़ा ही देखने लायक होता है। तेज वेग से बहता हुआ पानी, उसकी गूंज, प्रकृति का विराट रूप मन को रोमांचित कर देता है। इसीलिए जब डैम के गेट खुलने की खबर सुनाई देती है तो लोग भागते हैं उस नजारे को देखने के लिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 1973 में मुंबई का समुद्र देखा था और अंधेरी से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल गया था। ओहो हो हो, बड़ा लंबा सफर किया आपने। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि कटक शहर के पास एक चिल्का झील है, पुरी, पारादीप, गोपालपुर, चांदीपुर जैसे समुद्र तट हमने देखे हैं। एक और श्रोता कहती है कि हमारे सूरत शहर में इस बार बारिश जो है वो तबाही लेकर आई है। समुद्र का कनेक्शन तो जीवन से है, समुद्र की गहराई और ऊंचाई और उस तरह से हमारे जीवन के उतार चढ़ाव सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये भी हमारे एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे आसमानी रंग पसंद है, जलंधर सिटी में आज बादल नहीं छाए हैं, आसमान बिल्कुल साफ है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमने कोंकण में तार कर ली, देवगढ़, गणपति पुले, आरे वारे, जितने भी किनारे मिले हैं सब देखाए हैं। एक और श्रोता है जिनका कहना ये है कि जब भी मैं कपड़े सिलवाता हूं तो ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लू कोट सिलवाता हूं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं एयरफोर्स में हूं। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि उन्हें ब्राइट कलर्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनका कहना है कि हमारी नन्ही परी को पर्पल कलर पसंद है। फिर एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि वादियों में थोड़ा नीलापन, गेहूं की बालियों का सुनहरा रंग, थोड़ा तांबई नीम के पेड़ों में सांझ से थोड़ी लालिमा वाला रंग, एक भरा पूरा इंद्रधनुष टहूकता रहता है, मुझे ये सारे रंग बहुत पसंद हैं। बस इसी बात की डोर पकड़कर चलते हैं वादियों की तरफ ये गाना सुनने के लिए। आपको बताना है कि मुकेश के साथ इस गाने में जो गायिका है उनका नाम क्या है और ये गाना किस फिल्म का है, और साथ में ये कि आपको किस इलाके की वादियां बहुत पसंद हैं, आपके दिल के करीब हैं।

क्या प्यारा गाना, और बहुत सारी श्रोताओं को इस गाने में बड़ा अच्छा लगा। एक श्रोता लिखती हैं कि लता जी कितना सुंदर गाती हैं और बोलती भी कितना मधुर हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि ये बारूद फिल्म का गाना है। एक और श्रोता की बात कि मैं समंदर के किनारे जाती हूँ, जब बारिश होती है तब उसकी लहरें भी काफ़ी ऊँची होती हैं, लहरों की बूंदें जब चेहरे से टकराती हैं तो मन रोमांच

गाना कहता है वादियों में खो जाएं हम तुम, ये एक बहुत ही प्यारी बात है। और एक श्रोता ने बड़ी गहरी बात लिखी है, कहते हैं कि इंसानों में सबसे बड़ा रंग प्यार और मोहब्बत का रंग होना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज महान नायक उत्तम कुमार ने इस संसार को अलविदा कह दिया था, उनकी याद में एक गीत जरूर सुनवाइएगा। तो भाई इस कार्यक्रम के बाद जब सदाबहार नगमे कार्यक्रम 2:30 से मैं आपको सुनवाऊंगा तो उत्तम कुमार जी के गाने जरूर होंगे। और ये यकीन रखिए कि विविध भारती किसी भी कलाकार की अवहेलना नहीं कर सकता, हम किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मनोज कुमार जी के गाने सुनवाए तो उत्तम कुमार जी के गाने भी आज बाकायदा सुनवाए जाएंगे। कुछ और श्रोताओं की बातें, मेघालय के चेरापूंजी की वादी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके अलावा कई श्रोताओं ने लिखा है कि यह आरती मुखर्जी की आवाज है। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने इस फिल्म के दूसरे गानों का भी जिक्र किया है, आरंभ नाम की यह फिल्म जिसमें सभी सुख दूर से गुजरे जैसे गाने हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि मैं राजस्थान में हूं, 8 दिनों से बादल मंडरा रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। एक श्रोता है जिन्हें अमरकंटक की वादियां बहुत पसंद हैं और उनका कहना है कि जब हम वहां गए तो वापस आने का मन नहीं कर रहा था। किसी को जम्मू कश्मीर के पुंछ की हरी भरी वादियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग पसंद की जगह लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर के सामने तापी नदी पूरे उफान के साथ बह रही है। और इसके अलावा कुछ श्रोता हैं जिन्हें सिक्किम, मेघालय, दार्जिलिंग और मसूरी की वादियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। एक और श्रोता बहुत गहरी बात लिख रही हैं कि जिंदगी में सब रंग मिल जाएं तो जीवन खुशनुमा हो उठता है, मगर सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा हम चाहते हैं, ये बचकानी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जो कम सुनाई देता है लेकिन ये गाना एक बहुत ही प्यारे एहसास को बयां करता है। फिल्म का नाम बताइए।

क्या सुंदर गाना। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि भाई ये सन्नाटा फिल्म का गाना है, हेमंत दा और गुलजार साहब ये दोनों। और एक श्रोता लिखते हैं कि पूरी तरह से अनसुना गाना है। और विविध भारती की खासियत ये है कि वो हमें खो गए गुमनाम मधुर गीतों से रूबरू करवाती है। उसके अलावा एक श्रोता ये है कि विविध भारती पर सन्नाटा कभी होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे शहर अजमेर में कोई सागर नहीं लेकिन आना सागर झील है, और किनारे पर ऐतिहासिक बारादरी जहां हम बरसात में पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मिनाल का झरना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और हम वहाँ जाते हैं। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो मुंबई का सफ़र करने वाले थे लेकिन आज गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि हमारे शहर सूरत में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप सभी अपने मौसम का मजा लीजिए, साथ में विविध भारती से जो गाने बज रहे हैं और जो बातें हो रही हैं इन बातों का आनंद लीजिए। अब समंदर और वादियों और इन तमाम बातों से होते हुए हम एक भोर की बात तक पहुंच गए हैं। ये गाना आपके लिए। और जैसे इस इबारत में लड़की लड़के से पूछती है तुम्हें भोर पसंद है या शाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको भोर पसंद है दोपहर या शाम। और साथ में ये भी बताइए किस फिल्म का है ये गाना।

कुछ श्रोताओं ने जवाब लिखे हैं, आंचल फिल्म का ये गाना राखी राजेश खन्ना के लिए ये गाना गाती हैं। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने पहले कभी नहीं सुना, विविध भारती ध्यान से सुनिए, ये गाना विविध भारती पर कभी कभी बजता है। मजरू सुल्तानपुरी की बोले, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे भोर बहुत पसंद है, क्योंकि सवेरे जब उठो तो उठते ही नई ताजगी, नई उम्मीद के साथ जैसे खिड़की खोलते ही एहसास संध्या में नहीं होता। एक और श्रोता लिखते हैं कि बरसात में जब पानी ज्यादा गिरने लग जाए तो दीवारों में सीलन जमने लगती है, दीवारों के रंग निकल कर कैसे तो दिखने लगते हैं, रंग का मिजाज अलहदा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम तो मैदानों में रहते हैं जहाँ खेती बाड़ी होती है, यहाँ नदियाँ तो हैं, पहाड़ और वादियाँ दूर दूर तक नहीं हैं। उत्तर नेपाल के पहाड़ 150-200 किलोमीटर दूर हैं, दक्षिण विंध्य की पहाड़ियाँ भी बहुत दूर हैं। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि भोर की बेला इतनी सुहानी होती है कि मध्यम उजाले और नीरव शांति में मेडिटेशन करने का, प्राणायाम करने का मजा अलग होता है और गौर से सूर्योदय देखने का मजा भी अलग होता है। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें भोर बहुत ज्यादा पसंद है, पर कुछ श्रोता तो ऐसे भी होने चाहिए ना जिन्हें शाम पसंद है। क्या आप बता सकते हैं कि अब जो गाना आ रहा है उसे किसने लिखा है और ये किस फिल्म का गाना है? और हाँ, आपको अगर शाम पसंद है तो वो शाम कहां बिताना पसंद है ये बताइएगा।

0: सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की आवाजें, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये अहमद वसी का लिखा गीत है। बहुत सारे श्रोता ये भी जानते हैं कि अहमद वसी किसी वक्त में विविध भारती के उद्घोषक हुआ करते थे। अहमद वसी की याद इस गाने के जरिए। एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि शाम दिन का वो खूबसूरत पल है जब आसमान धीरे धीरे अपने रंग समेटता है और मन अपनी भागदौड़ लगता है। पूरी प्रकृति कह रही है कि अब कुछ पल सुकून से अपने साथ बैठो। एक श्रोता का कहना है कि संध्या का समय अच्छा लगता है, क्षितिज पर पिघलता सूरज और खामोश होती हवाएं दिल में एक अजीब सा सुकून भर देती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि उन्हें शाम पसंद हैं, और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि भोर और शाम का असली आनंद खुले आसमान के नीचे मिलता है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे शाम इसलिए पसंद है क्योंकि बच्चे और पति वापस आने वाले होते हैं, तो खाना क्या बनाऊं और जल्दी जल्दी खाना बनाकर सबके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता जो कहती हैं कि वो सुबह ज्यादा एक्टिव रहती हैं, हल्की सुबह का धुंधलका उन्हें बहुत पसंद है और जैसे जैसे शाम होने लगती है उनका दिल बेचैन होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं
1: आसमां के नीचे,
0: आसमां के नीचे।

0: भाई आसमां के नीचे ये प्यार का जहां बसाने के लिए चल पड़े हैं। एक श्रोता कहते हैं कि अगर किसी ने कहा कि अभी कहीं चलते हैं घूमने के लिए, तो भैया हम अपने गांव जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कन्याकुमारी जाना पसंद करेंगे। एक और श्रोता है जो सागर के किनारे किसी सनसेट पॉइंट जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि भोपाल में 10 से 15 किलोमीटर पर बहुत सारे डैम हैं, वहाँ जाना चाहिए। कंचनजंगा पर्वत किसी को जाना है। और कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें आमेर नाहरगढ़ के किले में जाना पसंद है, तो किसी को लास वेगास जाना पसंद है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर मौका मिले तो इसी वक्त पचमढ़ी चला जाऊं। ओहो, क्या बात है। और एक श्रोता है जिनको कहना है कि मौका मिले तो अभी मैं विविध भारती के कार्यालय आ जाऊं। क्या बात है, प्यारी बात। और इन सबसे होते हुए अब हम उदासी की राह पर चल पड़े हैं और चुप की राह पर चलते हुए ये गाना आपको बताना है कि किस फिल्म का गाना है और किसने लिखा है।
1: बस रे

0: प्रतीक्षुता लिखते हैं कि भाई कैसे 50 मिनट बीत गए हैं, पता ही नहीं चला, और तकरीबन आखिरी गाने की तरफ आ गए हैं। एक श्रोता है जिन्हें घोड़ा चतुर वाले गाने का इंतजार है, लेकिन आज शायद वो गाना आ नहीं पाएगा। भाई सब गाने कैसे बजाएं, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी तो सीमित है, और आखिरी में अगर ये बात हो तो ज्यादा अच्छा रहता है।
1: बात नजरों की
0: इस बात के साथ कि आज इस वक्त इस पल कौन है जो आपसे रूठा हुआ है और आपको मनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कार्यक्रम का ये जो सफर है अब अपने आखिरी मकाम पर पहुंच गया है, तो बड़ा मुश्किल है कि कौन से कमेंट्स शामिल करें और कौन से छोड़ें, पर ये वादा करते हुए जा रहे हैं कि आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और यहाँ से निकलने के बाद भी पढ़ेंगे, तो ये समझिएगा कि सभी कमेंट्स पर हमारी नज़र ज़रूर पड़ती है और कई लोगों को

आज का ये कार्यक्रम पसंद आया है बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी में सुर घोलते रहिए, विविध भारती के संग रहिए। जैसे कि मैं बोलता हूं हमेशा आपसे कि दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, बने रहिए विविध भारती के संग। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। प्रतीक्षा समाचारों की।

0: विविध भारती से बोल रही हैं, वंदे मातरम।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 38वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्रिका का बड़ा योगदान रहा इस क्रांति में। महाराष्ट्र की और देश की स्वाधीनता की लड़ाई की दृष्टि से समाचार पत्रों के इतिहास में जो स्थान लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी का था, वही स्थान श्री अरविंद और बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम पत्रिका का रहा। भारत के राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र बन गया वंदे मातरम। लेखनी भी कई बार तलवार से अधिक धारदार बन जाती है और क्रांति कर दिखाती है।
1: 1906 से 1908 के इस काल में इस समाचार पत्र ने जनमानस को सींचा, लोगों के मन को तैयार किया। इसका श्रेय जाता है श्री अरविंद को। इस अंग्रेजी दैनिक ने युवाओं के मन में तेज उत्पन्न किया। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल ऐसे दो गुट हो गए और दिसंबर 1907 का सूरत अधिवेशन भंग हो गया। श्री अरविंद ने 12 अप्रैल 1908 के वंदे मातरम के अंक में लिखा था,
2: विदेशी सरकार के पास याचना विनती करके स्वतंत्रता खरीदी नहीं जा सकती, उसके लिए नौकरशाही से युद्ध करने और रक्त बहाने की तैयारी चाहिए।
0: वंदे मातरम समाचार पत्र के कारण बंगाल में आंदोलन को मजबूती मिल रही थी। उसी दौरान एक सभा में वंदे मातरम इस गीत का उल्लेख करते हुए गुरुदास बैनर्जी ने बंकिम चंद्र को ऋषि बंकिम कहकर संबोधित किया। इस सभा में वंदे मातरम समाचार पत्र से जुड़े हेमेंद्रनाथ घोष उपस्थित थे। गुरुदास बैनर्जी उच्च कोटि के कानूनविद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उदार शिक्षा के समर्थक तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में प्रसिद्ध थे। न्यायमूर्ति रानड़े को महाराष्ट्र में जो सम्मान प्राप्त था, वही सम्मान गुरुदास जी को बंगाल में प्राप्त था। सर गुरुदास बैनर्जी जैसे बंकिम चंद्र के समकालीन व्यक्ति और नेता द्वारा बंकिम चंद्र जी का ऋषि बंकिम के रूप में गौरवान्वित किया जाना उनके लिए एक नई बात थी। उन्होंने यह समाचार श्री अरविंद को दिया और तब से श्री

0: अरविंद भी बंकिम चंद्र जी का उल्लेख करते समय ऋषि बंकिम ही कहने लगे। बंकिम चंद्र जी का यह ऋषित्व श्री अरविंद ने ही लोगों के सामने लाया।
1: किशनगंज जिले के गलगलिया चेकपोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 233 कार्टन शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के भारत नेपाल सीमा के सोनामनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। पार्लियामेंट में आज लगातार पांचवें दिन भी हंगामा जारी रहने के सबब लोकसभा की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल कार्रवाई के दौरान वजीर पार्लियामानी उमूर किरेन रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कुछ शर्तों के सबब बहस आगे नहीं बढ़ पाई है। जनाब रिजिजू ने कहा कि सभी अराकीन की यह मंशा है कि इस मामले पर बामाने बहस होनी चाहिए। जनाब रिजिजू ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क को यकीन दिलाया है कि पेपर लीक पर सख्त कानून लाया जाएगा। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने अपोजिशन जमातों पर नीट पेपर लीक मामले पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। जनाब सिंह ने आज पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर बच्चों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे मामले को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। बिहार कानून साजिया के मानसूनी इजलास के आज आखिरी दिन कानून साजी से मुतलिक उमूर का निपटारा किया जा रहा है। कानून साज काउंसिल में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में असाजा की कमी, बुनियादी ढांचों का फुकदान और NBA की मंजूरी का मामला उठाया गया। वक्फे सवालात के दौरान रुकन काउंसिल सौरभ कुमार और महेश्वर सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत के बेशतर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के BTEC प्रोग्राम को NBA की मंजूरी नहीं मिली है। सवाल के जवाब में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीला मंडल ने कहा कि 11 कॉलेजों के लिए मंजूरी का अमल शुरू कर दिया गया है। इधर असेंबली में विमल राजवंशी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस के दौरान PDS के तवसुस से मुस्तफिदीन को गैर मियारी अनाज फराहम करने का मामला उठाया और पूरे मामले की आला सतही जाँच का मुतालबा किया। वज़ीर-आला सरबराज चौधरी ने आज बासलाहियत खिलाड़ियों को मेडल और नौकरी पाओ स्कीम के तहत 19 खिलाड़ियों को तकर्रुरनामे और खेल वजीफे के लिए 637 खिलाड़ियों को इंतखाबनामा पेश किया। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में मुनक्किद प्रोग्राम में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार को डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट और एथलीट पीयूष राज को पुलिस सब इंस्पेक्टर के ओहदे के लिए तकर्रुरनामा दिया गया। इसके अलावा 5 पैरा खिलाड़ियों समेत मुख्तलिफ खेलों के दिगर बासलाहियत खिलाड़ियों को भी तकर्रुरनामे सौंपे गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्याल शेयर करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां एडिशन होगा। प्रोग्राम का नशरिया आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके फौरी बाद मैथिली जुबान में इसका नशरिया आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी नशरिए को दोबारा रात 8 बजे से भी सुना जा सकता है। मॉनसून की सरगर्मी से रियासत के बेशतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह पटना और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाल मगरबी और जनूब मगरबी हिस्सों के ज़िलों में कुछ मकाम पर तेज़ हवा के साथ बारिश की पेशनगोई की है। इधर महकमा ने पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, गया, समस्तीपुर समेत 18 ज़िलों में अगले 2 घंटों के दौरान बिजली गिरने के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। किशनगंज जिले के गलगलिया चेक पोस्ट के पास महकमा आबकारी की टीम ने गाड़ी जांच के दौरान एक ट्रक से 237 कार्टन शराब के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले की भारत नेपाल सरहद के सोनामनी थाना इलाके में पुलिस ने छापा मारकर 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: This is All India Radio, the news read by Anuja Kumar.
1: Namaskar. यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL असिस्टेंट के 500 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा जिसकी अंतिम तिथि है 7 अगस्त 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता है www.natiolinsurance.nic.co.in यानी www.nationalinsurance.nic.co.in। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB सिलेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 33 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 अगस्त 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.indianrailways.gov.in यानी www.indianrailways.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य के लिए 150 पदों पर योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट भी प्राप्त है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा जिसकी अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2026। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता है www.bpssc.bihar.gov.in यानी www.bpssc.bihar.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भर

0: भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। दोपहर समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थी के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे

0: पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
1: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऐसा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को तरफ समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरण उत्सव है।
3: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है

0: गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा, श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाव थराद और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद

0: ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

0: और ये गाना हमने उत्तम कुमार की याद में आपको सुनवाया। आज उत्तम कुमार की पुण्यतिथि है। छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना सुनिए, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजी। उत्तम कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे।
1: प्यार बन गई

छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना हजरत जयपुरी ने लिखा था, संगीत शंकर जयकिशन का था। इंदीवर के बोल श्यामल मित्रा का संगीत फिल्म

0: दिया है।
1: डॉक्टर विद्या फिल्म का गीत था मुकेश की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शहीद से है, गीत संगीत प्रेम धवन का।

0: पंचायत फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, खुशियाँ ना कुछ कुछ पानी जैसी होती हैं, हर वक्त पर जरूरी सी। मतलब खुश तो हर इंसान रहना चाहता है, पर जरा बेखबर सा हो जाता है। हम देखेंगे तो पाएंगे कि खुशियाँ हर वक्त हमारे आसपास ही मौजूद रहती हैं। हम हर छोटी छोटी बात को खुश होने का कारण अगर बना लेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कभी जरा नजर घुमाइए, बच्चों की तोतली बोली में कभी अपना नाम सुनना, तो कभी घर के गमले में मनपसंद का फूल खिलना, कभी किसी काम पर तारीफ मिलना, तो कभी कुर्ती का मैचिंग दुपट्टा मिल जाना। ये वो नन्ही नन्ही सी खुशियां हैं जिन्हें हम कभी तवज्जो ही नहीं देते। पर अगर सच कहें तो कई बार ये छोटी छोटी सी खुशियां तकलीफ के वक्त में दवा सा असर करती हैं। तो इंतजार किस बात का है, इन नन्ही खुशियों पर नजर रखिए, हमें फोन मिलाइए और आज की बातें इन्हीं नन्ही खुशियों के इर्द गिर्द समेटिए और अपनी खुशियां हमारे साथ साझा कीजिए। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार। तो देखते हैं हमारे साथ पहले कॉल पर कौन सी सखी जुड़ चुकी हैं। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हम जानना चाहेंगे हमसे कौन सी सहेली इस समय बात कर रही हैं।
1: मैं सृष्टि उपाध्याय इंदौर से।
0: आपका नाम है सृष्टि उपाध्याय, जिन्होंने इंदौर
1: जी
0: से कॉल किया है।
1: जी
0: सृष्टि, अपने बारे में सबसे पहले बताएं, क्या करती हैं?
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ, थोड़ा बहुत समीक्षा वीक्षा लिख लेती हूँ,
0: तो सिर्फ समीक्षा लिखती हैं कि और भी किसी तरह का लेखन कार्य करती हैं?
1: लेख भी लिख देते हैं। अगर कभी किसी उसकी मांग हो तो, कोई अगर हमें समझ में आ रहा है तो लेख लिख देते हैं।
0: और ये जो आप लेख लिखती हैं या समीक्षा लिखती हैं, ये किसी पत्रिका में प्रकाशित होते हैं?
1: हाँ होते हैं ना, होते हैं ना चंचल जी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ही एक रचनात्मक कार्य है लेखन का, और
1: जी
0: ये आपके अंदर बहुत सारे विकास लेकर आता है।
1: जी बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: आपको लेखन की प्रेरणा कैसे मिली?
1: लेखन की प्रेरणा हमने मिली कुछ बातें, कुछ गीत से। जब वो
0: अच्छा,
1: बिल्कुल शुरू हुआ था तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, तो हमारे सहेलियों ने, हस्बैंड ने बोला कि

0: तुम लिख सकती हो, थोड़ा शुरू करो। तो फिर हम लाइब्रेरी जाते थे तो संपादक जी ने हमको बोला एक समीक्षा आई है, आप लिखेंगी क्या? तो हमने शुरू में बड़े हिचक के साथ बोला, सर हम कर तो देंगे लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो आप बेहिचक बता दीजिएगा।
1: ये बड़ी अच्छी बात,
0: हिचक खुलती गई थी।
1: सृष्टि बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आपको ये प्रेरणा जो मिली रेडियो सुनकर मिली। तो
0: जी रेडियो तो हमारा बिल्कुल मतलब 2-3 साल से मम्मी मेरे रख देती थी बगल में, तब से सुन रहे हैं, बहुत शौक है हमें रेडियो का। उसकी आवाज सुन के हमारा रोना चुप हो जाते थे बंद, मतलब रोते रोते हम चुप हो जाते थे। तो रेडियो का बहुत शौक है हमको, हमारा रेडियो सुबह 7 बजे शुरू होता है और 11 बजे ही बंद होता है।
1: तो यानी कि बचपन से ही जो रेडियो का शौक है ये अब जाकर आपके इस लेखन कार्य के लिए बड़ा काम आया।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कोई शौक आपके?
0: बस घर के काम करते हैं, कुछ एक आध डिश बनानी हो तो वो बना लेते हैं। मेन तो हम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा और अपने घर के काम करने के बाद थोड़ा बहुत लिखते रहते।
1: ये बिल्कुल सही बात है।
0: किताबें अगर पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, रेडियो सुनने का बहुत शौक है।
1: अगर लिखना है तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
0: जी जी जी जी जी जी।
1: और जब तक अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे, अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं हम नहीं पढ़ेंगे तो
0: लिख नहीं सकते आप।
1: बिल्कुल सही बात है। और उनका लेखन जो है वो हमें अपनी लेखनी बनाने में बहुत मददगार साबित होता है।
0: जी जी जी।
1: सृष्टि जी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। जो गीत आज आप सुनना चाहती हैं वो बताएं।
0: दुल्हन एक रात की, सपनों में अगर वो आए तो मैं सो जाऊं।
1: जी आपको सुनवाते हैं दुल्हन एक रात की फिल्म का ये गीत।
2: सपनों में अगर

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेल, नमस्ते दीदी। दीदी
0: नमस्ते, बताइए कौन बात कर रही हैं हमसे।
1: जिला सागर मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से भारती कुर्मी बात कर रही हूँ। दीदी
0: भारती कुर्मी, क्या करती हैं आप?
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं
0: कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी?
1: दीदी, कक्षा 8वीं में।
0: कक्षा 8 में? यानी कि अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, छोटी है। और रेडियो सुनती हैं आप रेगुलर?
1: जी दीदी सुनते हैं दीदी, हम चित्रकूट में पढ़ते हैं दीदी, हम दिव्यांग हैं तो दीदी वहीं पे आपका कार्यक्रम सुनते हैं जब हमें टाइम मिलता है। दीदी दीदी हम आंखों से देख नहीं सकती दीदी।
0: अच्छा, लेकिन जो देख नहीं सकते उनकी एक शक्ति बहुत अच्छी ईश्वर बनाकर भेजता है। तो कई लोगों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कईयों की सूंघने की शक्ति, कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं। आप में क्या गुण है?
1: दीदी हम संगीत सीखते हैं दीदी, गाना गाते हैं दीदी, वही सीख रहे हैं संगीत।
0: अभी संगीत कितने सालों से आप सीख रही हैं?
1: दीदी हम तो मतलब जो पहली में यहाँ पे सागर में पंडापुरा में लिया था दीदी एडमिशन,
0: जी
1: 5वीं तक हमने यहीं सागर में पढ़ाई की है, फिर 5वीं के बाद गए हैं दीदी चित्रकूट, वो है हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी।
0: तो उनसे आप संगीत सीख रही हैं अभी,
1: जी दीदी
0: तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आपने सीखना शुरू किया है या आप संगीत विशारद कर रही हैं?
1: दीदी हमें तो बचपन से शौक था, तो दीदी वो यहाँ उन्हीं को हम गुरु मानते हैं और उन्होंने दीदी हमें ये शिक्षा दी है और वही सिखाते हैं दीदी।
0: यहाँ आपको गुरुकुल में रहते हुए ही पढ़ाई करनी होती है?
1: जी दीदी वहीं पे रहते हैं दीदी, हॉस्टल है वहीं पे चित्रकूट में। दीदी
0: फिर घर कितने कितने अंतराल पर जाती हैं आप?
1: जैसे रक्षाबंधन है, दीपावली है, मकर संक्रांति है। जी
0: मतलब जब कोई त्योहार होता है तो उस वक्त आप घर जाती हैं यहाँ से छुट्टी लेकर।
1: दीदी
0: अच्छा, तो आप बता रही हैं भारती कि आपने संगीत की शिक्षा यहाँ ली है, तो हमें कुछ गाकर सुनाएंगी?
1: जी दीदी

0: मैं कहाँ हो, माँ के बिना फूना है जहाँ, कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ आखिर, माँ होती है माँ।
1: बहुत सुंदर गाती हैं भारती आप, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो खुद को खुशी देने के साथ साथ औरों में भी खुशियाँ बांटता है।
0: जी दीदी,
1: और आप इतनी सुंदर विधा से जुड़ी हुई हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आज आप
0: जी
1: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं भारती, ये बताइए हमें।
0: मूवी का नाम है रंग
1: जी,
0: और गाने के बोल है तुमने देखी मेरी आंखें।
1: तुम्हें देखे मेरी आंखें,
0: जी
1: इसमें क्या मेरी खता है।
0: जी
1: बहुत खूबसूरत गीत चुना है भारती आपने, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ कॉल पर जुड़ी है, नाम बताइए अपना।
1: जी, मेरा नाम मनीषा शर्मा है।
0: मनीषा जी, आपने कॉल कहाँ से किया है हमें?
1: मैं गुलाबी नगरी से बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर, गुलाबी नगरी। इसे गुलाबी नगरी क्यों कहती हैं, बताइए।
1: जी, ऐसा है कि ये जो नगरी है, यहाँ पर जो पुराने घर और जो बाजार मिलता है वो सारा पिंक कलर से पेंटेड है, तो इसलिए इस नगरी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है।
0: वहाँ सारे बाजार लगभग एक जैसे ही लगते हैं, अगर वहाँ खो जाए तो रास्तों की पहचान का कोई तरीका होता है क्या, बताइए।
1: देखिए, ये जो नगरी है ये बहुत खूबसूरत है ना,
0: बिल्कुल।
1: और जिस तरीके से ये गुलाबी है, यहाँ के लोग भी बिल्कुल गुलाबी यानी कि पिंक कलर, जो कि आंखों को बहुत ज्यादा सुकून देता है, एक कामनेस है इस कलर में ना, तो लोग भी गुलाबी रंग की तरह बेहद खूबसूरत और बेहद काम है, तो अगर आप खो जाते हैं तो लोगों की मदद से आपको रास्ते पता पड़ जाएंगे। इसके अलावा हर रास्ते के बाहर उसका नाम जो है वो संगमरमर के पत्थर पर खुदाई करके लिखा गया है।
0: और मनीषा जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: देखिए, मैं एज ए प्रोफेसर कार्यरत हूँ और मैं बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, बैचलर्स और मास्टर्स।
0: क्या बात है।
1: इसके अलावा मुझे किस्सा गोही करने का बहुत शौक है, शायरी
0: अच्छा,
1: करने का शौक है, कविताएं लिखने का शौक है।
0: अभी कोई लिखी हुई आपकी पंक्तियां अगर आपको याद हैं, या कोई शेरो शायरी जो आपने लिखी है, आपकी स्वरचित कोई रचना हम सुनना चाहेंगे।
1: जी, मैं सुनाना चाहूंगी। कभी तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चली जा रहा है तूफान में कश्ती मगर दूर साहिल, कि दिल का मुसाफिर चले जा रहा है।
0: बहुत बहुत
1: प्रिया,
0: सुंदर। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं फिल्म मैंने प्यार किया से आया मौसम दोस्ती का गाना सुनना चाहती हूँ।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए, हमारे साथ कौन सी सहेली जुड़ी है इस समय लाइन पर?
1: मैं अलका श्रीवास्तव,
0: अलका श्रीवास्तव जी, आप कौन से शहर में रहती हैं?
1: ग्वालियर के पास एमपी शिवपुरी।
0: शिवपुरी में रहती हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, मैं
0: अलका जी, आप क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ हूँ। वैसे पहले मैं टीचिंग जॉब में थी, अब रिटायरमेंट हो गई हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर होने के बाद जो आपका खाली समय है वो कैसे गुजरता है?
1: बस घर के कामों में निकाल देते हैं, सारा काम होता रहता है।
0: अच्छा, जिन दिनों आप काम किया करती थी, जब आप जॉब पे थी और टीचर का काम करती थी, तो एक शिक्षिका होते हुए क्या आपको समय मिल पाता था रेडियो सुनने के लिए?
1: हाँ बिल्कुल, 4 बजे मैं घर आती थी तो आके घर में बैग रख के सबसे पहले मेरा रेडियो ऑन होता था। हालांकि ये रेडियो से जुड़ा तो मेरा जन्म के बाद से जो आंखें खोली समझदारी हुई तब से जुड़ी हुई, मेरे घर में रेडियो चलता ही रहता था, बचपन से ही सुना है रेडियो।
0: और आप जैसे श्रोता ही हैं जो इसको और लोकप्रिय बनाते हैं। और आज बताइए अलका जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं लाल दुपट्टा मलमल का उसका सुनना चाहती हूँ, क्या करती थी साजना।
0: जी, आपको सुनवाएंगे हम क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैडम,
0: हमारे साथ कौन सी सखी इस समय बात कर रही हैं? नाम बताइए अपना।
1: मैं शारदा भोयर बात कर रही हूँ। मुझे मैम शेषनाग फिल्म का गाना सुनना है।
0: शारदा जी, आपकी पसंद का गीत तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि आप कौन से शहर से बात कर रही हैं हमसे।
1: हम जिला यवतमाल से ही बात कर रहे हैं
0: हाँ, अपने बारे में बताएंगी हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैम। हम तो बस घर का काम करते हैं, हम
0: अच्छा,
1: ब्लाइंड है।
0: अपने आप को खुश
1: गाना
0: रखने के लिए आप
1: सुनना
0: क्या करती हैं शारदा जी?
1: हमें आप खुश रखने के लिए बस मनोरंजन, गाना सुनना, घर के काम करना
0: अच्छा,
1: यही करती है।
0: घर के काम करने में कभी कोई दिक्कत आती है आपको या आराम से आसानी से हो पाता है आपसे?
1: आराम से हो पाता है मैडम।
0: आप किसी की मदद लेती हैं या खुद से कर लेती हैं सब?
1: नहीं मैम, घर में किसी की मदद नहीं लेती, अनोखी जगह में जाएंगे तो मदद लेनी पड़ती है।
0: अच्छा, किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं शारदा जी?
1: क्लासिकल गीत, मीडियम गानों का संगीत सुनना पसंद करते हैं मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए, आपकी फरमाइश पूरी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे।
1: शेषनाग फिल्म का फेर मिलन के गीत, रे मितवा, प्यार भरे गीतों का मौसम, लेकर आई प्रीत।
0: आपको सुनवाते हैं शेषनाग फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ गए हैं अपनी सखियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, आप कौन सी सखी हैं, किन से हम बात कर रहे हैं?
1: मैं युतिका नागर बात कर रही हूँ जयपुर से।
0: जयपुर से आप बात कर रही हैं, अपना नाम फिर से बताएं हमें।
1: युतिका नागर।
0: युतिका नागर, बहुत यूनिक नाम है और ये नाम आज मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपके नाम का मतलब क्या होता है।
1: मेरे नाम का मतलब होता है जूही।
0: जूही?
1: जूही एक, हाँ जूही जो पौधा होता है ना,
0: हाँ
1: जूही
0: जी,
1: का
0: जूही का फूल
1: वो।
0: बहुत सुंदर होता है।
1: तो वो मेरे नाम का अर्थ है।
0: आपके परिवार में ऐसे कौन से सदस्य थे जिनको संस्कृत की भी जानकारी थी और इतना सुंदर नाम चुनके उन्होंने आपका रखा?
1: देखिए मेरे परिवार में जो मम्मी, मेरी मम्मी की तरफ की जो लोग रहे वो बहुत ही अच्छे से एजुकेशन लिए थे। उस जमाने में एमए बीएड करे हुए लोग थे,
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने ही मेरे नाम का ऐसा उच्चारण लिखवाया कि ऐसा हो कि बहुत यूनिक रहे। कहते हैं ना, नाम से ही आदमी की पहचान होती है, तो मेरा नाम यूनिक रखा। और मेरे में कला ही जो कहें, बातें करना, सब चीजें कुछ ऐसी आए जिससे कि मैं यूनिक लगूं।
0: आपका शहर बहुत सुंदर है जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसको गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? और जहां तक मैंने जयपुर के बारे में सुना है, इसे किलों की नगरी भी कहते हैं।
1: हाँ, किलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने मॉन्यूमेंट्स बने हैं, तो यहाँ पे जो राजघराने के लोग थे जो आज भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है जिससे कि टूरिस्ट बहुत आते हैं जयपुर में। बहुत टूरिस्ट आते हैं, आप कभी भी जाएं तो हवा महल देखो, यहाँ का नाहरगढ़ देखो, यहाँ का जंतर मंतर, यहाँ का सिटी पैलेस, यहाँ के मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं।
0: युतिका जी, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं एक बैंक के साथ काम करती हूँ,
0: अच्छा, किस तरह का काम होता है आपका बैंक से जो आप जुड़ी हैं?
1: फ्रीलांसिंग लोगों के साथ ही काम करती हूँ।
0: काम करते हुए आप समय निकाल पाती हैं रेडियो सुनने के लिए?
1: बिल्कुल, रेडियो के बिना जीवन कहाँ है।
0: रेडियो सुनने का शौक सिर्फ आपको ही है या आपके परिवार में और भी कोई है, और आपको ये शौक कैसे लगा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
1: मेरी मदर का नाम है उषा नागर, ठीक है। वो बहुत अच्छी अदाकारा रही, उनके यहाँ से ही मान लीजिए कि मुझे जो है इसमें शौक आया कि मैं म्यूजिक सुनूं, म्यूजिक गाऊं, मैं खुद गाने लगी, मैं खुद गुनगुनाने लगी। और यूं कहीं किसी को संगीत के लिए चुनना नहीं पड़ा, रेडियो पे गाने सुनकर ही मेरी आवाज जो है, लोग मुझे कहते थे कि आप गाना कैसे गा लेती हो, वही सीखा है। मैं क्या कहूँ वो कि रेडियो पे सुनते हैं इतना तो गाना तो आएगा।
0: तो अब हमें भी बड़ी उत्सुकता हो रही है और हम भी चाहते हैं कि आवाज आपकी थोड़ी सी हम सुन लें, और कौन सा गीत गुनगुनाकर हमें बताएंगी आप?
1: जिसकी फरमाइश के लिए मैंने आपको कॉल लगाया है
0: तो
1: वो
0: बताइए,
1: गाना
0: आपकी पसंद
1: है
0: कौन से गीत की है, वही गीत हमें गुनगुनाकर बताइए।
1: महल फिल्म का गाना है, आएगा आएगा आएगा आएगा आएगा।
0: बहुत खूबसूरत गाया आपने, और आपको सुनवा रहे हैं महल फिल्म का गीत आपकी पसंद पर।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमसे जुड़ी है कॉल के माध्यम से?
1: मैम, मेरा नाम मनीषा प्रजापति है, जलंधर
0: मनीषा जी, आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: सिटी।
0: मनीषा जी, अपने बारे में
1: जी
0: बताइए थोड़ा सा कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: तो पूरा दिन आपका किस
1: हाँ,
0: तरह गुजरता है?
1: घर के काम करते हैं, थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, चले
0: ऐसे कौन से
1: जाते
0: काम
1: हैं।
0: हैं जो आपको बहुत खुशी देते हैं, जिन्हें आप बहुत करना पसंद करती हैं?
1: सर मैम, खाना बनाना। हाँ
0: खाना बनाना ऐसा चीज है जो आपको खुशी देता है?
1: जी मैम,
0: और आपके पतिदेव को या आपके बच्चों को आपके हाथ का खाना जरूर पसंद आता होगा, तो कौन सी ऐसी चीज है आपकी बनाई हुई जिसकी फरमाइश आपसे सबसे ज्यादा की जाती है?
1: मैडम खीर।
0: तो खीर बड़ी अच्छी बना लेती हैं आप।
1: हाँ जी मैम,
0: अच्छा, आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मन फिल्म का मैम,
0: मन फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवाए हम?
1: मेरा मन क्या तुम्हें चाहे, मेरा मन, यही मैम।
0: बहुत सुंदर तरीके से आपने गुनगुनाकर बताई है अपनी पसंद। आपको सुनवाते हैं मन फिल्म का, आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं।
1: मैं सानिया गाल से बोल रही हूँ, जिला सहारनपुर के पास से। हम
0: सानिया जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं,
1: घर में काम करते हैं, घर का ही।
0: घर के कौन से काम आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है।
1: मैम, सबसे ज्यादा तो मैं खाना बनाना अच्छा लगता है।
0: तो हम कई बार खुशियाँ ढूंढते हैं तो अपनी पसंद की चीजों में हमें खुशियाँ मिल जाती हैं, तो आपको अपने
1: जी
0: रसोई घर में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है।
1: मैम, मुझे सबसे ज्यादा मीठा बनाने का शौक है। जी
0: तो कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती है आपके परिवार में।
1: मैम, टुकड़े बनाते हैं हम सूजी के। सूजी
0: टुकड़े, किस चीज के टुकड़े बनाती हैं।
1: के बनाते हैं, सूजी
0: अच्छा,
1: को भून कर।
0: सूजी के टुकड़े
1: जी
0: बनाती हैं।
1: जी जी मैम। और मैम, आटे की भी बना लेते हैं हम मिठाई।
0: आटे की मिठाइयाँ भी बना लेती हैं।
1: जी, आटे की भी बना लेती हूँ।
0: तो ये घर की जो बड़ी मिठाइयाँ होती हैं, इनमें कई बार हमें पूरी शुद्धता और पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं। तो आटा, सूजी, ये वो चीजें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं होता, जबकि बाजार में जो
1: जी मैम,
0: मावे की मिठाइयाँ मिलती
1: जी
0: हैं
1: मैम,
0: उनमें कोई भी
1: जी मैम,
0: मिलावट होने की संभावना बनी रहती है।
1: जी मैम,
0: तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार को अपने हाथों से बनाकर उनका मुंह मीठा
1: जी
0: करवाती
1: मैम,
0: हैं।
1: जी मैम, मुझे खुशी मिलती
0: अच्छा, और आपको किस तरह
1: है।
0: का
1: जी
0: संगीत सुनने में खुशी मिलती है, तो आप जो आज गीत सुनना चाहते हैं वही आपको सुनवाया जाएगा।
1: जी मैम, मेरे फिल्म का नाम रहेगा जीने नहीं दूंगा। बोले तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले याद आया करो।
0: सानिया जी, आपको सुनवाते हैं जीने नहीं दूंगा फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हम जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे साथ कौन सी सहेली बात कर रही हैं।
1: मैं जयश्री गुड़े बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। अमरावती
0: जयश्री जी, महाराष्ट्र में कौन से शहर में आप रहती हैं बताइए। अमरावती से आप बात कर रही हैं। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके शौक क्या हैं, आप क्या करती हैं, और खुश रहने के लिए सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है जो आपको खुशी देता है।
1: मुझे शौक है पढ़ने का, किताब पढ़ने का, और
0: किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
1: खुशी के लिए मैं रेडियो सुनती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो यानी कि शौक है आपको किताबें पढ़ने का और अपने आप को खुश रखने के लिए आप रेडियो सुनती हैं। आप किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
1: मैं किताबें हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी पढ़ती, वो स्टोरी और कोई कथा वैथा होती है।
0: तो जो कहानियां आती हैं वो आपको प्रेरित करती हैं।
1: मैडम
0: और रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली,
0: सखी सहेली आपका पसंदीदा कार्यक्रम है
1: हाँ सबसे ज्यादा,
0: सबसे ज्यादा? और उसके बाद
1: हाँ
0: में और कौन से
1: वैसे
0: कार्यक्रम हैं जो सखी सहेली के अलावा सुनना पसंद करती हैं आप?
1: तो सभी कार्यक्रम सुनती हूँ और सभी अच्छे लगते हैं। जैसे वो कहानी आती है सोमवार के दिन, वो कहानी और ये मुलाकात, उजाले, उनकी यादों की, सितारे,
0: अच्छा,
1: सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है, इसीलिए
0: आपके परिवार में और कौन कौन
1: हम
0: हैं?
1: दोनों ही हैं।
0: आप और आपके पति देव।
1: हाँ
0: तो
1: हम
0: आज आप,
1: दोनों ब्लाइंड है मैडम।
0: अच्छा, आप दोनों ब्लाइंड हैं। आपके पति क्या करते हैं?
1: वो कुर्सी बनाते हैं, वो केनिंग की कुर्सी होती है ना।
0: ट्रेनिंग की कुर्सियां बनाते हैं वो।
1: हाँ, और वो नहीं, वो खत्म होगी तो फिर वो ट्रेन में बिजनेस करते हैं, जैसे कि ऑरेंज गोली, शेंगदाना, मूंगफली वो बेचते।
0: अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जयश्री जी?
1: मैं गाना सुनना चाहती हूँ मदर इंडिया का, वो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
0: जीवन है अगर जहर तो
1: जिंदगी
0: पीना ही पड़ेगा।
1: पीना ही पड़ेगा।
0: आपकी पसंद बहुत खूबसूरत है। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार, मेरा नाम चंचल शर्मा है। मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: तो आपने बताया आप चंचल शर्मा हैं और इस समय आपकी
1: जी
0: बात हो रही है चंचल वर्मा से। तो दो चंचल
1: जी
0: सखियां बात कर रही हैं इस समय।
1: जी
0: चंचल जी अपने बारे में बताइए।
1: वैसे तो मैं परिष्कार कॉलेज में लेक्चरर हूँ
0: जी
1: और वैसे रंगमंच भी करती हूँ, राइटर हूँ और रेडियो सुनने का शौक है।
0: मतलब आप तो मल्टीटास्किंग महिला हैं, बहुत सारे काम करती हैं आप, रंगमंच से भी जुड़ी हैं आप, पत्रकारिता भी करती हैं आप, अलग अलग माध्यमों से जुड़ी हुई हैं।
1: जी।
0: इन सब में आपका एक पसंदीदा काम कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है?
1: मैम, मुझे अपनी कविताएं लिखते वक्त रेडियो सुनना बहुत पसंद है।
0: तो अपनी कोई रचना हमें सुनाइए, कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हों।
1: जी, मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। ता उम्र है मुझे सीखना, मेरा सीखना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो। मुझे बनना नहीं सागर ठहरा, ठहराओ मौत की निशानी है, मुझे बहती सी एक नदी रखना, जिसका बहना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो।
0: बहुत प्रेरणादायक पंक्तियां हैं आपकी और निरंतरता की बात इसमें कही गई है कि कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और यही जीवन की सच्चाई है।
1: जी
0: क्योंकि जो थम गया, अगर पानी भी रुक जाता है तो वहां काई जम जाती है।
1: जी और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस जीवन में सतत एक विद्यार्थी है जब तक कि उसकी सांस चल रही है।
0: बिल्कुल, और सीखते रहना चाहिए। जिस दिन हमें लगता है कि हमें सब आ गया ना, जीवन कहीं रुक सा जाता है और ये
1: बिल्कुल,
0: अहंकार कहीं ना कहीं हमें पतन की ओर ले जाता है।
1: और मुझे लगता है मैम कि हम सब में ये जज्बा होना चाहिए कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई हमें कुछ सिखा के जाता है, कोई सीख दे के जाता है, तो हमें दिल से उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और आज आपकी बातें हमें बहुत सीख दे रही हैं। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं हमें ये बताइए, क्योंकि आप तो खुद ही इतनी कविताएं लिखती हैं तो मुझे लगता है आपकी पसंद भी बड़ी अच्छी होगी।
1: मैं, किनारा फिल्म का एक गीत है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे।
0: आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है और ये हम सभी को याद रहेगी। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का किनारा फिल्म का ये गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जिनका कॉल अभी तक नहीं लगा है वे निराश ना हो, आप जरूर कोशिश करती रहिए, क्या पता अगली बार आपकी ही बारी हो और आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की उनसे हमारा अनुरोध है कि अगले 2 महीने तक आप कॉल ना करें ताकि अन्य सखियों को भी कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। पुरुष श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और कॉल कनेक्ट करने में सखियों को परेशानी हो सकती है। सखियों अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 400-24662। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 4002466 2। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुन

तो भरी कहानी बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए रिद्धि चौरडिया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। सपनों की नगरी मुंबई, यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए भागते हैं तो कुछ खुद को भूलकर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए उन्हें निभाने के लिए अपनी जिंदगी भी भूलकर जीते हैं। सुधा भी उनमें से ही एक है। भाई के जन्म के समय माँ दुनिया छोड़ गई और तभी से सुधा के नन्हे कंधों पर

और वो रोज ऑफिस में लेट होकर डांट खाती। सुधा भी क्या करती, समय पर निकलने की कोशिश धरी ही रह जाती। वो बस खुद से यही कहती कि एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन एक रोज जब वो मुंबई की भारी बारिश में भीगते हुए किसी तरह ऑफिस पहुंची, तो मैनेजर ने उसके हाथों से फाइल लेकर सीधे शब्दों में उसे कहा, मैं सुधा, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें आपके जैसे लोग नहीं चाहिए। सुधा कुछ पल के लिए खड़ी रह गई। आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और उसके मन में भी लाखों सवालों की गरज जारी थी कि अब सब कैसे होगा। तेज बरसती बारिश उसकी आंसुओं को भी बहाती ले जा रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम आज इस बारिश के कारण उसे आंसू छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ी।

ये गीत सुधा को पसंद था क्योंकि नायक मरने को जीने से बेहतर बताता है। लेकिन ये बात कहते हुए वो बहुत सकारात्मक ही नजर आता है क्योंकि वो भी जीवन ही चुनता है। सच भी है, जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अगले कुछ दिनों तक सुधा नौकरी की तलाश में यहां से वहां ठोकरें खाती रही। अब नौकरी जल्द पाना जरूरी था क्योंकि पापा की पेंशन तो उनके इलाज के लिए ही कम पड़ती थी। उस पर भाई बहन की फीस और घर के बाकी खर्चे भी सिर बाए खड़े रहते। नौकरी ढूंढने की इस कवायद में एक शाम सुधा बहुत थक गई तो मरीन ड्राइव पर जाकर बैठ गई। सामने उफनता समुद्र था और डूबता हुआ सूरज, हवा में हल्की नमी थी और उसके मन में ढेरों सवाल। थोड़ी देर चुप बैठकर वो सामने ताकती रही, फिर धीमे से उसने कहा, भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है। उस रोज खुद को संभाल कर जब वो घर पहुंची तब भी उसकी मायूसी परिवार से छुपी नहीं थी। उसे छोटे भाई सौरभ ने हाथ में चाय पकड़ाकर कहा, दीदी आप

चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। छोटी बहन सरला ने गले लगाकर कहा, दीदी आप सबसे स्ट्रांग हो। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हिम्मत मत हारना। परिवार का ये साथ भी क्या कम था। अगली सुबह एक उम्मीद लिए आई। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक शांत आवाज आई, मिस सुधा जी, मैं चंदन बोल रहा हूं, हमारी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आप आ जाकर ऑफिस में मिलिए, मैं आपके नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूं। सुधा को जैसे यकीन नहीं हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो आप सुन रही हैं ना, आज आप कितने बजे आएंगी? जी जी हाँ, मैं 2 बजे आकर मिलती हूँ, थैंक यू। सुधा ने फोन रख दिया। कुछ सेकंड वो बस खड़ी रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो काफी दिनों से गायब थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई, पापा मुझे नौकरी मिल गई। छोटे भाई बहन उछल पड़े, पिता की आंखें भर आई और घर में बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। उस दिन सुधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है।

सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉरपोरेट फर्म थी जहां हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहां देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को यह समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वह अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप देर से क्यों आती हैं मिस सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं? ये सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं सर। रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी, वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा, आप ठीक हैं? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूं। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुधा ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती हैं? जी। कितने घंटे? 3-4 बस। और बीती रात? नहीं सो पाई। क्यों, कुछ परेशानी है? सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा, मिस सुधा, आपको कल आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए। सुधा बेचैन सी उठी। मिस सुधा, आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है, आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है। कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च।

तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा, घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है। हाँ, और जो बच जाए कल वापस कर दीजिएगा। जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी, क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।

एक दिन बाद जब सुधा ऑफिस पहुंची तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस

नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन ना आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर तक रुककर काम करती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस शाबाश सुधा, हो गया ना काम। अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे, इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं, इसलिए वो यूं बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे केबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था और उसके इस बचपने पर रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप। अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। तो सुधा ने झेपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं? जी सर, बस अभी जा रही हूं, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला। देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। आप अब तक नहीं गई? सर मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी, सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा। मिस सुधा ये लीजिए, कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया। पर सर आप भी तो। मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूं, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपये बचे थे तो वो, कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस में आपने ओवरटाइम किया है तो इतना तो बनता है। सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नजर बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती।

सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊं, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान। ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूटकर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही मन सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए एक छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी तुझ पे ही डाल दी, माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझाकर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई, जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी रखने लगी और जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दिया। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में सभी को उसी दिन बुलाया गया था। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। गीतों भरी कहानी ये श्रृंखला जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे हैं रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची, वहां उन्हें दिखाकर दवा लेकर उन्हें घर छोड़ने आई। फिर सरला को पापा के पास बिठाकर जल्दी ऑफिस भागी। पड़ोस की संजना दीदी को हिदायत दी कि वो भी बीच बीच में देखते रहें और कोई भी बात हो तो तुरंत कॉल कर दें। ऑफिस पहुंची तो वो आज 2 घंटे लेट हो चुकी थी। रमन ने उसे देखते ही कहा, सुधा आज तो रिकॉर्ड ही बना दिया, बॉस में मिलने के लिए कहा है। अपना सामान डेस्क पर रखकर सुधा सीधे रमेश के केबिन में पहुंची। रमेश काम में व्यस्त था, उसने सुधा को बैठने का इशारा किया। इस चुप्पी ने तो सुधा की जान ही निकाल दी थी। रमेश ने अपना वो काम पूरा किया और पूछा, आज इतनी देर क्यों? सर, पापा की तबीयत, कहते हुए सुधा का गला रूंध गया और वो आगे कुछ ना बोल सकी। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आप जानती हैं कि आप इन्फॉर्म करके घर पर रह सकती थी, पर आपने 2 घंटे बाद ऑफिस आना चुना, लेकिन एक छोटा सा फोन कॉल करना ठीक नहीं समझा, क्यों? सर, मैंने सोचा कि संभाल लूंगी, सुधा ने रूंधे स्वर में ही कहा। क्या संभाल लेंगी आप? ना आप फोन उठा रही हैं, ना आप कुछ बता रही हैं। आप अक्सर देर से आती हैं, हमें आदत है, लेकिन इतनी देर, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता, मान लीजिए उस दिन की तरह चक्कर आ जाता, तो पता कैसे चलता? हम तो यही सोचेंगे कि आप देर से आती हैं और घर के लोग सोचेंगे कि आप ऑफिस में हैं। जानती हैं पिछले 1 घंटे से मैं कितनी टेंशन में हूं? आप फोन भी नहीं उठाती हैं। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती है मिस सुधा, हम सब हैं। सुधा कुछ नहीं बोली, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो बस इतना ही बोल पाई, सॉरी सर। डॉक्टर ने क्या बताया है? रमेश ने पूछा तो सुधा ने सारी बात उसे बता दी। रमेश ने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, आप इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं, मीटिंग दोपहर में है, तब तक पढ़ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो मीटिंग में पूछिए। सुधा ने फाइल उठाकर हां में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए पलटी कि रमेश ने पूछा, आप सैंडविच खाती हैं? जी, सुधा ने सवालिया लहजे में पूछा। ठीक है, चाय या कॉफी? सर, मिस सुधा, मेरी टीम का फिट होना भी मेरे काम का हिस्सा है, कुछ सीखिए राघव से, ऑफिस फंड से ही रोज नाश्ता करता है। सुधा ने जब आश्चर्य से रमेश की ओर देखा तो रमेश ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया और उसकी मुस्कान से सुधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर भी सुधा के चेहरे पर वो मुस्कान कायम रही।

सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहां पास ही

सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकालकर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है, कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा।

सुधा उसे आश्चर्य से देखती हुई बोली, सर आपको ऐसे खाते हुए देखने के लिए तो मैं रोज ला दूंगी। ये कहकर सुधा हंस पड़ी, तुम्हें ऐसे हंसता देखने के लिए मैं रोज ऐसा कर सकता हूँ। रमेश ने सुधा की ओर देखते हुए संजीदा होकर कहा। सुधा ने नजरें झुका ली। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों समझते थे और इशारों में कह भी दिया करते थे, लेकिन बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा था। पर अब रमेश ने सोच लिया कि वो सुधा को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है और उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। उसने ठान लिया कि अगले ही दिन वो सुधा से अपने दिल की बात कह देगा।

अगले दिन जल्दी ऑफिस आकर रमेश सुधा का इंतजार करने लगा। न सुधा आई न उसका फोन लगा। चंदन ने बताया कि सुधा ने छुट्टी ली है। रमेश बेचैन सा रहता, लेकिन उसे लगा कि सुधा के साथ इतना कुछ लगा रहता है कि क्या किया जा सकता है। हफ्ते भर बाद चंदन ने बताया कि सुधा ने ऑफिस में काम छोड़ने की अर्जी दे दी है। रमेश को तो कुछ

समझ ही नहीं आया। चंदन ने सात आया एक खत भी रमेश को दिया। जब रमेश ने खत खोला तो उसमें लिखा था, सर इंसान चाहता क्या है और होता क्या है। आपसे एक छोटा सा वादा किया था कि आपके लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगी, लेकिन ये भी नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा रही हूं। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ना कुछ कह पाई ना समझ ही पाई। पर अच्छी बात यह है कि जिनसे शादी हो रही है वो पापा के साथ साथ सरला और सौरभ को भी साथ रखने के लिए तैयार हैं। कम से कम इन दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ बन जाएंगे तो अपने मन की कर पाएंगे, वरना परिस्थिति कहां किसी की सुनती है। माफ कीजिएगा, मिलने नहीं आ पाई। बस यही तमन्ना है कि आपके घर में कोई आ जाए जो आपको रोज टिफिन बनाकर दे। आप ये कोशिश कीजिएगा। सुधा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। काश उसने सुधा से अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। काश वो उसके पिता से ही बात कर लेता, वो भी तो उसके परिवार को अपनाना चाहता था। पर अब इतनी देर हो चुकी थी। रमेश के मुंह से केवल इतना ही निकला, सुधा तुमने कम से कम मुझे इतना अपना तो समझा कि मेरी खुशियों को भी अपनी खुशी मानकर अपने साथ ही निछावर कर दिया।

बार फिर भागते शहर मुंबई में जीवन की जद्दोजहद के बीच एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। वाचन नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय है हिंदी और अंग्रेजी समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। ये परियोजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को

0: एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भव्य रसायन योजना को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग 2 घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से, मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगें रखीं और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के एक साथ और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सख्त विधेयक लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामा जारी रहने के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने हीट में 25.52 सेकंड का समय लिया और 16 तैराकों में 14वें नंबर पर रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हमारी बहनें अपना प्रसारण सुनेंगी घर आंगन 5:30 पर और 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का प्रसारण गांव घर। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है कृष्ण किसले की वार्ता।

रोहतास की धरोहरों का महत्व, अलावा इसके जीवन में योग का महत्व और विश्व डूबने से बचाव दिवस की भी चर्चा की जाएगी।

आप हमारे केंद्र से लोक गीत सुनते हैं संध्या 6 बजे और रात्रि 9 बजे, और फिल्म संगीत का लुत्फ उठाइएगा सांझ गीत में 6:40 पर। कार्यक्रम ई मन पसंद के तहत 8:15 पर और 10:30 पर सुनिएगा चित्रपट तराने। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास का प्रसारण समय है 7:15 और 7:50 पर आप सुनेंगे विधान मंडल समीक्षा। रात्रि 8 बजे सुनिएगा दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा। आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप 7:30 पर सुनते हैं और रात्रि 8:45 पर दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या सुनिएगा। नौ बजकर 9:30 पर आकाशवाणी पटना की प्रस्तुति आज आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्र का शब्द शिल्प का प्रसारण। जी हाँ, याद रखिए रात्रि 9:30 पर और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के रिकॉर्डिंग का प्रसारण सुनिएगा। 10:15 पर सुनिएगा हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग।

अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी ले रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 होने को हैं। लीजिए सुनिए भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जानी बाबू की गाई इस रचना से।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदन। आइए सुन लेते हैं एक रचना सतीश देहरा के स्वर में।

तो श्रोताओं, अभी आपने सतीश देहरा और साथियों की आवाज़ों में यह भक्ति रचना सुनी और इन्हीं भक्ति रचनाओं के साथ ही आज का कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 होने को हैं। अब हमारी बहनें अपना प्रसारण सुनेंगी, घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों को रीभा का प्यार भरा नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर। आज हम सखियों के साथ चर्चा करेंगे पर्व और पर्यावरण पर। कुछ बातें होंगी परिवार नियोजन कितना महत्वपूर्ण है इस विषय पर। कार्यक्रम के बीच बीच में गीत संगीत का आनंद लेंगे और पाक कला में जानेंगे लौकी से हम क्या क्या बना सकते हैं।

पर्व और पर्यावरण का संबंध बहुत ही पुराना और गहरा है। ये संबंध प्रकृति की पूजा, ऋतु परिवर्तन और आधुनिक प्रदूषण से जुड़ा है। पहले यह पर्व प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के साधन थे, लेकिन आज के समय में गलत तरीके से मनाने पर ये पर्यावरण के लिए हानिकारक भी हो रहे हैं। पेड़ पौधे की पूजा भारतीय संस्कृति में कई पर्वों पर पीपल, बट और आंवला जैसे पेड़ों की पूजा की जाती है, जिससे उनका संरक्षण होता है। नदियों और जल का सम्मान तो हमारी संस्कृति में ही है। गंगा दशहरा, छठ और मकर संक्रांति जैसे पर्व

का स्वागत मकर संक्रांति, लोहरी, ओणम और बिहू जैसे त्यौहार सीधे तौर पर कृषि फसल की कटाई और मौसम के बदलाव से जुड़े हैं। मिट्टी, गोबर, बांस के सूप, दौरे, फूल और पत्तों का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली का प्रतीक रहा है। आधुनिक चुनौतियों की बात करें तो त्यौहार पर हम सब पटाखों का प्रयोग करते हैं, जिससे हवा जहरीली होती है और अत्यधिक शोर से जीव जंतुओं एवं बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। प्लास्टिक, थर्मोकोल और सजावट के कृत्रिम सामानों के अत्यधिक उपयोग से कचरे की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। दिखावे और आधुनिकता की अंधी दौड़ ने हमारे पुराने और पर्यावरण अनुकूल तरीकों को पीछे छोड़ दिया है। हम संतुलन बनाने के उपाय की अगर बात करें तो हमेशा मिट्टी के बर्तन, प्राकृतिक रंग और कम बिजली या LED लाइटों का उपयोग करें। हरेला या अन्य खास अवसरों पर अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। किसी के जन्मदिवस, शादी की सालगिरह पर हम पौधे लगाने के लिए उन्हें जागरूक कर सकते हैं। साथ में उपहार में भी हमें पौधा देना चाहिए। यह भी एक पर्यावरण बचाव की ओर एक कदम ही है। पर्व त्यौहार का उद्देश्य ही है पर्यावरण से जोड़ना, पर्यावरण को बचाना। पृथ्वी हम सब की माता है और इसका संरक्षण हमारी प्रतिबद्धता। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ वायु, निर्मल जल, हरियाली और जैव विविधता के संरक्षण की जिम्मेदारी हम सब की है। हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, जल और ऊर्जा की बचत करें तो हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। तो आइए सखियों, आप एक गीत सुनते हैं।

सखियों, बच्चे हमारे समाज, परिवार और भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वे आने वाले कल का निर्माण करते हैं, जीवन में नई खुशियाँ लाते हैं और हमारी संस्कृति एवं परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ परिवार नियोजन का भी अपना महत्व है। परिवार बढ़ाने को लेकर दंपतियों को अपनी इच्छा अनुसार बच्चों की संख्या तय करने और दो बच्चों के बीच उचित अंतर रखने में मदद करते हैं। यह सुरक्षित मातृत्व, बेहतर स्वास्थ्य, मजबूत आर्थिक स्थिति और परिवार की खुशहाली के लिए बेहद आवश्यक है। बच्चों के जन्म में उचित अंतर होने से माँ के शरीर को रिकवर होने का ठीक ठाक समय मिल जाता है और वो स्वस्थ रहती है। इससे प्रसव संबंधी जोखिम, कुपोषण और शिशु मृत्यु दर भी भारी कमी आती है। सीमित और नियोजित परिवार होने पर माता पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, अच्छा खान पान और पर्याप्त समय दे पाते हैं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होता है। परिवार के सदस्य और आय के बीच संतुलन रहने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और बचत करना आसान हो जाता है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, उन्हें अपनी शिक्षा और कैरियर पर ध्यान देने का अवसर प्रदान करता है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को रोकने में परिवार नियोजन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का सही

उपयोग सुनिश्चित होता है। भारत सरकार द्वारा 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस तरह की राष्ट्रीय पहल शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। इसका मुख्य लक्ष्य जन दर को कम करना और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है। भारत सरकार ने वर्ष 1972 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा है, जो विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करता है। परिवार नियोजन को अब परिवार कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों और जोड़ों को स्वेच्छा से यह तय करने का अधिकार देना है कि उन्हें कब और कितने अंतराल पर बच्चे चाहिए। इससे मातृ और शिशु स्वास्थ्य की रक्षा, अनचाहे गर्भ से बचाव, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार, यौन संचारित रोगों से बचाव, महिलाओं का सशक्तिकरण को बल मिलता है। तो आइए सखियों, चर्चा को कुछ देर के लिए यहीं रोकते हैं और एक गीत सुनते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते

0: का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं, अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सखियों, भोजन का सीधा संबंध स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन से है, जो शरीर को पोषण देता है और उसे शक्ति देता है। शरीर रसोई घर में खाना बनाना सिर्फ एक पाक कला का विषय नहीं है। यह रसोई में रिश्ते बनाने, गृहस्थी में आनंद खोजने और प्रेम देखभाल से बने व्यंजन तैयार करने की जगह है। प्रेम से बना हुआ भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ मन को शांति और आत्मीय संतुष्टि देता है। यह न केवल हमारे शरीर का पेट भरता है, बल्कि हमारे दिल और रिश्तों दोनों को मजबूत करता है। लौकी से कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं। सबसे लोकप्रिय और पौष्टिक विकल्पों में लौकी के कोफ्ते, लौकी के थेपला, लौकी की सूखी सब्जी और लौकी का हलवा है। लौकी के कोफ्ते हमारी सखियाँ इसे ज़रूर बनाती होंगी। इसके लिए लौकी को कद्दूकस करके उसमें बेसन, नमक और मसाले मिलाकर पकौड़े बनाए जाते हैं। इन्हें टमाटर और प्याज की गाढ़ी ग्रेवी में पकाया जाता है और यह उत्तर भारत की बहुत ही प्रसिद्ध और स्वादिष्ट डिश है। लौकी की थेपला या चीला नाश्ते के लिए लौकी बहुत ही शानदार विकल्प है। कद्दूकस की हुई लौकी में बेसन, गेहूं का आटा, दही और मसाले मिलाकर स्वादिष्ट थेपले या चीला बनाया जाता है। यह बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। यह बच्चों के टिफ़िन में, सुबह के नाश्ते में के लिए बेहतरीन होता है। लौकी की सूखी सब्जी, यह प्रायः सभी घरों में बनता है। बारीक कटी लौकी को जीरा, राई, हींग और कड़ी पत्ते का तड़का लगाकर सूखी सब्जी बनाई जाती है। यह झटपट बनती है और चपाती के साथ खाने में भी बहुत हल्की फुल्की होती है। लौकी का रायता भी हर घर में बनता है। इसके लिए कद्दूकस की हुई लौकी को दही या छाछ में मिलाकर स्वादानुसार नमक, जीरा पाउडर के साथ बनाया जाता है। वहीं इसमें सरसों के दाने को पीसकर भी मिलाया जाता है, जिससे इसका स्वाद अलग होता है। दोनों तरह के रायते तैयार किए जाते हैं। यह चावल के साथ और रोटी के साथ आराम से खाया जा सकता है। लौकी का हलवा प्रायः या पर्व त्यौहार पर या फलाहार के रूप में बनाया जाता है, जो खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि क्या कहना। कद्दूकस की हुई लौकी को घी में भूनकर दूध और चीनी के साथ पकाया जाता है। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे त्यौहार और ख़ास मौक़ों पर सर्व किया जाता है। लौकी में लगभग 90-92% पानी होता है। इसमें कैलोरी कम होती है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर से भरा रहता है। इसलिए आप अपने भोजन में लौकी को ज़रूर शामिल करें। तो आइए अब सखियों के साथ एक गीत सुनते हैं।

कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। सखियों, आपसे विदा लेने का समय हो गया है। अपनी सखी रिवा को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी हमारी बहनें अपना प्रसारण सुन रही थीं, घर आंगन। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीत। गायक कलाकार हैं रीना सिंह।

0: अभी आप लोकगीत सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन की कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: हर घर की वाणी आकाश।

प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। संसद में आज लगातार पांचवा दिन भी हंगामा जारी रहला पर लोकसभा के कार्यवाही सोमवार के दिन के 11 बजे तक स्थगित कर दल गई बा। एकरा पहले कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहले कि सरकार पहला दिन से ही नीट पेपर लीक मामला पर चर्चा खातिर तैयार बा। उ कहले कि कांग्रेस के कुछ शर्तन के कारण चर्चा आगे ना हो पाइल। श्री रिजिजू कहले कि सब सदस्यन के ई मंशा बा कि ई मुद्दा पर सार्थक चर्चा होखे के चाही। उ आगे कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के आश्वस्त कैले बाने कि पेपर लीक पर कड़ा कानून लियावल जाई। नीट पेपर लीक मामला के लेके प्रदेश में हो रहल विरोध प्रदर्शन आ कानून व्यवस्था के स्थिति के समीक्षा खातिर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के अध्यक्षता में बैठक के आयोजन कैल गई। बैठक में अफसर लोग के लैकन के प्रति संवेदनशीलता रवैया अपनावे, बातचीत के माध्यम से स्थिति के शांतिपूर्वक संभाले आ बल प्रयोग के अंतिम विकल्प रखे के निर्देश दहल गई बा। मुख्य सचिव सब जिलन में प्रशासन आ पुलिस के बीच बेहतरीन तालमेल बनावे रखे आ अफवाह के तुरंत खंडन करे के भी निर्देश देले। वो कहले कि राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनौले बा आ कानून तोड़े वाला लोगन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई कैल जाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भइल ई बैठक में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, पुलिस महानिदेशक अभियान कुंदन कृष्णन समेत सब जिलन के जिलाधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक आ पुलिस अधीक्षक शामिल भइले। ए दौरान पुलिस महानिदेशक विनय कुमार कोचिंग संस्थानन पर निगरानी रखे, सब जिलन में उपद्रव नियंत्रण उपकरण आ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के तैनाती करे के निर्देश दहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26

0: जुलाई के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपन विचार साझा करी हैं। यह हर महीना आवे वाला रेडियो कार्यक्रम के 136वां कड़ी हुई। कार्यक्रम के प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सब चैनल, AIR न्यूज के वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर कैल जाय। एकरा तुरंत बाद मैथिली भाषा में एकर प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से कैल जाय। यह प्रसारण के दोबारा राति 8 बजे से भी सुनल जा सकेला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और CJP के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में दूसरा दौर के बातचीत पूरा हो गई बा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा बतौले कि बातचीत बढ़िया तरीका से भइल बा। उ बतौले कि बातचीत काल हुआ होई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह विपक्षी दलन पर न्यूज पेपर लीक मामला पर राजनीति करे के आरोप लगौले बने। श्री सिंह संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ए मामला पर लैकन के साथे खड़ा बाड़े। वो कहले कि पेपर लीक जैसन घटना के रोके खातिर कड़ा कानून बनावल जा रहा बा। विधानमंडल के मानसून सत्र के आज अंतिम दिन अलग अलग कानून बनावे वाला काम निपटावल गई। विधान परिषद में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में मास्टर की कमी, बुनियादी सुविधा के अभाव आ NBA के मान्यता के मुद्दा जोरदार तरीका से उठल। प्रश्नकाल के दौरान विधान पार्षद सौरव कुमार आ महेश्वर सिंह आरोप लगौले कि राज्य के अधिकतर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के BTEC प्रोग्राम के NBA के मान्यता नहीं मिलल। सवाल के जवाब में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री शीला मंडल कहली कि 11 गो कॉलेज खातिर मान्यता के प्रक्रिया शुरू कर दहल गई बा। एने विधानसभा में रजौली विधायक विमल राजवंशी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान PDS के माध्यम से राशन पावे वालन के खराब गुणवत्ता के अनाज देवे के मामला उठौले। श्री राजवंशी सरकार से पूरा मामला के उच्च स्तरीय जांच के मांग कैले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बढ़िया प्रदर्शन करे वाला खिलाड़ियन के मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 19 गो खिलाड़ियन के नियुक्ति पत्र आ खेल छात्रवृत्ति खातिर 637 गो खिलाड़ियन के चयन पत्र दिहले। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप आ मुकेश कुमार के पुलिस उपाधीक्षक आ एथलीट पीयूष राज के पुलिस अवर निरीक्षक के पद खातिर नियुक्ति पत्र दिहल गई। एकरा अलावा 5 गो पैरा खिलाड़ियन सहित अलग अलग खेल के और प्रतिभाशाली खिलाड़ियन के भी नियुक्ति पत्र दिहल गई। मानसून के सक्रियता से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सा में रुक रुक के पानी बरसे के सिलसिला जारी बा। आज सवेरे पटना आ आसपास के इलाका में मूसलाधार बारिश भइल। मौसम विभाग अगला 24 घंटा के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम आ दक्षिण पश्चिम भाग के जिलन में कुछ जगहन पर तेज हवा के साथे बारिश बरखे के अनुमान जतौले बा। एकरे साथे आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 MHz पर। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का प्रसारण गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम सुनने वाला सभी श्रोता भाई बहन लोग के पंचू भाई के नमस्कार। श्रोता सभी, अब तो मानसून मेहरबान हो गई बा आ गांव घर में खेती बाड़ी के माहौल उत्साहजनक बा। खेत बधार रोपनी के गीत से गुलजार हो गई बा। दुपहरिया में किसान भाई बहन लोग खाना खा के जब पेड़ तर बैठ के जुड़ा तड़ान आ समूह में तरह तरह के

हाथ निकलता तो दृश्य देख के मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता। अब सोची काम कैला के बाद दो चार घंटा आ जब आदमी जुड़ालन तो वास्तव में वो थकैनी मिट जाला। कुल मिला के बड़ा मनसाइन माहौल हो गया बा, लेकिन ये सब में सावधानी भी बहुत जरूरी बा। काहे कि नदी तालाब पोखरा आ अन्य जल स्रोतन में पानी भर गई बा। आ देखी काल एगो यही से जुड़ल दिवस है जौना के विश्व डूबे से बचाव दिवस कहल जाला। तो हमने के आज के यह कार्यक्रम में ऊपर बत कही हुई आज के कार्यक्रम में मनमनसाइन हुई लोकगीत से कलाकार हुई हन टूकू पाठक। वार्ता में आज बत कही हुई रोहतास के धरोहरन के महत्व विषय पर आ बताई हन कृष्ण किसलय। एक जानकारी में आज बतियावल जाई जीवन में योग के महत्व विषय पर आ अंत में जायजा लिहल जाई मौसम के पूर्वानुमान के। लेकिन पहले बत कही डूबे से बचाव बहुत जरूरी विषय पर। श्रोता सभे ये मौसम में खुशी आ गम दोनों तरह के स्थिति देखे के आवेला। कहें कि बरसात के मौसम अपना साथ हरियाली आ खुशी लेके आवेला, लेकिन यही मौसम में बिजली तड़पेला, बादल फटेला, नदी तालाब पोखरन आ बाढ़ के पानी में डूबे के घटना भी बढ़ जाला। ऐसे आज हमने के विषय पर जरूर बत कही हुई। कहें कि बरसात के दिन में विशेष सावधानी बरते के जरूरत बा। नदी नहर तालाब आ गहरा पानी के पास तो और विशेष सावधानी बरते के चाहिए। तेज बजा बहाव वाला पानी में कबो उतरे के कोशिश ना करे के चाहिए। हाँ, अनजान जगह पर भी पानी में उतरे से पहले सोच लेवे के चाहिए या अगल बगल में कोई बा तो ओकरा से ओ बारे में जानकारी ले लेवे के चाहिए। बच्चन के कभी भी अकेले पानी के आसपास ना जाए देवे के चाहिए आ हमेशा उन्हीं पर निगरानी रखे के चाहिए। अगर पानी में तैरे नहीं खेवत तो गहरा पानी में बिल्कुल मत उतरी। काहे कि हमने के देखी खेती बधारी में कभी कभी नदी पोखर तालाब में उतरे के पड़ जाला। मान ली बियड़ा एह पार बा खेती होता तो बिया कबाड़ के ओ पार के खेत में डाले के बाद तो लोग ओकरा के ले के जालन। तो ये सब में विशेष सावधानी बरते के चाहिए। अगर नाव से यात्रा करतनी तो ओ समय संभव होके तो लाइफ जैकेट पहनी आ नाव के जौन क्षमता बा अगर ओ से अधिक लोग ऊपर बैठतन ऊपर मत बैठी आ दूसरा लोग के भी जागरूक करी कि भाई क्षमता से अधिक लोग के नाव में ना बैठे के चाहिए, वो कभी भी डूब सकेला। आ एगो जरूरी बात और कि अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहल होके तो बिना सोचे समझले खुद पानी में कुदल खतरनाक हो सकेला। ऐसन स्थिति में तुरंत आसपास के लोग के मदद खातिर बुलावे के चाहिए। रस्सी बांस जौन टायर के अंदर वाला ट्यूब होला चाहे

पानी में तैरे वाला कोनो वस्तु होके तो ओकरा के डूबत व्यक्ति के तरफ बढ़ावे के चाही आ तुरंत आपातकालीन सेवा के भी सूचना देवे के चाही ताकि तत्काल मदद मिल सके। आ बरसात में सड़क पर चलत कोनी भी ध्यान देवे के चाही, काहे कि कभी कभी देखले होखब जा कि ए पार के पानी रोड पर ओ पार बहेला, बड़ा ओकर तेज धार होला। तो बरसात में सड़क पर भरल पानी के गहराई के अनुमान लगावल मुश्किल हो जाला। इस स्थिति में रास्ता से गुजरत समय विशेष सावधानी बरते के चाही। तेज बहाव वाला पानी में वाहन चाहे पैदल पार करे के जोखिम कबो ना लेवे के चाही। कभी कभी का होला कि कोई कोई साहसी लोग खतरा मोल लेके अपना वाहन के लोग पार करा देला या स्वयं पार हो जाला। देखा देखी अगर दूसरों कोई पीछा से लाग गई तो उन्हें खतरा हो जाला। तो ये स्थिति में हमने के जरूर ध्यान देवे के चाहिए, कबो इस तरह के जोखिम ना लेवे के चाहिए। थोड़ा सा सावधानी हमने के कई गो अनमोल जिंदगी के बचा सकेला। हमने के स्वयं भी सुरक्षित रहे के चाहिए, अपना परिवार आ लोग के भी सुरक्षा करे खातिर प्रयास करे के चाहिए, उन लोग के जागरूक करे के चाहिए। कहे कि सावधानी ही सुरक्षा है आ डूबे से बचाव के सबसे बड़ उपाय है। तो श्रोता सभे हमने के ये सब बत कही आगे भी होत रही, लेकिन अब कार्यक्रम में कुछ मन मनसाइन कर लिया जाओ आ सुनल जाओ एगो लोकगीत। कलाकार बानी टुकू पाठक। तो देखी कोनो भी कार्यक्रम में गीत गौनाई बहुत जरूरी बा, तो ऐसे आई सुनल जाओ यहाँ से एगो लोकगीत।

0: देखी कितना बढ़िया लोकगीत सुनौली टुकू पाठक, सुन के मन मिजाज एकदम हरियर हो गई। आ ये गीत खातिर इनका के बहुत बहुत धन्यवाद। आ श्रोता सभी, अब आई कार्यक्रम में आगे बढ़ल जाओ आ जानल जाओ रोहतास के धरोहरण के महत्व के बारे में बता रहा बन कृष्ण किसलय, तो आई सुने के।
1: धरोहर किसी भी व्यक्ति, किसी समाज और किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होती है। उससे पता चलता है कि हम कौन हैं, किसके वंशज हैं, कहां से आए हैं, हमारा समाज, हमारा देश कितना समुन्नत रहा है और इतिहास में हमारा स्थान क्या है। प्राचीन धरोहरों से ही हम जान पाते हैं कि आदमी का उत्तरोत्तर विकास कैसे हुआ और वह सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, जीवन शैली, भाषा, बोली, लिपि, ज्ञान विज्ञान के किन चरणों से गुजरकर आज के आधुनिक समाज तक पहुंचा है। दुनिया का हर संवेदनशील आदमी अपना, अपने समाज और अपने देश काल की छवि और पहचान धरोहरों में देखना, तलाश करना चाहता है। रोहतास में तो हर ओर धरोहरें बिखरी पड़ी हैं। कुछ बड़ी धरोहरों पर तो राष्ट्रीय स्तर के इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, लेखकों ने काम किया है, मगर यहाँ के क्षेत्रीय स्तर की अमूल्य धरोहरों और पुरातात्विक संपदा पर क्रमबद्ध कार्य नहीं हुआ है। जाने अनजाने धरोहरें नष्ट भी हो रही हैं, जिन्हें बचाने और सुरक्षित रखने के लिए विरासत में रुचि रखने वालों को आगे आना होगा। रोहतास की धरोहरें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इनके स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है और रोजगार, राजस्व की आर्थिक ताकत भी बनाई जा सकती है। एक मुगल बादशाह की बेगम का मकबरा ताजमहल देखने के लिए हर साल लाखों देशी विदेशी पर्यटक आगरा पहुंचते हैं, पर उसी कालखंड में इस देश के बादशाह रहे और पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा देने वाले शेरशाह का मकबरा देखने आने वालों की संख्या सैकड़ों में या साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा चंद हज़ार ही होती है, जबकि यह ताजमहल से ज़्यादा चौड़ा, ज़्यादा ऊँचा, विशाल सरोवर के बीच में स्थित अफगान वास्तुकला का भारत में एक बेजोड़ नमूना है। गुजरात से चलकर 10 मई 1608 को अब्दुल लतीफ नामक यात्री सासाराम आया था और शेरशाह के मकबरे की भव्यता और सुंदरता देखकर दंग रह गया था। रोहतास जिले की एक और बहुचर्चित धरोहर रोहतासगढ़ किला है, जिसके नाम पर जिले का नामकरण हुआ। यह देश चर्चित पहाड़ी किलों चौतौड़गढ़, रणथंबोड़, चुनारगढ़, अलिश्वरगढ़ से भी विशाल है। आईना एकबरी में इतिहास

गीतकार अबुल फजल ने इसकी 14 कोस की किलाबंदी का उल्लेख किया है। यह वही किला है जिसमें बादशाह जहांगीर से बगावत कर शहजादा खुर्रम ने 1621 में अपनी बेगम अर्जुमंद बानो के साथ शरण ली थी। तब किले के दुर्ग रक्षक सैयद मुबारक हुसैन ने किले की चाबी उसे सौंपी थी। रोहतासगढ़ में ही खुर्रम का छोटा बेटा मुगल शहजा मुराद बख्श पैदा हुआ था। खुर्रम इतिहास में बादशाह शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसके बेगम मुमताज महल के नाम से, जिसकी याद में उसने ताज महल बनवाया। कैमूर पहाड़ पर स्थित रोहतासगढ़ किला मुगलों के अधीन रहने से पहले हिंदी राजाओं उरांवों खरवारों के अधीन रहा था। यहाँ जहाँ से मुगल काल में सूबा बंगाल का शासन चलता था, जिसमें आज के बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। 1538 में बंगाल के सूबेदार मानसिंह ने इस किला परिसर में खूबसूरत भवन बनवाया। अकबर के शासनकाल में रोहतास किला के अधीन 4550 घुड़सवारों का रिसाला और 162,000 पैदल सैनिक हुआ करते थे। रोहतास किला 12वीं सदी में जपला के प्रताप ध्वाला के अधीन था और इससे भी पहले इसका ऐतिहासिक साक्ष्य 7वीं सदी के बंगाल के राजा शशांक के समय का है। यहाँ आज भी प्राचीन रोहतासन मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में मौजूद है, जिसके बारे में जनश्रुति है कि इसे वैदिक राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने बनाया था। 1763 में उधवानाला में अंग्रेजों से लड़ाई हारने के बाद बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपने परिवार के साथ इसी किले में शरण ली थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में कुंवर सिंह के भाई निशान सिंह ने इस किला को अपना केंद्र बनाकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। नाकाम ब्रिटिश जनरल एडवर्ड लुगार्ड को तब इस्तीफा देकर इंग्लैंड लौट जाना पड़ा था। बाद में कैप्टन डगलस और मेजर हेनरी हैवलॉक ने 7,000 सैनिकों के साथ इस किले पर धावा बोला और इस पर कब्जा करने में सफल रहे। कैमूर पहाड़ी पर शांति प्रसाद जैन कॉलेज के पास 2,500 साल पहले स्थापित सम्राट अशोक का शिलालेख, ताराचंडी मंदिर, चंदन शहीद वीर, बूढ़न पहाड़ी, शेरशाह के पिता हसनसूर शाह का मकबरा आदि इस बात के प्रमाण हैं कि हजारों सालों में सासाराम बसता और उजड़ता रहा है। अरब के शहीद चंदन पीर 1160 में बिहार पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के साथ आए थे। बूढ़न पहाड़ी पर फकीर बुरहान से मिलने तुलसीदास काशी से आया करते थे। तुलसीदास ने लिखा भी है, सहर मुहर्रम 29 सहस 44 जान, बूढ़न शाह बैकुंठ को ताओ किन्ह प्यान। कैमूर पहाड़ी पर ही चेनारी से 15 किलोमीटर दूर अद्भुत विशाल गुफा गुप्ता धाम के नाम से प्रसिद्ध है। इससे बकासुर भस्मासुर की एक किंवदंती जुड़ी है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र पर आधिकारिक कार्य करने वाले नाटककार डॉक्टर ब्रजबल्लभ मिश्र ने माना है कि भस्मासुर बद्ध भारत भूमि का सबसे प्राचीन या प्रथम नाटक है, जिसका मंचन भारतीय सभ्यता के आरंभिक काल में मनोरंजन के लिए लोग करते थे। उस गुफा के भीतर एक नाचघर है जहां सैकड़ों लोगों के एक साथ बैठने की जगह आज भी मौजूद है। इस गुफा को सभ्यता के विकास और आदमी के आदिम जीवन के संधि काल से जोड़कर भी देखा जा सकता है। रोहतास में सैकड़ों की संख्या में धरोहरें हैं जो अतीत की गवाही दे रही हैं। अनेक ऐसे स्थल मौजूद हैं जो प्रागैतिहासिक काल के हैं, भारतीय सभ्यता के वैदिक और हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल से भी पहले के। कैमूर पहाड़ की अनेक गुफाओं में आदमी के रहने के चिन्ह और मानव निर्मित शैलचित्र मिले हैं। फरवरी 1999 में सेना की मदद से 20-30,000 साल पुराने कई शैलाश्रय व गुफाचित्र खोजे गए थे। अघौरा से उत्तर प्रदेश के विंध्य तक उस खोज अभियान में थल सेना के ब्रिगेडियर ए.के. दत्ता, कर्नल उमेश प्रसाद के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद्र प्रसाद भी शामिल थे। कुद्रा नदी पर सासाराम से 7 किलोमीटर दक्षिण सिनवार ऐसा स्थान है जहां कैमूर विंध्य के वंशजों ने गुफाओं से नंग धड़ंग बाहर निकलकर पहाड़ी की तलहटी में बसेरा बनाया, तंडकने की तमीज सीखी, बांस सरकंडे पर मिट्टी का लेप कर झोपड़ी बनाई और खेती करने के लिए हड्डियों एवं पत्थरों के नुकीले औजार विकसित किए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के

इतिहास पुरातत्व विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने 20 वर्ष पहले सेनुवार टीले की परीक्षण खुदाई कराई थी। दशकों पहले जब किराद, चिरांद, सारण की खोज और खुदाई हुई, उसके पहले सवाल उठा कि बिहार में तो मानव का प्रसार नवपाषाण काल में मैदानी क्षेत्र में तो हुआ ही नहीं था। चिरांद से उस बहस को विराम मिला था, जिसे सेनुवार ने और पुख्ता किया। सेनुवार के परीक्षण उत्खनन से इस बात को बल मिला कि आदमी के पांव पहाड़ से उतरकर कुदरा, कांव, तुतही, तुम्बा जैसे छोटी और सोन जैसी बड़ी नदियों के किनारे किनारे अर्जुन, बिगहा, दनवार आदि होते हुए गंगा के मैदान की ओर बेहतर आवास और भोजन की तलाश में आगे बढ़े। डेहरियानसोन से 12 किलोमीटर उत्तर सोन नदी के तट पर अर्जुन बिगहा से पत्थर की परिष्कृत कुल्हाड़ी, मौर्यकाल की मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, लंबी चौड़ी ईंटें आदि प्राप्त हुई हैं। इस गांव के ढीबर की खोज वर्ष 2000 में सोन घाटी पुरातत्व परिषद के सचिव कृष्ण किसले और अधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई।

0: बहस को विराम मिला था, जिसे सिनवार ने और पुख्ता किया। सिनवार के परीक्षण उत्खनन से इस बात को बल मिला कि आदमी के पांव पहाड़ से उतरकर कुदरा, कांव, तुतही, तुम्बा जैसे छोटी और सोन जैसी बड़ी नदियों के किनारे किनारे अर्जुन, बिगहा, दनवार आदि होते हुए गंगा के मैदान की ओर बेहतर आवास और भोजन की तलाश में आगे बढ़े। डेहरियानसोन से 12 किलोमीटर उत्तर सोन नदी के तट पर अर्जुन बिगहा से पत्थर की परिष्कृत कुल्हाड़ी, मौर्यकाल की मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, लंबी चौड़ी ईंटें आदि प्राप्त हुई हैं। इस गांव के ढीबर की खोज वर्ष 2000 में सोन घाटी पुरातत्व परिषद के सचिव कृष्ण किसले और अधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई थी। रोहतास की अमूल्य धरोहरों को संभाल कर रखने की जरूरत है। एक खोज प्रसंग इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। वर्ष 1168-69 के राजा प्रताप धवल के एक शिलालेख की खोज प्रोफेसर बिल हर्न ने 1898 में की थी। 1927 में यह शिलालेख सहायक पुरातत्व अधीक्षक एम कुरैसी को नहीं मिला। 1931 में जो पुरातत्व विभाग की जो सूची प्रकाशित हुई उसमें इसे शामिल नहीं किया गया था और इसके गुम होने का जिक्र शाहबाद जिला गजेटियर और द एंटीक्वेरियन रिमेन्स में भी है। इसे प्रोफेसर डॉक्टर नंदकिशोर तिवारी और डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी की टीम ने फुलवरिया गांव के सीता चुआ के पास ढूंढ निकाला है। इस खोज प्रसंग की चर्चा इसलिए की जा रही है कि सैकड़ों हजारों सालों बाद हमारे अपने अतीत, अपने इतिहास का प्रामाणिक साक्ष्य नहीं रहता यदि यह शिलालेख सदा के लिए गुम हो जाता। इसे वैदिक पौराणिक काल के आख्यानों की तरह जनश्रुति भर माना जाता, जैसे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल की खोज से पहले पश्चिमी विद्वान भारतीय सभ्यता को बहुत बाद में विकसित हुई सभ्यता मानते थे, मगर हड़प्पा ने बता दिया कि भारतीय सभ्यता भी विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। इसलिए धरोहरों का व्यापक महत्व है। रोहतास में तो अकूत ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहरें भरी पड़ी हैं। समाज के प्रबुद्ध लोगों को सक्रिय पहल करनी होगी कि नई पीढ़ी अपने आसपास के सांस्कृतिक वैभव और धरोहरों से एकात्म स्थापित कर सके। धरोहरें इमारत स्थापित के रूप में दिखने वाली ही नहीं, जमींदोज भी हो सकती हैं और लोक कथा, लोकगीत और जीवन शैली में भी। केवल इनकी यादें रह जाएंगी यदि इन्हें सहेजा नहीं गया। विरासत जो अतीत का आईना है, इसकी थाती वर्तमान के हाथ में है और वर्तमान ही भविष्य की जिम्मेदारी सौंपता है। संस्कृति की यही प्रक्रिया है जिसमें धरोहरें नई पीढ़ी को नई शक्ति प्रदान करती हैं।
1: देखी रोहतास के धरोहरन के महत्व के बारे में हमने के बतावत रहन कृष्ण किसलय। ए नीमन आ उपयोगी जानकारी खातिर इनका के बहुत बहुत धन्यवाद। आ अब कार्यक्रम में आगे बढ़ल जाओ, उससे पहले सुन लिया जाओ कुछ संदेश।
2: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देही ओके बुलंदियन के पाख।
3: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
2: अब घर, दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
3: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
2: ता बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
3: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
1: श्रोता सभे, आज हमने के बतकही के विषय एगो ऐसन भारतीय विरासत बा जेकरा के पूरा दुनिया अपनावत बा, यह योग। कहें कि योग खाली कसरत ना हो, बल्कि इस शरीर, मन आ आत्मा के साथ जुड़ेला। रोज थोड़ा सा योग करे से शरीर स्वस्थ रहेला, मन शांत रहेला आ जीवन में सकारात्मक सोच आवेला। आज के भाग दौड़ भरल जिंदगी में तनाव, चिंता, गलत खान पान आ कम शारीरिक मेहनत के चलते मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा जैसन बीमारी तेजी से बढ़त जा रहल बा। यही कारण

योग के महत्व आज पहले से कहीं अधिक बढ़ गई बा। रोज 30 से 45 मिनट योग आ प्राणायाम करे से शरीर चुस्त दुस्त रहेला, सांस लेवे के क्षमता बढ़ेला, नींद अच्छा आवेला आ मन प्रसन्न रहेला। योग के सबसे बड़ खासियत ई बा कि एकर लाभ हर उम्र के लोग उठा सकेला। छोट छोट बच्चा योग से एकाग्रता बढ़ा सकेलन, नौजवान अपन काम में बेहतर प्रदर्शन कर सकेलन आ बुजुर्ग लोग अपना शरीर के लचीला आ सक्रिय बना सकेला। लेकिन एगो बात हमने के हमेशा ध्यान में रखे के चाही कि योग सही तरीका से आ अपना क्षमता के अनुसार करे के चाही। अगर रउआ के गंभीर बीमारी बा तो प्रशिक्षित योग शिक्षक चाहे डॉक्टर के सलाह से योग करे के चाही। स्वस्थ जीवन खातिर महंगा इलाज हमेशा जरूरी ना होला। अगर हमनी के रोज थोड़ा समय योग, प्राणायाम, संतुलित भोजन आ नियमित दिनचर्या के दिहल जाई तो कई तरह के बीमारी से बचे के संभावना बढ़ जाला। तो आज हमनी के जरूर संकल्प ले लेवे के कि कम से कम आधा घंटा योग खातिर जरूर निकालल जाई। जवन व्यक्ति रोज योग करेला उ निरोग, ऊर्जावान आ खुशहाल जीवन जिएला। श्रोता भाई बहन लोग, अब आज के आ काल के मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जान लेल जाओ। पच्चीस से 29 जुलाई के दौरान आसमान में घना बादल छौले रही आ जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले आ भारी वर्षा होके के अनुमान बा। अधिकतम तापमान ए दौरान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत आ दुपहरिया में 55 से 60 प्रतिशत रहे के संभावना बा। पूर्वानुमान के अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से पूर्वा हवा चले के अनुमान बा। तो देखी आज हमनी के एक कार्यक्रम के समय और आ गई, बेरा हो गई रुवा सभे से विदा लेवे के। यह कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहन संतोष कुमार। तो चलत चलत ले सभे श्रोता भाई बहन लोग के पंचू भाई के राम राम।

अभी हमारे ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना प्रसारण गांव घर। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए सांझ गीत कार्यक्रम में भोजपुरी फिल्म संगीत।

गंगा जमुना फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में। गीत लिखा था अनुपमा सिंह ने, सुरों में ढाला था शिवम बागची ने। सुजीत चौबे और प्रिया भट्टाचार्य के युगल सुरों में आइए सुन लेते हैं एक नगमा। फिल्म का नाम है ज़रूर कौनो बात बा।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से सांझ गीत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं राजा हसन के साथ आलोक कुमार को। गीत लिखा है राजेश मिश्र ने, संगीत से संवारा है नागेंद्र संतोष ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुन लेते हैं लखवीर सिंह लखा के साथ हाजी असलम आसिफ को।

अभी आपने हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म का यह नगमा सुना, लखबीर सिंह और हाजी असलम आरिफ की आवाज़ों में। अशोक कुमार दीप और गाफिल गाजीपुरी ने लिखा था इस गीत को, संगीत रचना थी अशोक कुमार दीप की। श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ ही भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। गुड इवनिंग रोहतास। पेश है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम।

सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास लेकर हाजिर है संजय चतुर्वेदी। स्वीकार कीजिए हमारा सप्रेम नमस्कार। समाहरणालय रोहतास से प्राप्त सूचना के अनुसार आज दिनांक 24/7/2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास के द्वारा समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों

एवं गांव से पहुंचे कुल 49 लोगों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन सौंपे। जिला पदाधिकारी ने सभी आवेदनों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित जांच एवं समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया। वहीं जिला पदाधिकारी रोहतास ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST 2027 का आयोजन 28 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उन्होंने बताया कि रोहतास जिले के मूल निवासी एवं वर्तमान में जिले के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राएं निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश, पात्रता एवं अन्य नियम शर्तें प्रॉस्पेक्टस में उपलब्ध हैं। जिला पदाधिकारी ने कहा कि नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के आयुक्त के निर्देशों के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक पात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों तक आवेदन प्रक्रिया की जानकारी पहुंचना आवश्यक है ताकि कोई भी योग्य छात्र आवेदन से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाओं को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने वाला प्रतिष्ठित संस्थान है। इसी उद्देश्य से जिला पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चयन परीक्षा एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। साथ ही विद्यालयों, पंचायतों एवं अन्य सरकारी माध्यमों के जरिए पात्र विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तक समय पर सूचना पहुंचाने को कहा गया है। जिला पदाधिकारी ने जवाहर नवोदय विद्यालय रोहतास के प्राचार्य को भी जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर पंजीकरण अभियान को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक योग्य विद्यार्थियों का आवेदन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन एवं विस्तृत जानकारी के लिए https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिला समाहरणालय कैमूर से प्राप्त सूचना के अनुसार उप विकास आयुक्त कैमूर बबुआ द्वारा प्रखंड चांद का व्यापक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में प्रखंड कार्यालय के सभी कार्यालय कक्षों का जायजा लेते हुए उपस्थिति पंजिका की जांच की गई तथा कर्मियों को समय पालन एवं कार्यालय अनुशासन बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया गया। उन्होंने विपणन पदाधिकारी के साथ राशन कार्ड निर्माण एवं वितरण की चल रही प्रक्रिया की समीक्षा की और लंबित आवेदनों का निष्पादन ससमय सुनिश्चित करने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभुक को किस्त भुगतान की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए भुगतान में विलंब न होने का निर्देश दिया गया। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, इसी नगमे के साथ ही सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास से संजय चतुर्वेदी आज्ञा चाहता है, नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, जिले की हलचल, विधानमंडल समीक्षा एवं साथ ही रात्रि 8 बजे सुनिएगा दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा। इन प्रसारणों की कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: अरे मेरा वोटर आई कार्ड घर पर रह गया, अब क्या मैं मतदान नहीं कर पाऊंगा?
1: क्यों नहीं, पहचान के और भी कई मान्य विकल्प है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, एमपीआर स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, एमएलसी की आधिकारिक पहचान पत्र, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा यूडीआईडी कार्ड दिखाते भी मतदान किया जा सकता है।
0: मतलब वोट जरूर दे सकता हूँ?
2: बिल्कुल, पहचान पत्र की वजह से आपका वोट नहीं छूटना चाहिए।
3: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में मतदान तिथि है 30 जुलाई 2026। मतदान के दिन मान्य पहचान दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
4: कोई मतदाता ना छूटे।
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
6: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
7: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
11: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
12: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
13: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत संपन्न। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। विधानमंडल का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दी बधाई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। कोचिंग संस्थानों पर निगरानी रखने के निर्देश। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का पूर्वानुमान जताया। नवादा में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। संसद में आज लगातार 5वें दिन भी हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। स्थगन से पहले कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
14: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल आचार संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को तरफ समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
13: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
15: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले

0: अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में दूसरे दौर की बातचीत संपन्न हो गई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। श्री नड्डा ने कहा कि बातचीत कल भी जारी रहेगी।
2: बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव में हमने उनको कहा है कि हम कल से भी आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे।

0: हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच सुधार के दृष्टि से परीक्षा के भाव में हमने उनको कहा है कि हम कल से भी आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे।
1: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि संसद में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है।
2: हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है, जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ जो ऑपोजिशन का स्टांस है, तीन मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया मारा उन पर एक्शन अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स।
1: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने विपक्ष पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार पेपर लीक पर हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी दल केवल राजनीति कर रहे हैं।
3: विपक्ष का रवैया पूरा गैर जिम्मेवार रवैया, और विपक्ष की मांग थी बहस कराइए, सरकार तैयार है हर तरह की बहस करने कराने के लिए। तुम बहस करिए, कौन रोका है? आप अपनी बात रखिए, सरकार अपनी बात रखेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि युवाओं के और छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
1: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक मामले को केंद्र सरकार गंभीरता से ले रही है। श्री सरावगी ने आज पटना में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि छात्र हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रश्न पत्र लीक मामले में कुछ नहीं किया गया।
4: परीक्षा पत्र लीक का मामले को भारत सरकार गंभीरता से ले रही है। बिहार सरकार ने भी कल कानून बनाकर इसको संगठित अपराध की श्रेणी में लाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद कल एक्स हैंडल पर बोले हमारी प्राथमिकता में, हमारे छात्र हमारे प्राथमिकता में है। और पेपर लीक मामले कांग्रेस के समय इससे बहुत ज्यादा होते, कांग्रेस पार्टी ने कभी कुछ, उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन आज सीबीआई जांच चल रही है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को छात्रों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने, संवाद के माध्यम से स्थिति को शांतिपूर्वक संभालने और बल प्रयोग को अंतिम विकल्प रखने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस बैठक में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, पुलिस महानिदेशक अभियान कुंदन कृष्णन सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। इस दौरान पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कोचिंग संस्थानों पर निगरानी रखने, सभी जिलों में दंगा नियंत्रण उपकरणों और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। विधानसभा का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र के दौरान 21 सरकारी विधेयक पारित किए गए। इसके अलावा ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिकाओं और गैर सरकारी संकल्पों पर भी सदन में चर्चा हुई। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इधर विधान परिषद का सत्र भी आज संपन्न हो गया। सत्र के समापन पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपने संबोधन में सभी सदस्यों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई और संसदीय परंपराओं के अनुरूप कार्यवाही का संचालन किया गया। सभापति ने बताया कि सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित की गईं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रिपरिषद के सदस्यों और प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
1: पूरे सदन की ओर से मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर मैं उन्हें उप मुख्यमंत्रियों को, मंत्रिपरिषद सदस्यों को तथा बिहार की जनता को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं।
0: विपक्ष की ओर से राजद के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल में तमाम अराजकता और नाकामियों के बावजूद विपक्ष की ओर से सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 100 दिन पूरे करने पर सरकार को बधाई देते हैं।
2: महोदय, तमाम नाकामियों के बावजूद, तमाम तरह की अव्यवस्था, अराजकता और बिहार की जनता के तबाह होने के बावजूद ये बधाई मैं इसलिए दे रहा हूँ।
1: अब आलोक कुमार सिंह
2: एक नौजवान
1: आलोक कुमार सिंह नहीं है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 19 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र तथा खेल छात्रवृत्ति के लिए 637 खिलाड़ियों को चयन पत्र प्रदान किया। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के 23 गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार को पुलिस उपाधीक्षक तथा एथलीट पीयूष राज को पुलिस अवर निरीक्षक के पद के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा 5 पैरा खिलाड़ियों सहित विभिन्न खेल विधाओं के अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बिहार सरकार ने ये पहल की है।
3: बिहार के खिलाड़ियों को सही मान सम्मान, छात्रवृत्ति के साथ साथ आज नौकरी से भी सम्मानित किया जा रहा है ताकि उनका फ्यूचर भी सिक्योर रहे। निश्चित रूप से जहां एक तरफ आधारभूत संरचनाओं का विस्तार हो रहा है और भी विस्तार करना अभी हम कार्य कर रहे हैं, तो एक जो सपना हम सजाते हैं 2036 के ओलंपिक गेम्स का, वो सपना अब कहीं ना कहीं लगता है कि सच बिहार के लिए बन सकता है।
0: राजद के प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी आज भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मृत्युंजय तिवारी को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर मंगल पांडे और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। श्री तिवारी ने कहा कि बिहार और देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ वो भाजपा में शामिल हुए हैं।
4: भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते पर हर वर्ग, हर लोगों को, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, गरीब हो, आज हर लोगों के लिए योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं। ऐसे पार्टी में जुड़ने का आज मुझे गर्व और सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
0: मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। आज पटना और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद और बक्सर जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
5: दिनांक 25 जुलाई को राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात तथा वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड के सांगोवर गांव में आज बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक 10 वर्षीय बालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 2 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। इधर अरवल जिले के सदर प्रखंड के कोरियम गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। प्रादेशिक समाचार

0: मौत हो गई। कटिहार जिले के बरारी थाना के सुरजापुर और कलिकापुर गांव के समीप पुलिस और एसटीएफ ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री से 4 देशी पिस्तौल, 1 बंदूक और हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 44 आवेदकों के बीच ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किया। किशनगंज जिले के गलगलिया चेक पोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 233 कार्टन शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत संपन्न। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। विधानमंडल का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दी बधाई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। कोचिंग संस्थानों पर निगरानी रखने के निर्देश। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का पूर्वानुमान जताया। नवादा में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: अरे वाह, यहाँ ठंडा पानी है
2: और देखिए साफ सुथरा शौचालय भी।
3: मेरे लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। वाह,
4: दिशा सूचक इतने स्पष्ट हैं कि केंद्र ढूंढना बिल्कुल आसान हो गया। हेल्प डेस्क पर हर जानकारी तुरंत मिल रही है।
5: वाह, मोबाइल रखने की व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, शाम तक रोशनी की सुविधा, सब कुछ है।
6: और ये पोल वॉलंटियर्स कितना सहयोग कर रहे हैं।
4: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में आपका मतदान अनुभव होगा सुगम, सहज और सुरक्षित। मतदान केंद्रों पर भूतल पर मतदान केंद्र, ठंडी पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्पष्ट संकेतक, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, प्रकाश व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पोल वॉलंटियर्स और मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 30 जुलाई 2026 को घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
7: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
8: और इस गीत के बाद
9: छाया गीत।

0: This is All India Radio, the news read by
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।
2: जिले में लगातार हो रही बारिश और कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के कारण आलमनगर और चौसा अंचल में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। संभावित बाढ़ और नदी कटाव से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने पुलिस अधीक्षक के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ पूर्व सभी तैयारियां समय पर पूरी करने, संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी रखने तथा राहत और बचाव कार्य के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रखने का निर्देश दिया। इधर जिला कृषि पदाधिकारी रितेश रंजन ने बताया कि खरीफ मौसम में 1,04,883 हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है, साथ ही धान की रोपाई का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जिले के प्रसिद्ध मनोकामना लिंग सिंहेश्वर स्थान में 30 जुलाई से एक माह का श्रावणी मेला शुरू होगा।

0: लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा, पेयजल, बिजली, वाटरप्रूफ पंडाल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति के सदस्य वरिष्ठ पुजारी लाल बाबा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
1: जिला प्रशासन एवं सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति श्रद्धालुओं की सेवा के सुविधा एवं सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है।
0: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड जारी करने का अभियान तेज कर दिया गया है। जिले को 13 अगस्त तक 36,742 नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य मिला है। इसके लिए 160 पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर प्रतिदिन 1,280 राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में पंचायत विकास दिवस के अवसर पर लगाए जा रहे शिविरों में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। इनके त्वरित समाधान के लिए जिलाधिकारी और जिले की प्रभारी मंत्री शीला मंडल लगातार निगरानी कर रही हैं। सदर प्रखंड के मानिकपुर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में जीविका की लखपति दीदियों फूल कुमारी और विनीता देवी को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए 1-1 लाख रुपए का सांकेतिक चेक देकर सम्मानित किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और बीपीएल परिवारों के लिए संचालित विशेष अभियान के तहत जिले में लोगों को योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। हालांकि अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और डिग्री कॉलेज रहित प्रखंडों में स्नातक स्तर की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में 4 नए राजकीय डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। इससे चौसा, शंकरपुर, घैलार और कुमारखंड प्रखंड के विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। प्रारंभिक चरण में यहाँ राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और हिंदी विषयों की पढ़ाई शुरू की गई है। ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जीविका के माध्यम से जीविका सुधा बिक्री केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। 75,000 रुपये लागत के परियोजना वाले इस केंद्र के लिए 60,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है, जबकि लाभार्थी को 15,000 रुपये का अंशदान करना होगा। योजना के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं ने आवेदन किया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और किफायती ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुरलीगंज प्रखंड के दिग्घी पंचायत में पायलट परियोजना के तहत बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से 40 घरों तक पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की योजना है। शुरुआती चरण में 7 घरों में गैस चूल्हे उपलब्ध कराकर इसका सफल परीक्षण किया गया है। दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में अब तक 3,100 घरेलू और 6 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के दौरान जिले के 4,64,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई और जवाहर नवोदय विद्यालय सुखासन के कक्षा 10वीं के छात्र सुधांशु कुमार का चयन इसरो के प्रतिष्ठित यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका 2026 के लिए हुआ है। देश भर से चयनित 456 विद्यार्थियों में बिहार के केवल 14 छात्र शामिल हैं। सुधांशु का चयन शैक्षणिक उपलब्धियों, ऑनलाइन स्पेस क्विज, विज्ञान एवं खेल गतिविधियों, ओलंपियाड तथा भारत स्काउट एवं गाइड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ है।
2: अभी आप सुन रहे थे मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानमंडल की कार्यवाही की समीक्षा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है विधानमंडल में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार। नीट मामले को लेकर देश और प्रदेश में चल रहे छात्र आंदोलन पर शुक्रवार को बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद के आलोक कुमार मेहता ने कहा कि देश और प्रदेश में छात्र नीट के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे संवाद करने के बजाय लाठी और गोली का सहारा ले रही है। उन्होंने सरकार पर छात्र विरोधी होने का आरोप लगाया। इस पर लोजपा रामविलास की राजू तिवारी ने कहा कि आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस आए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। राजद ने इसका विरोध किया, जिसके बाद विपक्षी सदस्य वेल में आ गए, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया। लगातार हंगामे के कारण अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के 5 मिनट के बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा। राजद के रणविजय साहू ने आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया में व्यापक गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने पूरे मामले की

की मांग की। राजद के प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सेवियों और दानवीरों द्वारा स्कूल के लिए दान दी गई जमीन और भवनों पर उनके नाम से संचालित विद्यालयों का नाम बदलकर सरस्वती विद्या स्कूल किया जा रहा है, जो परंपरा और पूर्व सरकारी आदेशों की अवहेलना है। वहीं आईआईपी के आईपी गुप्ता ने कहा कि तांती, पाल और ततवा मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में समय पर तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिसके कारण मामला खारिज हो गया। उन्होंने सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य संचालन नियमावली के आधार पर कार्य स्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया। इसी दौरान मनीष कुमार के ध्यानाकर्षण के उत्तर में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति के क्रम में कुल स्वीकृत बल के आधार पर अनुमान्यता की गणना कर रोस्टर गठन की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा प्रोन्नति के पद सोपान में पूर्णता अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ मूल कोटि की वरीयता के आधार पर सामान्य कोटि के कर्मियों के साथ साथ SC ST के कर्मियों को भी उच्चतर प्रभार दिया जा रहा है। अगर SC ST के कर्मी कार्यरत नहीं है तो कुल स्वीकृत पद का 70% पद सुरक्षित रखा जाता है। इसके बावजूद अगर SC ST कर्मियों के कर्मियों में किसी तरह की समस्या है तो सरकार समीक्षा करेगी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट प्रश्नकर्ता के साथ जदयू की श्याम रजक सहित सदन में मौजूद SC ST वर्ग के कई विधायक हंगामा करने लगे। बाद में विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर SC ST हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सदन से बाहर चले गए। जीवेश कुमार के ध्यानाकर्षण के उत्तर में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य आयोग ने हिंदू समुदाय के उच्च जातियों में केवल ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि आयोग ने पिछले वर्ष भूमिहार ब्राह्मण शब्द के प्रयोग पर चर्चा अवश्य की थी, लेकिन इस संबंध में सरकार को कोई अनुशंसा नहीं भेजी गई है। उन्होंने सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण शब्द लिखने पर आपत्ति जताई और पूर्व में जारी दस्तावेजों में आवश्यक सुधार करने की बात कही। मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट जीवेश कुमार सहित भूमिहार समाज से जुड़े कई विधायक अपनी सीटों पर खड़े होकर विरोध करने लगे। इस दौरान तरारी के विधायक विशाल प्रशांत ने तंज कसते हुए कहा कि फिर भूमिहारों को ही ST में शामिल कर लिया जाए। पड़ते हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दूसरी पाली में गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा हुई। इसके बाद सत्र के समापन पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 5 दिवसीय मॉनसून सत्र के दौरान 21 विधेयक पारित किए गए। अध्यक्ष के समापन संबोधन के बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। और अब प्रस्तुत है विधान परिषद में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। इसके समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार। शुक्रवार को बिहार विधान परिषद की पहली पाली सुबह 11 बजे शुरू हुई। प्रश्नकाल में शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठे। भाजपा के प्रोफेसर नवल किशोर यादव के प्रश्न पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हाफ डे किए जाने के संबंध में 1 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार फैसला करेगी। इससे पहले प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 5 से 5.5 घंटे तक, शनिवार को 2 से 2.5 घंटे पढ़ाई का प्रावधान है। भाजपा के प्रोफेसर नवल किशोर यादव, जीवन कुमार और निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी ने शारीरिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति देने का मुद्दा उठाया। इसका समर्थन भाजपा के प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने भी किया। जवाब में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि संबंधित संचिका विधि विभाग को भेजी जाएगी और उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। राजद के सौरभ कुमार और निर्दलीय महेश्वर सिंह ने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के लगभग 50% पद रिक्त होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 3,300 स्वीकृत पदों में करीब 1,700 पद खाली हैं तथा नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से मान्यता भी आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले वर्ष केवल 5,000 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ। इसके उत्तर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि मान्यता के लिए आवेदन किया जा चुका है। इस बीच भाजपा विधान परिषद सदस्य अनामिका सिंह के साथ दुर्व्यवहार के मामले में सरकार ने संज्ञान लेने का आश्वासन दिया। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में ये बात कही। ये मामला MLC नागेंद्र ने सदन में उठाते हुए

0: आरोप लगाया कि 22 जुलाई को पटना की एक महिला एएसपी ने अनामिका सिंह के साथ दुर्व्यवहार किया था। विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, सोनू कुमार, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह और वंशीधर प्रजवासी ने सरकारी विद्यालयों में कार्यरत लिपिकों और परिचारियों के वेतन वृद्धि का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि वर्तमान में लिपिकों को 16,500 रूपये और परिचारियों को 15,200 रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद वेतन वृद्धि पर निर्णय लिया जाएगा। दूसरी पाली दोपहर 2 बजे शुरू हुई। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट को पारित कराने के लिए सदन में प्रस्तुत किया। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जीविका दीदियों के सहयोग से बकरी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंपारण का मीट प्रसिद्ध है, इसलिए यहां विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 8,12,000 परिवार बकरी और मुर्गी पालन से जुड़े हैं। वहीं 7,781 जीविका दीदियां पशु सखी के रूप में पशुओं के उपचार का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी दौरान उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और राज्य सदस्य सुनील सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष पर की गई टिप्पणी और सुनील सिंह को टोके जाने के बाद विवाद बढ़ गया। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब जदयू के संजय सिंह वेल में पहुंच गए। बाद में निर्दलीय सदस्य महेश्वर सिंह ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। सभापति ने सुनील सिंह के व्यवहार की निंदा की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही सामान्य हुई। सभापति के समापन वक्तव्य के साथ विधान परिषद के 213वें सत्र का समापन हुआ। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित हुई। इस अवधि में अल्पसूचित 262 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 240 प्रश्न संबंधित विभागों को उत्तर के लिए भेजे गए और 12 प्रश्नों के उत्तर
1: यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को करगिल के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए

अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल

राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है, और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारी सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्तापक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते

ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है, जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सब प्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। जी हाँ, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जीने की राह फिल्म का नगमा, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, सरबत किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गाया है आशा भोसले, हेमलता, उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। जी हाँ, इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं गुमला झारखंड से नजमुल खुदा, एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, और साथ ही साथ आप हैं नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से अजीज़ भाई, मतीन भाई, शैक चांद, फारूक फुलवाले। और एक और फरमाइश इस गीत के लिए है, जी हाँ, आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार। चलिए, हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये नगमा इन शब्दों के साथ की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, चांद पागल है, अंधेरों में निकल पड़ता है।

जी हाँ, इसी गीत को सुनना चाहा था आप सबने भी। आप हैं मेहेर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गंवहाड़कर राही, सरिता गंवहाड़कर, प्रणीता सिद्धांत गंवहाड़कर और अर्जुन गंवहाड़कर टुक टुक। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी। उदित नारायण

और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। जलीश शेरवानी ने गीत लिखा है, साजिद वाजिद ने सुरबत किया है, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस मऊनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से आप हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। और साथ ही साथ इसी गीत के लिए फरमाइशें आई हैं ईमेल के माध्यम से, गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से श्रोता हैं राहे क्षमा करेंगे राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी साक्षी, अक्षय लाल राय, बुल्की वाली फलना झा, और नया नगर सुपौल से आप हैं श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार, निराला और चीलना झा। इसी गीत के लिए हमें एक फरमाइश मिलती हुई दिख रही है, डेरी ऑन सोन डालमिया नगर के श्रोतागण बबलू श्रीवास्तव, जीवन भाई और आपके मित्रों की ओर से ये फरमाइश आई है। और एक फरमाइश हमारी नहौना ग्राम के श्रोतागण प्रखंड सासाराम ग्राम नहौना से आप हैं भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। चलिए हम आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद का ये नगमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, दीवाना फिल्म से कुमार सानू और साजना सरगम की आवाज़ें हैं। समीर के लिखे गीत की तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। साथ ही साथ आप हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढेंगिया, नमन ढेंगिया, अपार ढेंगिया, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ और आपकी सहेलियाँ। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का बहुत ही बेहतरीन नगमा चुना है आपने दीवाना फिल्म से। और हाँ, इसी गीत के लिए हमें एक और ईमेल दिखा, आप हैं मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदिनी कुमारी और आपके परिवार के सदस्यगण ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश का यह गीत।

का गीत हमारे श्रोता सुनना चाह रहे हैं पूर्णिमा की आवाज़ में, शब्दकार हसरत जयपुरी, संगीतकार अनु मलिक, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। ईमेल के माध्यम से आप हैं पटेल नगर मालोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया। छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। ये एक ईमेल मिलता हुआ दिख रहा है बड़ा बम चौक खंडवा एमपी से संजय मारकंडे, ममता मारकंडे और बेबी किट्टू की ओर से ये मेल आया है। और आप हैं कुंडलवाली महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर और राजेश राकेश ऋषिता, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन छोटू, अमित सुमित, अमन पराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित जी। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

इसी गीत की फरमाइशें आपकी ओर से भी आई हैं। जी हाँ, आप हैं दादा बाबू रोड ग्रीडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मेफरा नवाज़, बेबी चाहत और सादिया।

0: तो श्रोताओं, पूर्णिमा के गए इसी गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा, नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री

0: नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
1: लगभग दो घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
3: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब

0: धीमे पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

0: हांगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। लोकधारा के अंतर्गत लीजिए सुनिए कुछ लोकगीत। शुरुआत करते हैं सुधा सिंह की गाई इस रचना से।

सुधा सिन्हा को सुनने के बाद आइए सुन लेते हैं एक रचना संतराज सिंह की आवाज़ में।

केसरीनाथ त्रिपाठी, क्षमा करेंगे, केसरीनाथ भगत और साथियों की गई इसी निर्गुण के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आइए सुनते हैं बंदगी के तहत एक कव्वाली। गायक कलाकार हैं चांद कादरी, अफजल चिश्ती।

0: बंदगी के तहत अभी आप कव्वाली सुन रहे थे। गायक कलाकार थे चांद कादरी, अफजल चिश्ती और साथी। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पटना से प्रसारित रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण। तत्पश्चात दिल्ली से प्रसारित संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए सुनिए साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

रेडियो की साहित्यिक पत्रिका शब्दशिल्प में आपका स्वागत है। आपके साथ हूँ मैं रानू सिंह। श्रोताओं, हमने आपसे साहित्य की विशेषताओं पर प्रायः चर्चा की है और हम ये हर बार करेंगे, क्योंकि साहित्य की विशेषताएं कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। परंतु आज हमारा ये प्रयास है कि हम साहित्य से जुड़ी एक जानकारी आपसे साझा करें। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहाँ भावों को अलंकृत करने की कला हम सीख पाएंगे। आज का संपादकीय इसी पे केंद्रित है। श्रोताओं, जब भी बात अलंकृत करने की आती है तो हम श्रृंगार के बारे में सोचने लगते हैं। उदाहरण के लिए, हम किसी स्त्री का श्रृंगार गहने हीरे जवाहरात से ही करते हैं, जो कि कुछ सीमा तक सत्य भी है। परंतु क्या श्रृंगार मात्र एक स्त्री का ही होता है, भावों और विचारों का नहीं? हम जो चिंतन करते हैं, हम जो देखते हैं, क्या उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता? अवश्य किया जा सकता है, और इसे ही श्रृंगार कहते हैं। अब यहाँ ये समझना है कि क्या श्रृंगार साहित्य में भी विद्यमान है? क्या साहित्य भी सौंदर्य का वर्णन करता है? तो इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। साहित्य में 9 रस होते हैं, जिसे नवरस कहते हैं। इसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस आते हैं। हर रस की अपनी विशेषता है। हर रस अपने साथ ऐसे भावों को लाता है जिससे पाठक या श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये शब्दों और वाक्यों का श्रृंगार कर देते हैं। आज इस नवरस में से सबसे पहले चर्चा करते हैं श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। ये किसी विशेष युग का द्योतक नहीं है। श्रृंगार रस तो आदि काल से लेकर भक्ति काल तक और भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक प्रयोग में लाया गया। जैसे बिहारी के इस दोहे में, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग इही पाए बौराए। अर्थात यहाँ एक कनक का अर्थ धतुरे से है और एक कनक का अर्थ स्वर्ण से। अर्थात धतुरे को तो खाने के बाद ही मनुष्य नशे में पागल हो जाता है।

परंतु सोने का नशा तो ऐसा होता है कि उसे पाकर ही मनुष्य घमंड और लालच में पागल हो जाता है। कितनी सुंदरता से शब्दों का प्रयोग कर इसको अलंकृत कर दिया गया है। श्रोताओं, श्रृंगार रस के प्रयोग से कविता, कहानी, उपन्यास सजीव प्रतीत होने लगते हैं, जिससे पाठक आत्मीयता का अनुभव करते हैं। मुख्यतः श्रृंगार रस को दो रूपों में विभक्त किया गया है। पहला, संयोग श्रृंगार, जहां मिलन, हंसी, प्रेम की प्राथमिकता होती है, और वहीं दूसरे अर्थात वियोग श्रृंगार में विरह की पीड़ा, व्याकुलता, प्रतीक्षा की प्रधानता होती है। वियोग श्रृंगार

0: भाव में कविता की कल्पना की ही नहीं जा सकती। जैसा कि मीरा के इस दोहे को ही सुने, दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिलया नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटै जब वैद सांवरों होई। अर्थात दर दर भटकने के बाद भी मीरा को अपने लिए वैद्य नहीं मिल रहे, उनके वैद्य तो स्वयं कृष्ण ही हैं। श्रृंगार रस वियोग को भी सुंदरता प्रदान कर देता है। यहाँ मीरा ने अपने दोहे में आध्यात्मिक श्रृंगार को दर्शाया है। श्रृंगार रस साहित्यिक रचनाओं की सजावट करता है जिससे पाठक आकर्षित होते हैं। यह कभी नारी सौंदर्य का वर्णन करता है तो कभी सुर मीरा के कृष्ण प्रेम को। श्रृंगार रस प्रेम को दर्शाने वाला रस है। श्रोताओं, अभी आप संपादकीय सुन रहे थे। आशा करते हैं आज का संपादकीय आपको ज्ञानवर्धक अवश्य लगा होगा। अंक में अब आगे बढ़ते हैं। बीते 22 जुलाई को राजभाषा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भवन में मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त एवं बाबू गंगा शरण सिंह की जयंती आयोजित की गई। इस आयोजन में कई प्रतिष्ठित वक्ताओं, शिक्षाविद और साहित्यकारों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मधु मंजरी, सहायक प्राध्यापक एएन कॉलेज ने कहा,
1: प्राचीन के प्रति पूज्य भाव तथा नवीन के प्रति उत्साह में सामंजस्य स्थापित करने वाले राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त मर्यादा प्रेमी वैष्णव भक्त हैं, भारतीय संस्कृति के आख्याता हैं तथा पुनरुत्थान के कवि हैं। मित्रों, ये वे पंक्तियां हैं जिन्हें मैं अपने छात्र जीवन में मैथिली शरणगुप्त पर लिखे गए कवि परिचय को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रारंभ में लिखा करती थी। आज भी जब राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त पर कुछ बोलने का अवसर आता है तो मुझे बरबस ये पंक्तियां याद आ जाती हैं। श्री मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रकवि होने के साथ साथ हिंदी के महान कवि भी थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के उत्थान में उनका योगदान अतुलनीय है। महात्मा गांधी ने उनकी रचना भारत भारती से प्रभावित होकर उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। उनकी जयंती हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। महादेवी वर्मा को मैथिली शरण गुप्त जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त रहा है। गुप्त जी और महादेवी जी का साथ तो क्षणिक रहा है, लेकिन पथ के साथी नामक पुस्तक में गुप्त जी पर एक अविस्मरणीय संस्मरण लिखकर उनकी छवि की एक अमिट छाप छोड़ी है महादेवी जी ने। वे कहती हैं कि गुप्त जी के बाह्य दर्शन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्हें असाधारण सिद्ध कर सके। साधारण मझोला कद, साधारण छरहरा गठन, साधारण गेहुआ रंग या हल्का सांवला रंग, साधारण पगड़ी, अंगरखा, धोती या उसका आधुनिक संस्करण गांधी टोपी, धोती कुर्ता और इस व्यापक भारतीयता से सीमित सांप्रदायिकता का गठबंधन सा करती हुई तुलसी कंठी। अपने रूप और वेश दोनों में वे इतने अधिक राष्ट्रीय हैं कि भीड़ में मिल जाने पर शीघ्र ही खोज नहीं निकाले जा सकते। उनके चौड़े ललाट पर दुश्चिंताओं की क्रूर लिखावट नहीं है, ऊंची नाक पर दंभ का उतार चढ़ाव नहीं है और होठों में निष्ठुरता की वक्रता नहीं है। ये चित्र खींचती हैं उनका महादेवी वर्मा। और जो विशेषताएं उन्हें सबसे भिन्न करती हैं, सबसे अलग करती हैं, वे है उनकी बंधी हुई दृष्टि और मुक्त हंसी। गुप्त जी की दृष्टि और हंसी उन्हें किसी के निकट अपरिचित नहीं होने देती। वे स्वभाव से प्रसन्न और विनोदी थे, पर इस प्रसन्नता और विनोद की चंचल सतह के नीचे गहरी सहानुभूति और तटस्थ विवेक का स्थायी संगम है जिस पर सबकी दृष्टि नहीं जाती। गुप्त जी का भावुक कवि होना सामान्य है, पर भावुकता के साथ चलने वाली कर्म तत्परता तो उनकी निजी विशेषता है। कलाकार को मनुष्य रूप में पहचानने के लिए उसकी कला और कर्म में गठबंधन तो होना ही चाहिए। गुप्त जी के व्यक्तित्व की एक और बड़ी विशेषता यह थी कि कि उनका दत्त

का रूप कवि रूप से अधिक व्यापक रहा। वे दद्दा कहे जाते थे। वे नगर दद्दा ही नहीं, प्रांत भर के दद्दा थे, और जो उनके संपर्क में आते वे उनकी दूसरी पहचान को याद ही नहीं रखते थे, बस वो उनके निकट दद्दा होकर रह जाते थे। सबकी समस्याएं सुनने का अवकाश और सबके काम आने की इच्छा उनके हृदय की उदारता का परिचायक है। किसी का बनता हुआ मकान देखना, किसी की नई दुकान का निरीक्षण करना, तो किसी के छप्पर और किसी के खेत की बात पूछना वे सहज भाव से करते चलते थे। प्रायः भक्त और कवि के दृष्टि बिंदुओं में अंतर अनिवार्य होता है। गुप्त जी के संदर्भ में हम इन बातों को इस तरह से देख सकते हैं, जैसे भक्त के निकट उसका इष्ट ही विश्व होता है, पर कवि की स्थिति थोड़ी इससे भिन्न होती है। उसके लिए लोक समष्टि ही इष्ट है, और गुप्त जी कवि भी हैं और भक्त भी। साहित्य में उन्हें ऐसी कथाएं चाहिए जो लोक हृदय में प्रतिष्ठा पा चुकी हों, पर उस परिधि के भीतर हर चरित्र उनका नया, हर चरित्र का कुछ नया निर्माण उनका अपना और मौलिक होता है। वे रामायण को नहीं भूलते, पर रामायणकार जिन्हें भूल गया उन चरित्रों को वे अपने ढंग से स्मरण करते हैं। साकेत और पंचवटी भूले नहीं होंगे पाठकगण, साकेत की उर्मिला और पंचवटी के लक्ष्मण। पंचवटी के लक्ष्मण को बड़े ही ओज भरे स्वरों में वो याद करते हैं, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। गुप्त जी महाभारत के स्थान में कोई अन्य कथा नहीं खोजेंगे, पर महाभारत के भीतर खोए किसी ऐसे साधारण पात्र को जरूर खोज लेंगे। जयद्रथ वध और द्वापर को भी पाठक भूले नहीं होंगे। ये कथाएं अनेक युगों की लंबी यात्राओं का आंधी पानी धूप छाया सहते सहते धूमिल हो गई हैं, पर जिन्हें ये वहन करके लाई हैं वे पात्र गुप्त जी के आंसुओं में धुल धुल कर नए रंगों में उद्भाषित आज के प्राणी बन चुके हैं। उनके साहित्य में जो नया है उसका मेरुदंड पुराना है, और जो पुराना है उसका रंग नया है। एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगी, महादेवी वर्मा और गुप्त जी के साथ के समय की ये घटना है। इसी तरह हिंदी भवन के लिए किसी भवन का खरीदा जाना क्रय तय हुआ था, और महादेवी वर्मा जी और गुप्त जी को साथ साथ वहाँ न्यूगोशिएशन के लिए जाना था, बात को तय करने के लिए, भवन की खरीदारी तय करने के लिए जाना था। दोनों चले और रास्ते भर गुप्त जी आदेश निर्देश करते रहे महादेवी वर्मा जी को कि तुम चुप ही रहना, तुम मत बोलना, तुम्हारा ज्ञान अल्प है, इस संदर्भ में मैं ही सब कुछ बोलूंगा और जितनी कीमत है उससे कम में तय करा लूंगा। वहां पहुंचे गुप्त जी और महादेवी वर्मा जी, वहां जो उन्होंने दृश्य देखा कि भवन के किनारे बहती हुई गंगा, और उसमें गंगा में कमल के फूल सा खिला एक मंदिर। सारे आदेश निर्देश वे स्वयं भूल गए कि उन्होंने क्या कुछ महादेवी वर्मा को निर्देश दिया था, और उन्होंने कहा कि बात तय समझो, और जितनी खरीदारी की बात हुई थी, जितनी कीमत, जितने मूल्य की बात हुई थी, उस मूल्य से उन्होंने कितना ज़्यादा दिया कितना कम दिया ये बात ही दरकिनार हो गई, बस उन्होंने हामी भर दी। तो ऐसा, मतलब इस तरह के व्यक्तित्व महादेवी वर्मा के की नज़र से हमें देखने को मिला पथ के साथी पुस्तक में संग्रहित इस आलेख में, संस्मरणात्मक आलेख में। मित्रों, 20वीं शताब्दी के आरंभ में जब खड़ी बोली की कविता खड़ी होने का प्रयास कर रही थी, गुप्त जी ने उसमें पद्य रचना अभ्यास आरंभ किया। उनकी लंबी काव्य यात्रा के दौरान हिंदी कविता ने कई मंजिलें तय की और कवि ने उसके साथ चलने का प्रयास किया। शीघ्र ही पद्यबद्ध निबंध के रूप में लिखित कविताओं का विकसित रूप भारत भारती के रूप में सामने आया, और रंग में भंग के बाद जयद्रथ वध नामक खंड काव्य, हरिगीतिका छंद में लिखित दोनों रचनाएं पर्याप्त लोकप्रिय हुईं। मांगला के रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रभाव ग्रहण करते हुए उन्होंने कुछ गीत भी रचे जो झंकार में, झंकार नाम की उनकी पुस्तक में संग्रहित हैं।

0: लेकिन पुनः वह प्रबंध रचना के अपने सुपरिचित पथ पर चले और पंचवटी, प्रदक्षिणा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, कुणाल गीत, सिंहराज, किसान, विष्णुप्रिया, जय भारत आदि के रूप में विपुल रचना कार्य किया। इस संदर्भ में दिनकर जी की भी एक उक्ति ध्यातव्य है, पुनरुत्थान ने हमारी सारी संस्कृति, संपूर्ण इतिहास और समग्र विश्वास पर जो नया आलोक फेंका, उसकी अधिक से अधिक अभिव्यक्ति सबसे प्रथम मैथिली शरण गुप्त जी की कविताओं में ही हुई। पुनरुत्थान की प्रवृत्ति से ही इस देश में जनवादी राष्ट्रीयता का विकास हुआ। मानवतावाद ने भी लोकतांत्रिक मूल्यों से उसे नया आयाम प्रदान किया। इस पुनरुत्थान की प्रवृत्ति ने अतीत गौरव का भाव जगाया, साथ ही राष्ट्रीय अस्मिता, नेशनल आइडेंटिटी का भी बोध कराया। द्विवेदी युग के साहित्य में इसलिए पुनरुत्थान, राष्ट्रीयता और मानवतावाद के संश्लेषण और सामंजस्य से काव्य में नवीन विषय वस्तु का समावेश हुआ। इस युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशाभिमान, प्राचीन सांस्कृतिक मूल्य, दीन दुखी जनों की सेवा का भाव, सच्ची ईश्वर भक्ति की भावना, नारित्व की उच्च भावना, गार्हस्थ का महत्व और ईश्वर के अवतार का पुरुषोत्तम लोकनायक रूप में चित्रण, ये सभी पक्ष प्रमुख रूप से दृष्टिगत होते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने मातृभूमि की भौगोलिक संरचना और नैसर्गिक शोभा का वर्णन करते हुए उसे सर्वेश की सगुण मूर्ति ही सिद्ध किया है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यह बंकिम चंद्र के वंदे मातरम में निहित प्रवृत्ति का विकास है। गुप्त जी ने उसी प्रकार मुसद्दस ए हाली के ढंग पर भारत भारती की रचना की। कवि की मनोकामना के अनुरूप उनकी भारती भारतवर्ष में गूंज उठी। उसमें वर्तमान दशा की आलोचना तथा भविष्य की मंगल कामना भी है, लेकिन मुख्य कथ्य अतीत गौरवगान है। थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी वीर वे कैसे बली, थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी वीर वे कैसे बली, जो थे अकेले ही मचाते शत्रु दल में खलबली। अतीत गौरव के आधार पर स्वदेशाभिमान भी उनके रचनाओं में व्यक्त हुआ है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहां। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहां। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है।
1: प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताओं को बताते हुए डॉक्टर गोपाल यादव, सहायक प्राध्यापक रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा,
2: भारतीय वांग्मय के क्षितिज पर एक ऐसे दीप्यमान नक्षत्र के रूप में हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को, उर्दू साहित्य को सर्वथा नवीन दिशा और दर्शन प्रदान किए हैं। जब हमारा देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा था, समाज सामंती रूढ़ियों, धार्मिक पाखंड तथा घोर विषमता की जर्जर चीजों से जूझ रहा था, तब प्रेमचंद साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यदि हम अपने जीवन को समझ लें, जीवन की समस्याओं को समझ लें, तो हम कम भौतिक सुख सुविधा वाले समाज में भी बहुत स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकते हैं। यदि हम उनको नहीं जान पाएंगे तो कितना समृद्ध जीवन हम जी रहे होंगे, लेकिन हम संतुष्टि नहीं पा सकते हैं। वो काम प्रेमचंद जी ने करने का काम किया लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं, बल्कि वह समाज के आगे मसाल दिखाती चलने वाली सच्चाई है।
1: बाबू गंगा शरण सिंह की लेखनी की विशेषता बताते हुए डॉक्टर आनंद बिहारी, सचिव सत्राची फाउंडेशन ने कहा
3: कि जब संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है,

0: उसमें हमारे समक्ष जो हमारे नेतृत्वकर्ता होते हैं वो साहित्य और राजनीति दोनों को साधते हैं। कई बार साहित्य प्रेरणा बनता है और राजनीति उस प्रेरणा से आगे बढ़ता है। बाबू गंगा शरण सिंह का व्यक्तित्व ऐसे ही साहित्य और राजनीति का एक संगम है। आप इस बात को ऐसे भी समझिए, एक वाक्य है कि नेहरू जी के साथ संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे थे दिनकर जी, और नेहरू जी थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा गए तो दिनकर जी ने संभाल लिया और उन्होंने धन्यवाद दिया, कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिनकर जी ने कहा, कोई बात नहीं, जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे संभालता है। हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि जितने राजनेता आए वो साहित्य सेवी भी रहे, चाहे वो नेहरू हों, गांधी हों, या हमारे साहित्य के जो सृजनकर्ता हैं उनको ले लीजिए, सबने साहित्य और राजनीति को साधा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजर्षि टंडन जी और ऐसे ही सैकड़ों जिनको हम साहित्य में पढ़ते हैं और जिनको हम राजनीति में याद करते हैं, दोनों ने साहित्य को किसी न किसी रूप में संभाले रखा, उसका दामन थामे रखा। और आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े नेता हुए वो सब लेखक स्तर के थे और उनका साहित्य आज भी स्वतंत्र रूप से एक साहित्यिक रूप में याद किया जाता है और एक कर्मशील व्यक्तित्व के रूप में उनको राजनीतिक क्षेत्र भी याद करता है।
1: शोधार्थी सुश्री प्रिया कुमारी ने कहा,
2: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता से भारत की राष्ट्रीय चेतना को स्वर दिया। वही बाबू गंगा शरण सिंह ने राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, और जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य के आधारशिला को शक्ति प्रदान की, ऐसे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से उस भारत को आवाज दी जो खेतों में पसीना बहाता था, जो गरीबी से जूझता था और जो सामाजिक विषमता के बीच मानवता को बचाए हुए था। जब हम बात प्रेमचंद की करते हैं तो केवल एक कथाकार की नहीं करते, बल्कि ऐसे रचनाकार की बात करते हैं जिसने अपनी कलम को कभी सत्ता के सामने झुकने नहीं दिया। प्रेमचंद केवल एक साहित्यकार नहीं थे, बल्कि वे भारतीय स्वतंत्रता के चेतना थे। उन्होंने भारतीय समाज की आत्मा को शब्द दिए और उन्होंने ये माना कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। और उन्होंने स्वयं कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है, उसमें वही दिखता है जो समाज में होता है। और यही कारण है कि उनका साहित्य केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। प्रेमचंद का साहित्य भारत के सामान्य जन का साहित्य है, और उनकी रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें किसान की पीड़ा है, मजदूर की व्यथा है, संघर्ष है उनकी, नारी की व्यथा है, दलित समाज की उपेक्षा है, मध्य वर्ग की विडंबनाएं हैं, और नैतिक मूल्यों के संकट को उन्होंने अत्यंत संवेदनशीलता और यथार्थ के साथ चित्रित किया है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजभाषा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा आयोजित मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त एवं बाबू गंगा शरण सिंह की जयंती समारोह के संपादित अंश। अंक में अब आप आनंद लीजिए प्रोफेसर सुरेश चंद्र की इन कविताओं का।
3: पहली कविता मानवता की लड़ाई प्रस्तुत है, आप सुने। मानवता धर्मों से, वर्णों से, जातियों से, भाषाओं से, संस्कृतियों से और प्रांतों की सीमाओं से मुठभेड़ करने के क्रम में आ पहुंची है राजनीति के मोर्चे पर। यहाँ उसका मुकाबला हो रहा है वोटों से, नोटों से, तुष्टीकरण की

चोटों से मानवता अब नीतिहीन राजनीति के चक्र व्यूह में धर्म, संविधान और लोकतंत्र को फंसा पाती है। यकायक वह दल बदली के गिरगिटी खेल के रूबरू हो जाती है। मानवता को यकीन हो जाता है कि अमानवता के विरुद्ध लड़ाई को जीतना न जनबल से संभव है न धन बल से। अपनी लड़ाई लड़नी होगी उसे कलम से। मानवता अविलंब कलमकार कवि से संध कर लेती है। मानवता द्वारा बरती जा रही अपनी अच्छाइयों को जिताने के लिए वह अमानवता द्वारा बरती जा रही क्रूरताओं के समक्ष संवेदनाओं को अड़ा देती है और उद्घोष करती है कि जीत होगी, जीत होगी, जीत होगी। अगली रचना उद्बोधन गान शीर्षक से मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ और यह रचना इस प्रकार है। लकीर मिटाओ सब स्वार्थ की, लकीर मिटाओ सब स्वार्थ की, परमार्थ का ध्यान करो अपनी खुशियों के उपवन में, औरों के सुख के काम करो। लकीर मिटाओ सब स्वार्थ की, परमार्थ का ध्यान करो अपनी खुशियों के उपवन में, औरों के सुख के काम करो। करुणा बरतो प्रेम बढ़ाओ, करुणा बरतो प्रेम बढ़ाओ, दया के सागर बन जाओ। कांटों मध्य खिलें गुलाब ज्यों, विषम दशा में भी मुस्काओ, विचलन में भी अनुशासन से दायित्वों का निर्वाह करो। लकीर मिटाओ सब स्वार्थ की, परमार्थ का ध्यान करो अपनी खुशियों के उपवन में, औरों के सुख के काम करो। अधिकारों से नाता जोड़ो, अधिकारों से नाता जोड़ो, कर्तव्यों से मत मुँह मोड़ो, विज्ञान का पालन करो सुनिश्चित, व्यूह रूढ़ियों के सब तोड़ो। भ्रातृभाव के मूल्य बोध से जातिवाद का नाश करो। लकीर मिटाओ सब स्वार्थ की, परमार्थ का ध्यान करो अपनी खुशियों के उपवन में, औरों के सुख के काम करो। रचना सीखो सजना सीखो, रचना सीखो सजना सीखो, नहीं लौटना बढ़ना सीखो, चलते रहना जीवन भर है, पड़े जरूरत तो अड़ना सीखो। स्वच्छ रहे परिवेश धरा पर, स्वच्छ रहे परिवेश धरा पर, जब तब श्रम का दान करो। लकीर मिटाओ सब स्वार्थ की, परमार्थ का ध्यान करो अपनी खुशियों के उपवन में, औरों के सुख के काम करो। सिंधु सभ्यता बहुत खास है, सिंधु सभ्यता बहुत खास है, संतों की वाणी स्वयं उजास है, आज़ादी वाली कुर्बानी का मतलब हर श्वास है प्रश्वास है, मन वचन और कर्म से भारत गौरव का गान करो, भारत गौरव का गान करो। लकीर मिटाओ सब स्वार्थ की, परमार्थ का ध्यान करो अपनी खुशियों के उपवन में, औरों के सुख के काम करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गले मिले जब नौबत आई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गले मिले जब नौबत आई, आह्लादक जैनों की अहिंसा, बुद्ध नीति जग में छाई, आनंद

0: मिलेगा सम्यक सबको, सब धर्मों का सम्मान करो, लकीर मिटाओ सब स्वार्थ की, परमार्थ का ध्यान करो, अपनी खुशियों के उपवन में औरों के सुख के काम करो। धन्यवाद।
1: अत्यंत कर्णप्रिय कविताएं अभी हम सुन रहे थे प्रोफेसर सुरेश चंद्र द्वारा। इन्हीं कविताओं के साथ अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है, लेकिन श्रोताओं, आपसे विदा लेने से पूर्व एक आग्रह, यदि आप हमारे अंक से जुड़े कोई भी सुझाव या शिकायत हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा पता है feedback@gmail.com। तो श्रोताओं, प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ अपनी साहित्यिक साथी रानू सिंह को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: कार्यक्रम आपकी पसंद, ये आकाशवाणी
1: मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम उठाना चाहिए छात्रों का के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एजेंसी ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की 3री और 4थी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। डीएमआरसी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से इन मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था। आज ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाई गई। एक रिपोर्ट।
3: आज पुरी का पवित्र शहर गहरी भक्ति भावना से सरोवर है, जब लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन

0: ये थे शंकर महादेवन और आप सुन रहे थे एल्बम सॉन्ग। अब आइए सुनते हैं अमित कुमार की आवाज़ में एक और रचना।
1: लड़की थी या अजूबा,

0: अभी आप हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग सुन रहे थे।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
0: और अब इसी के साथ ही रस रंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। चित्रपट तराने कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त संजय चतुर्वेदी। स्वीकार कीजिए हमारा सप्रेम नमस्कार।

प्रकृति के प्रांगण में वो सब कुछ है जो हमारी खुशहाल जिंदगी के लिए ज़रूरी है। हरे भरे चारागाह, समतल फैला मैदान, हरियाली, पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, झील, झरने और पर्वत भी। पर्वतों की ऊंची श्रृंखलाओं से आती सदाएं ये आवाज़ देती हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। विकास तभी होता है जब हमारे कदम अग्रगामी होते हैं।

कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सपनों को पूरा करने के लिए लगन, मेहनत, दृढ़ प्रतिज्ञा भी चाहिए, क्योंकि ख्वाब तभी पूरे होते हैं जब हम उनके लिए मिलकर काम करते हैं। सवर सवर के बिखर, बिखर बिखर के बन, कि ऐ नसीब तू इसीलिए पैदा हुआ है।

ज़िंदगी की राहें रब टीली भी हैं, ज़िंदगी की राहें समतल भी हैं, चलना तो हमें ही है। रास्ते नहीं चलते, रास्ते वही रहते हैं, राही

दिल टूट कर चाक हुआ, फूलों पर सोया न गया। जख्म कुछ ऐसा था, राहों पे भी रोया न गया।

आके मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से

तो श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ ही चित्रपट तराने कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। एक नजर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में 7:30 पर आप सुनते हैं नमस्ते रोहतास कार्यक्रम, और पसंद आपकी के अंतर्गत अपनी फरमाइशों के नगमे आप सुनते हैं 8:20 पर।

गीत मालिका के अंतर्गत फिल्मी गीतों का लुत्फ उठाइएगा 9:10 पर, और 10:05 पर हम आपके लिए पेश करेंगे हमारा साप्ताहिक प्रसारण विकास के सोपान।

भोजपुरी एल्बम लोकगीत आप सुनते हैं लोक माधुरी के तहत 10:30 बजे और 10:45 पर सुनिएगा रसधार के तहत भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। सांध्यकालीन प्रसारण सभा में युवावाणी 5:30 पर और किसानवाणी सुनिएगा 6:10 पर। सांझ गीत 6:40 पर आप सुनते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन आप सुनेंगे 6:05 पर।

लोकगीत हमारे केंद्र से सांध्यकालीन प्रसारण में आप सुनेंगे संध्या 6 बजे और रात्रि 9 बजे गजलों की महफिल सजेगी 9:15 पर। एक नज़र कल के मौसम पूर्वानुमान पर। कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे और आर्द्रता 74% हो सकता है। तो श्रोताओं, यह थी कार्यक्रम संबंधी जानकारियां हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4।

0: मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: रात्रि के 11 बजने को लीजिए अब सुनिए समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गईं।

0: four in the final to secure a podium finish against a strong international field. And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। आज की हमारी यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।